विपन्नता अवस्था में रहता है। चतुर्दिक अभावे अभाव, क्या दिन एहनो हुई छल जे घर में भानस नहीं, सब क्यों भूखले सुत रहे छे। एहना स्थिति में पढ़वा खर्च जुटेनाई तो असंभवे छल, पिता की इच्छा रहें जे हम पढ़ी, मुदा द्रव्याभावक कारण वो विवश छला। स्कूलक फीस देव आ पुस्तकक दाम देव द्रव्यक अभाव में संभव नहीं छल, तथापि हम जना तना अध्ययन जारी रख माइन चैंग के पुस्तक पर मटिया तेल जो सठ जाए तो कैक दिन तक लगातार घर में साँझ नहीं पड़े। एहना स्थिति में हम नगर निगमक लैम्प पोस्टक नीचा में बैस कर पढ़ल करी। कष्ट सहन आ कठोर परिश्रमक अभ्यास हम बाल्यावस्था से आरंभ कैल आ एह में प्रेरक भेला परिवारक सदस्य लोकन, विशेष कर हमर पिता। महामना गोखलेक आत्मकथा के ई अंश प्रेरणा प्रदत अछि, संगे एक गोट महान सत्यक उद्घाटन सेहो करै छै। तो ई जे बालक हो कि बालिका, ओकरा भविष्यक लेल तैयार करबा में सर्वाधिक सहयोगी अभिभावके होइ छथि। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में विद्यालयक समय निश्चित रहै छै, सीमित रहै छै। शिक्षकक सान्निध्य ओतबा काल धरि बालक के भेटै छै जतबा काल धरि वो विद्यालय में रहै छै। जीवनक वास्तविक तैयारी तक करबो पड़ै छै पारिवारिके परिवेश। जँ बालक के कष्ट सहन करबाक लेल परिश्रमी आ अध्यवसायी बनबाक लेल अनिश्चित भविष्यक लेल सक्षम बनेबाक लेल वा एक शब्द में सुयोग्य नागरिक बनेबाक लेल आरंभे सँ प्रयत्नशील रहल जाए तो निश्चित रूपे वो भविष्य में अनुकरणीय व्यक्तित्व

ब्रेन कार्प सैटर्न 3 लीटर व एनिलो फास्ट एनिलोगार्ड 1.33 लीटर के व्यवहार से हो कह सकै छी। किसान भाई लोकन एहि गप के ध्यान राखल जाए कि धान के फसिल के रोपला के 2 से 3 दिनक बाद अंकुरण से पहिने व 2 हफ्ताक बाद जखन खर पात 2 से 3 पात वाला भ जाए तो 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर एहि दवाई के व्यवहार अपने कह सकै छी। एहि तरह सब तरहक मौसमी खर पात सब नष्ट भ जाइत अछि। रोपा धान में फसिल में ब्यूटाक्लोर मैच्योरिटी 3 लीटर रोपनी के 2 से 3 दिनक भीतर 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर दवाई के जखन खेत में 1 सेंटीमीटर पानी लागल रहे तो एकर छिड़काव करक चाहिए। किसान भाई लोकन एकर अतिरिक्त अपने थायोबेन कार्ब सेटन 3 लीटर व एनिलोफास एनिलोगार्ड 3.3 लीटर एकर व्यवहार के लिए अनुशंसित दवाई के 100 किलोग्राम बाउल में नीक जगह मिलाकर एकरा छिड़काव कर देवक चाहिए।

0: एच्योर्ड हो जाए तब।
1: जी, अब हम कहते हैं कि आपको आपके दिनचर्या में दिक्कत हो रही है और आपकी रोशनी अगर 95% भी है तो हम आपका समाधान करने को तैयार हैं। इतना अच्छा लेंसेज आ गया है और इतना अच्छा मशीन आ गया है कि बिना सुई और बिना पट्टी के ऑपरेशन हो जाता है, और ऑपरेशन के बाद जो नज़दीक के लिए चश्मा लगता था पहले, अब उसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है।
0: क्या है ये तकनीक?
1: इसको हम लोग फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं
0: जी,
1: और ये एक बहुत सूक्ष्म छेद से ऑपरेशन होता है जिसमें हम प्राकृतिक लेंस निकाल देते हैं और एक आर्टिफिशियल लेंस, या तो मोनोफोकल या मल्टीफोकल, आँख में लगा देते हैं। मल्टीफोकल लेंस लगाने के बाद चश्मे की ज़रूरत नहीं होती है। और जो दूसरा डेवलपमेंट है वो पर्दे की बीमारियों में है। पहले डायबिटीज़ अक्सर 40-50 साल की उम्र के बाद होती थी, मगर आजकल हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि 20-25 साल के लोग बहुत तादाद में डायबिटिक हो रहे हैं, और ये जितने यंग एज में डायबिटिक होते हैं उतने जल्दी उनके नस में कमजोरियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चीनी के वजह से जो पहले पेशेंट अंधा हो जाता था वो अब हम रोक लेते हैं, या ब्लड प्रेशर के वजह से नस जो फट जाता था आंख के अंदर, खून की नली फट जाती थी, जिसका हमारे पास बहुत कारगर उपाय पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि हमारे पास आधुनिकतम मशीन आ गई है जिससे हम जांच लेते हैं।
0: कौन सी मशीन है?
1: इसको हम लोग OCT बोलते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी एंजियोग्राफी मशीन। जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी होता है वैसे ही आंख के पर्दे का एंजियोग्राफी करते हैं। इससे हम लोग एंजियोग्राफी मशीन से हमें ये मालूम चलता है कि जो खून की नली है उसमें रिसाव हो रहा है या ब्लॉकेज है कि नहीं, और OCT ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी से हम पर्दा के डिफरेंट लेयर्स में सूजन है कि नहीं इसकी जानकारी ले लेते हैं, और डिपेंडिंग ऑन सूजन है कि रिसाव है आँख के अंदर सुई देते हैं या फिर लेजर प्रक्रिया से उस लीकेज को बंद करते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन से हम अपने पेशेंट को फिर से अच्छी रोशनी दे सकते हैं, जो साधन हमारे पास पहले नहीं था।
0: पहले जांच ही नहीं हो पाती थी,
1: जांच ही नहीं हो पाती थी, हम जान ही नहीं पाते थे और हम कर ही नहीं पाते थे। जिन चीजों पर बताया जाता था जितने रोशनी कम होने के बाद इंटरवेंशन था, अब आजकल हम लोग नॉर्मल रोशनी में आंख में सुई डाल रहे हैं क्योंकि हमें सूजन दिख रहा है, एंड आई नो कि अगर हम उसको छोड़ देंगे तो 3 महीने बाद मेरे पेशेंट की रोशनी कम हो जाएगी।
0: एक भयावह स्थिति जो बन जाती है वो है ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद।
1: ग्लूकोमा बिल्कुल भयावह स्थिति नहीं है।
0: अच्छा,
1: ग्लूकोमा भयावह स्थिति डॉक्टर के डायग्नोसिस मिस करने से और पेशेंट के को बीमारी की
0: जानकारी नहीं होने,
1: बीमारी के सिवियरिटी को और उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझने के वजह से, जो तालमेल डॉक्टर और पेशेंट में नहीं होता है, इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। ग्लूकोमा का अगर एक बार डायग्नोसिस हो गया और आप उसका इलाज ठीक से कराते हैं, समय समय पर जाके दवाई चेकअप कराते हैं, प्रेशर चेकअप कराते हैं और अपना जाँच करा लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी कट जाएगी, आपको रोशनी में कमी नहीं होगी। होता क्या है, लोग समझते हैं कि डॉक्टर ने दवा लिख दी, मैं दवाई डाल रहा हूं, मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया, जिंदगी कट जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगा।
0: कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद हो, मधुमेह हो, उच्च रक्तचाप हो या ग्लूकोमा हो,
1: जी,
0: इन सारी स्थितियों में अगर जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसका हम लोग सही ढंग से इस्तेमाल करें, सही वक्त पर इस्तेमाल करें,
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत
1: बिल्कुल
0: फायदा हो सकता है। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में विषय था नेत्र रोग और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां। विशेषज्ञ थे डॉक्टर आशीष शेखर। डॉक्टर आशीष शेखर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR। इस ऐप के माध्यम से हम आपके स्मार्टफोन पर भी उपलब्ध हैं। सुबह के 6:10 हुए हैं, समय हो चला है भक्ति संगीत के हमारे कार्यक्रम वंदना का।

कहीं की ईंट कहीं का रोरा। सच में इस

yıkadık, ne yapsın ne? Uzan dedi.

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा ये कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला,
1: नमस्कार श्रोता लोकनि, आजुक नमस्कार मिथिला कंक में हम रंजीत और हमारा संग उपस्थित छथि स्टूडियो में कुशल हूँ कंवर। नमस्कार
0: रंजीत जी, आपको भी मेरा नमस्कार और साथ ही साथ नमस्कार मिथिला सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कुशल का प्यार भरा नमस्कार।
1: और जना कि श्रोता लोकनि के बुझल छन कि कार्यक्रमक शुरुआत हम अपन करै छी सुविचार सँ, तो सबसँ पहले आजुक सुविचार।
0: आज का सुविचार है चाणक्य नीति से। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और तो और इंसान दो फितरत का है, जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। यह है चाणक्य नीति।
1: देखो आचार्य चाणक्य जो शब्दक बुनल जाल छियन, वो कतौ न कतौ हमारे प्रेरणा स्रोत थिक और शत प्रतिशत प्रायोगिक बात से वो लिखलन है, अपना शब्द के माध्यम से वो करलन है। और आजुक नमस्कार मिथिला अंक में हमारे एक डिग आगा बढ़ित और एक नज़र रखें आजुक दिन के इतिहास पर, जो आजुक दिन की खास महत्व रखत हमारा राष्ट्र में हमारा समाज में, तब जानकारी साझा कर कुशल कुमार।
0: आज ही के दिन सन 1498 में चीन में पहला टूथब्रश बनाया गया था, जिसके आधुनिक मॉडल को चीनी सम्राट द्वारा पेटेंट कराया गया। स्पेन और नीदरलैंड ने व्यापार और शांति समझौते पर आज ही के दिन 1714 में हस्ताक्षर किए। सन 1945 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र सैन फ्रांसिस्को में स्वीकार किया गया और 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। सन 1992 में आज ही के दिन भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा 999 वर्षों के लिए लीज पर दिया। आज ही के दिन सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC द्वारा बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले देश का दर्जा दिया गया।
1: तो इच्छा आज दिन इतिहास जो श्रोतालोकन जानकारी हमारे लोग साझा कलूँ, और श्रोतालोकन सबसे पहले हम अपने समस्त मिथिलांचल वासी के आई चूँकि मुहर्रम पावनि थी, तकर शुभकामना आकाशवाणी दरभंगा परिवार के तरफ से हम समस्त मिथिलांचल वासी के दी छियन, और संगे ई संदेश ई संवाद सेहो दऽ रहल छियन आकाशवाणी दरभंगा परिवार के तरफ से, जे कोनो पर्व त्यौहार आपसी समरसता सौहार्दता के संग मनेबाक चाही, सकारात्मक सोच के संग पर्व त्यौहार मनेबाक चाही, कोनो तरहक हुड़दंगी या ई वला पावनि नहि होबाक चाही। हमर जे भारतीय सनातनी परम्परा रहल है, ओहि परम्परा के मुताबिक सब गोटे आई शांति सौहार्द सौहार्दपूर्ण भावना सँ भाव सँ मुहर्रम पावनि के मनाबी। और आगा बढ़ी कुछ हमारे सबसे पहले हमारे चर्चा करी जे आजुक वर्तमान समाज में मीडिया जेकरा कि आम भाषा में हिंदी भाषा में पत्रकारिता जगत कहे छे, आई के समाज में ओकर की भूमिका छे,
0: तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ रंजीत जी, आज है शुक्रदिन, शुक्रदिन के दिन शुक्रवार को सुनते हैं हम लोग गांधी कथा, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं मैथिली सोम संगीत से, फिर आगे हम लोग चर्चा और गांधी कथा
1: बातचीत जो शेड्यूल जो हमारे योजनाबद्ध कार्यक्रम चलिए नमस्कार मिथिला के, वही के हिसाब से चरणबद्ध तरीका से बेरा बेरी डेग हमारा लोग आगा बढ़वत रह, मुदा सबसे पहले अखन हमारे मैथिली सुगम संगीत के आनंद लै, तो श्रोता लोग अखन सुनि सुंदर सन मैथिली गीत।

0: तो श्रोताओं, इस मैथिली सुगम संगीत के बाद अब वक्त हो चला है आज के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर नजर डालने का, यानी हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित हैं रंजीत कुमार झा।
1: धन्यवाद कुशल, नमस्कार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से जुड़ल सदस्य के जल्दी UPI के जरिए PF खाता से निकासी के सुविधा भेटवाल जा रहा है। वेबसाइट के अपडेट करवा के लेल शुक्र से 3 दिन तक IT टीम काज करत। अ दौरान EFPO के वेबसाइट से पूर्ण रूप बंद रहबा घोषणा सेहो कैल जा सकैत अछि। JP पेंशन योजना में छूटि गेल लोग के नाम जुड़वा के लेल समिति के गठन को लेल गेल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार का ज्ञान भवन में आपातकाल के 51वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में JP सेनानी के सम्मानित करत ई घोषणा कैलन। वो कहलन कि JP आंदोलन में हर सेनानी और लोकतंत्र के रक्षा के उचित सम्मान दिल जाए। सहयोग शिविर में 1200 आवेदन स्वतंत्रता और JP सेनानी से भेटल गेल छल। पात्र लोग के सम्मान और सुविधा से जोड़ल जाए। बिहार लोक सेवा आयोग

के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत शोध पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लेल परीक्षा के तिथि घोषित कर दलक है। आयोग के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ प्रायोगिक परीक्षा 15 जुलाई का पटना स्थित परीक्षा केंद्र पर आयोजित कैल जाए। ई परीक्षा भोरे 10 बजे से लौकर दोपहरिया के 12 बजे तक सामान्य अध्ययन विषय पर लेल जाए। शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लेल राज्य के पात्र शिक्षक से ऑनलाइन आवेदन करबाक लेल कहल गेल। संगहि जिला चयन समिति के शिक्षक के आवेदन के शीघ्रता अग्रसारित करबाक निर्देश सेहो देल गेल। पुरस्कार के लेल यथासंभव 50% महिला शिक्षक के अवसर देल जायत। एहि पुरस्कार के लेल पूर्व के तरह नियोजित शिक्षक के सेहो आवेदन के पात्र मानल गेलन है। एहि संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक सब DEO बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के सचिव के पत्र पठाओल गेल। केंद्र के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करबाक लेल दिशा निर्देश देल गेल। संगहि संबंधित अधिकारी के पोर्टल पर उपलब्ध अद्यतन संरचना के नियमित समीक्षा करबाक लेल सेहो कहल गेलन है। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार गुरुवार को एलिवेटेड परियोजना के अंतर्गत आबय वाला विभिन्न सरकारी कार्यालय के परिसर के स्थल के निरीक्षण कैलन। एहि दौरान परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान प्रभावित होबय वाला कार्यालय के वर्तमान स्थिति के आकलन सेहो कैलन और ओकरा व्यवस्थित स्थानांतरण और संभावना पर संबंधित अधिकारी के संगे चर्चा और विचार विमर्श सेहो कैलन। जिलाधिकारी परियोजना के असाइनमेंट के अंतर्गत पड़य वाला जिला अवर निबंधक कार्यालय जरहरिया सराई थाना महिला थाना और पर्यवेक्षण गृह आदि के विस्तृत रूप से निरीक्षण कैलन। एहि दौरान संबंधित परिसर में उपलब्ध भूमि भवन संरचना और प्रशासनिक कार्य के सुचारू संचालन के ध्यान में रखैत आवश्यक बिंदु के समीक्षा सेहो कैलन। जिला अधिकारी संबंधित पदाधिकारी के कहलन कि कार्यालय के स्थानांतरण के प्रक्रिया एहि प्रकार कैल जाए जैसे कि आम जनता के सरकारी सेवा के उपयोग में कोनो प्रकार के असुविधा नहीं होए। संगहि प्रशासनिक कार्य सेहो सुगमता से संपन्न कैल जा सके। दरभंगा के वरीय पुलिस अधिकारी जगुनाथ रेड्डी जल्ला रेड्डी गुरुवार को भालपट्टी थाना के औचक निरीक्षण कैलन। एहि क्रम में ओ विभिन्न पंजी के जांच सेहो कैलन जाहि में लंबित कांड में त्वरित निष्पादन कांड के अविलंब गिरफ्तारी और विधि व्यवस्था संधारण के निर्देश सेहो देल गेल। ओ लंबित कांड की समीक्षा कऽ कऽ अनुपालन के लिए कतेको निर्देश देलन। इश्तेहार और कुर्की जब्ती प्राप्ति के 3 दिन के अंतर तामिला कराबों के निर्देश देलन है। हाजत सुरक्षा और निरीक्षण कऽ कऽ आवश्यक निर्देश सेहो देलन। CCTNSS के समीक्षात्मक बैसार कऽ कऽ आवश्यक निर्देश सेहो देलन। दरभंगा में श्यामा मंदिर के समुचित प्रबंधन के लेल विभिन्न पद पर नियुक्ति के लेल आवेदन के अंतिम तिथि आब 6 जुलाई तक विस्तारित कर देल गेल। ई जानकारी दैत श्यामा मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन झा बतौलन कि विभिन्न पद पर नियुक्ति के लेल पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आवेदन के अंतिम तिथि 25 जून निर्धारित कैल गेल छल, लेकिन आब ई तिथि अगला 6 जुलाई तक विस्तारित कर देल गेल। संगहि ओ बतौलन कि श्यामा मंदिर प्रबंधन के लेल प्रबंधक सह प्रबंधक लेखापाल सहायक लेखापाल बिजली मिस्त्री जनसंपर्क समन्वयक एक एक पद पर नियुक्ति के लेल आवेदन आमंत्रित कैल जा रहल अछि। ओतहि कंप्यूटर ऑपरेटर और 2 गो पुजारी के लेल 4 गो पद रिक्ति के प्रकाशन कैल गेल। पुजारी पद के लेल निर्धारित 4 गो रिक्ति में 1 गो महिला पद के अभ्यर्थी के पद आरक्षित सेहो राखल गेल। कला एवं संस्कृति विभाग आगामी 30 जून को जनकवि बाबा विद्यनाथ मिश्र यात्री नागा अर्जुन के जयंती मनाबो के लेल गुरुवार को उमेश नागा अर्जुन संस्कृत कॉलेज तरौनी के स्थल के चयन कैल गेल। सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चा के प्रस्तुति के लेल मंच बनाबो के निर्देश जिला कला एवं संस्कृत अधिकारी चंदन कुमार देलन है। सूत्र के मुताबिक संस्कृत कॉलेज के कर्मी के कॉलेज के कमरा के शौचालय के साफ सफाई करबा के लेल कहल गेल और एकरा बाद बच्चा के पुरस्कृत सेहो कैल जायत। डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स दरभंगा कोलकाता रूट पर चलायल जा रहल इंडिगो के सीधा फ्लाइट बंद होबा जावा कारण आक्रोश जतौलन है। चैम्बर के अध्यक्ष पवन सुरेखा बतौलन कि नागरिक उड्डयन मंत्री और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के पत्र और ईमेल के माध्यम से इस समस्या के बताओल गेल और एकर निराकरण के दिशा में अग्रतर ठोस कार्रवाई करबा के लिए उनका तरफ से अनुरोध सेहो कैल गेल। घनश्यामपुर के बिरौल में ग्रामीण SP गुरुवार को घनश्यामपुर और बिरौल थाना के औचक निरीक्षण कैलन। एहि क्रम में वो विभिन्न तरह के पंजी महिला हेल्प डेस्क मासिक

0: कार्य विवरणी, मालखाना, हाजत, सुरक्षा, चार्जशीट, हाजत और गिरफ्तारी पंजी के अभिलेख के सेहो जांच कैलन। संगे हत्या, लूट, डकैती जैसन संगीन अपराध और घटना में लंबित मामला के लिए आवश्यक निर्देश सेहो दिलन। पुलिस अधिकारी के फरार अभियुक्त के शीघ्र गिरफ्तारी करवा के लिए समय पर वाहन चेकिंग, रात्रि गश्ती, बैंक ATM की सुरक्षा व्यवस्था के लक चौकस रहवाक निर्देश दिलन है। मनीगाछी में मुहर्रम और तजिया के शांति व्यवस्था कायम रखवा के लिए प्रखंड क्षेत्र पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के लिए सामाजिक सुरक्षा और पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी के बीच बैसार सेहो कैल गेल। मुहर्रम पावनि के लक 26 जून का निकल वाला जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के ध्यान में रखकर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के निर्धारित समय अवधि के लिए विद्युत आपूर्ति सेवा अस्थायी रूप से कति थोड़ेक देर के लिए बंद रखल जाए। विद्युत विभाग सब उपभोक्ता से अपील कर रहे हैं कि जुलूस समाप्त के बाद विद्युत आपूर्ति सेवा फिर से बहाल कर दिल जाए। ऐसी मोटर सहित अध्यक्ष विद्युत भार वाला उपकरण के तुरंत उपयोग नहीं करी, ऐसा कम से कम 30 मिनट के बाद उपकरण के चालू करी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संगीत और नाट्य विभाग में चल रहल 4 दिवसीय कार्यशाला में 3rd दिन गुरुवार को संगीत मारतंड पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के जन्म जयंती मनाओल गेल। अई अवसर पर डॉक्टर अभिषेक स्मित उनका व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाललन। डॉक्टर स्मित कहलन कि पंडित ओंकार नाथ ठाकुर संगीत के क्षेत्र में अनगिनत उल्लेखनीय कार्य कयने छे। संगीत के प्रायोगिक पक्ष और शास्त्र के लक महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखन कैल गेल। हुनक लिखित संगीतांजलि के 5 भाग में प्रणव भारती नामक पुस्तक से प्रकाशन सेहो कैल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के अध्यक्षता में सिंडिकेट के बैसार आयोजित कैल गेल। कुलपति के आवासीय कार्यालय के सभागार में हाइब्रिड मोड में आयोजित बैठक में विभिन्न प्रस्ताव के बाद विचार विमर्श के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लेल गेल। अही के संग आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: तो अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं और कुछ मौसम संबंधित बात करते हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 26 जून से 30 जून 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि में आमतौर पर मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कुछ स्थानों पर 27, 28, 29 जून के दौरान मेघ गर्जन एवं तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। इसके प्रभाव से कहीं कहीं हल्की सी मध्यम वर्षा होने की भी अनुमान है। इस दौरान औसतन अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह की सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 85% तथा दोपहर की सापेक्षिक आर्द्रता 30 से 35% रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान अवधि में हवा मुख्यतः पूर्वी दिशा में 14 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की संभावना है।
0: जो हम लोग बात करें यातायात संबंधी जानकारी के विषय में तो बताबे चली श्रोता लोकन जे यातायात संबंधी में सबसे पहले सड़क मार्ग में कतौ कोनो फेरबदल नहीं कैल गेल है। हालांकि अगर यातायात व्यवस्था में कोनो तरह कोनो VVIP मूवमेंट के कारण फिर बदल कैल जाए तो कर जानकारी अपने लोगन के आकाशवाणी दरभंगा परिवार के तरफ से जरूर दिल जाए। रेलवे बोर्ड के द्वारा जे जाहि गाड़ी के जे प्रस्थान करबाक समय निर्धारित है और जाहि गाड़ी के जे आगमन के समय निर्धारित है अइमे रेलवे के द्वारा कतौ कोनो निर्धारित बदलाव नहीं कैल गेल है। समय सेहो ठीक ठाक जा रहा है। अगर कोनो बदलाव है तो ओकर जानकारी अपने लोगन के आकाशवाणी दरभंगा परिवार के तरफ से जरूर दिल जाए। हवाई अड्डा अथॉरिटी के तरफ से कोनो विमान के जे छे समय सारणी में फेरबदल नहीं कैल गेल है। हालांकि जखन हमारा कने स्टूडियो में आबैत छलहुं हैं कार्यक्रम के प्रस्तुति देबा के लेल तो मौसम आसमान किछु लागल छलै, मौसम किछु खराब जरूर छलै। अगर मौसम खराब भेल तो ओकर असर विमान सेवा पर पड़त, अगर नहीं खराब भेल तो अपन समय के हिसाब से उड़ान भरत। तो ई छल आजुक यातायात संबंधी जानकारी और कुशल आजुक नमस्कार मिथिला के अंक में हमारा के अब घड़ी के सुई जैसे टिक टिक किछु और इशारा कर रहल अछि। तो पहले हमारा श्रोता लोकन से किछु बातचीत कर रहल छी, ओकरा बाद फिर जे हमर शेड्यूल अछि ओहि हिसाब से सप्ताह

0: कार्यक्रम
1: हाँ, रंजीत जी, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि आज हम लोग बात करेंगे समाज में मीडिया की भूमिका। मीडिया की भूमिका सदैव ही रंजीत जी महत्वपूर्ण रही है। मीडिया शब्द का निर्माण ही मीडियम का बहुवचन रूप है। लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को देखा जाता है, जहाँ न्यायपालिका, विधायक, कार्यपालिका जैसी शक्तियाँ कार्य करती है, तो उन सभी के कार्यों को सही मायने में सही व्याख्या द्वारा हम आम जनमानस तक पहुंचाना ही मीडिया का काम है। न्यूज़ कलेक्ट करता है और न्यूज़ का स्पेलिंग और इसका फुल फॉर्म अगर सही तरीके से देखें तो एन से नॉर्थ, ईस्ट से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट और एस से साउथ होता है, यानी चारों दिशाओं से आने वाली घटनाओं परिघटनाओं को संक्षिप्त विवरण बनाकर प्रस्तुत करना ही मीडिया का काम है।
0: देखो कुछ तरह बड़ा सुंदर प्रश्न छे। मीडिया यानी पत्रकारिता, चारि गो जे स्तंभ छे तेमे से एकटा स्तंभ अहाँ पहले कहलूँ है जे मीडिया छे। मीडिया के समाज और सरकार के बीच में जे समन्वय स्थापित होइ छे तेमे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर केओ निभावे छे तो मीडिया निभावे छे। मीडिया शब्दक अर्थ यह निकले छे जे मध्यस्थता, सरकार और आम जन के बीच में जो समन्वय स्थापित करे। तो यहाँ पहले न्यूज के बड़ा सुंदर फुल फॉर्म बना दिलिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो कहलूँ है। आप वर्तमान परिस्थिति में जो मीडिया के बन गई स्थिति, वो कतौ ने कतौ जो है से बड़ा अपना आप में विशेषज्ञ के कह के प्रस्तुत कल जा रहा है। अब अहाँ देखो जो हम मीडिया के बात करी तो सरकारी मीडिया में रेडियो और दूरदर्शन यानी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन आबत है। जेना जेना समय बीतत गेले संचार के माध्यम बदलत गेले, संचार जे छै से माध्यम विस्तारित होत गेले, तो मीडिया के जे छै से भूमिका सेहो विस्तारित होत चल गेले। आई के डेट में और बीतल काल के डेट में मीडिया के ऊपर जे जिम्मेवारी छलै आई कतौ ने कतौ बेसी जिम्मेवारी भऽ गेलै। आई यहाँ देख लेबै जे मीडिया के नाम पर एकटा बहुत पैघ जाल सेहो चलि रहल छै। तऽ हम श्रोता लोकनि की कहबनि जे ओहि मीडिया के जाल से अहाँ बची। सोशल मीडिया के सेहो आई लोकनि मीडिया के जोड़ि के देखै छथिन। सोशल मीडिया और ई मीडिया में अंतर होइ छे। सबसे पहले हमरा लोकन के ई ख्याल रखबाक चाही जे मीडिया के जे मूल कर्तव्य छलै ओहि कर्तव्य से ओहि पथ से कखनो नहीं भटकबाक चाही। समाज में सकारात्मकता के संग कना विनिर्माण हेतै ताहि में मीडिया के अहम भूमिका होइ छे। और सब दिना रहलै अहाँ देश के आजादी के अगर अहाँ बात कर ली तो हम अहाँ के बताबे चली, हमरा बात के अन्यत्र नहीं लेल जाए। आजादी के लड़ाई में जखन कुशल एक दोसर तक अपन बात पहुँचाब के साधन मीडिया के बनाओल गेले तो अंग्रेज सरकार के द्वारा ओकरा दमन कैल गेले और ओहि समय में पत्र और पत्रिका जैसे से अहाँ के चोरी छिपे छापल जाय छलिए। और भारतीय जे आंदोलनकारी छला है, जे क्रांतिकारी छला है, हुनका तक उस पत्रिका और अखबार जैसे से छिपा कर पहुँचाएल जाय छलन है। और आई के डेट में जे छै से अहाँ देखियौ तो डेग डेग अहाँ के मीडिया भेट जायत। तो आजादी के लड़ाई में जे मीडिया के भूमिका रहले ओकर चर्चा तो होते रहले है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जे किछ कुरीति छे ओ जे मीडिया के माध्यम से दूर भ जेते तो राष्ट्र हमर देश के आगा बढ़वा से कतो को रोक नहीं सकै छे। मुदा जरूरी यह छे जे पत्रकारिता के जे शाब्दिक अर्थ छले, मीडिया के जे शाब्दिक अर्थ छले है, ओहि पर हमरा लोकन के कायम रहबाक चाही, तखने जे छै से एकर शब्द मायने निकलि कऽ अतै। हालाँकि हमरा लोकनि आकाशवाणी दरभंगा में बैसल छी, हमरा लोकनि के शब्द सेलेक्शन और शब्द प्रसारण करबाक किछ कोड लागू होइत अछि, नहि तऽ बाजबाक लेल एहिठाम बहुत रास बात थिक। जे आइ देख लेबै अहाँ जे मीडिया के नाम पर कहि दै छी हम, अहाँ रोड पर देखैत हेबै जे बहुत गाड़ी पर अहाँके लिखत भेल मीडिया प्रेस, और जखन अहाँ हुनकर गतिविधि देखबनि तऽ ओ दोसरे तरहक गतिविधि नजर आबै छै, तऽ कतौ ने कतौ मीडिया पर सेहो प्रश्न चिन्ह ठाड़ कऽ दैत छै। खैर, ई सामाजिक चीज छै, एहन नहि होबाक चाही। जे ओकर मूल कर्तव्य छै ओहि विमुख हमरा लोकनि के रहबाक चाही। और एक डेग आगाँ बढ़ै छी, चर्चा फेर आगा हमरा लोकनि करब, मुदा एकटा सबसँ पहिले फिल्म संगीत, ओकरा फेर साप्ताहिक कार्यक्रम हेतै तऽ आउ सुनै छी फिल्म संगीत।

0: रंजीत जी, वैसे तो आजकल हर क्षेत्र में विकृतियां देखने को मिलती है। जब से प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉयड फोन हो गया, तब से सभी व्यक्ति अपने आप को मीडिया ही समझते हैं। जब भी कोई घटना कहीं घट रही हो या वो मौजूद हो, फटाक से वह अपना मोबाइल एंड्रॉयड फोन निकालते हैं और कैमरे में कैद कर उसे सोशल साइट्स पर डाल देते हैं। पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह एक तरह से मीडिया ही है, लेकिन इसकी कई भ्रांतियां हैं जिससे समाज कभी कभी भ्रमित होकर गलत रास्ते पर भी चल सकता है।
1: देखियो, अत्यधिक सर्वत्र जे लोग कहावत छै संस्कृत में जे कतौ देखियो, बड़ा सुंदर बात छै जे सर्वत्र बढ़ जेते, तो ओइसे हमरा लोगन के सबतर बचबाक चाहिए। अब देखियो, मीडिया के बड़ा सुंदर अहाँ बात कहलहुँ जे तात्पर्य बदल गेलै। पहले छलै प्रिंट मीडिया, ओकरा बाद भेलै इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो मीडिया दू तरहक भऽ गेलै। आब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अयला के बाद समस्या कुशल आ उत्पन्न ई भऽ गेलै यऽ जे अहाँ देखैत हेबै जे आब जेटा नवका प्लेटफॉर्म तैयार भऽ गेलै मीडिया के, सोशल मीडिया। ओकरा बाद एकटा और नयका मीडिया तैयार प्लेटफॉर्म तैयार भऽ गेलै, ओकर नाम भऽ गेलै यूट्यूबर। लोक लिखै छथिन
0: यूट्यूबर,
1: ब्लॉगर यूट्यूबर। आब अगर अहाँ ओकरो मीडिया के श्रेणी में राखि देबै, तऽ जे मीडिया छै ओकरा अहाँ कोन श्रेणी में रखबै? यूट्यूबर मीडिया नहीं भ सकैया, मीडिया यूट्यूबर नहीं भ सकैया। अब हम अहाँ के बताबी जे यूट्यूबर के दशा ई छियनि जे एकटा मोबाइल लऽ कऽ हुनकर कार्यालय हुनकर सब किछु जेबीए में छनि।
0: हाँ,
1: हुनकर सब चीज जेबीए में छनि।
0: इसलिए अभी हमने कहा ना कि जिसके पास एंड्रॉइड फोन है जेब में, वो
1: मीडिया। तो कतौ ने कतौ जे असंभावित मीडिया छलै, जे हकीकत में मीडिया छलै, या ओहि मीडिया पर कतौ ने कतौ जे छै से आब ओकरा पर प्रश्न चिन्ह उठि रहल छै। आइ अहाँ देखैत हेबै जे कतौ किछु भेल, लोक पहुँचे ऐसे हुआ। अच्छा, दोसर बात एकटा बात अहाँ आओर देखबै, आइ लोक हमर अखन आकाशवाणी दरभंगा ट्यून केने हेतै, कार्यक्रम सुनि रहल छै नमस्कार मिथिला, बाजबाक शैली, उच्चारण, ओकरा बाद अहाँके हर्षी, दीर्घी, हर्षु
0: सब,
1: ओकर किछु एकटा जे प्रेजेंट करैके तरीका होइ छै, एकटा पहनावा ओढ़ावा होइ छै, अहाँ देख लेबै जे ओ कतौ ने कतौ आइके डेटके मीडिया पर प्रश्न ठाड़ कऽ रहल छै।
0: इसीलिए रंजीत जी, आजकल मीडिया को कड़े कानून एवं दायित्व के साथ बढ़ने की भी अति आवश्यकता आन पड़ी है। समय में और समाज में इस मीडिया की जो भूमिका थी वो पहले भी ऊपर थी और अब आगे भी ऊपर रहेगी।
1: हाँ, ना देखिए, एक स्लोगन चलने चले, मैं भी फलाना,
0: हाँ
1: मैं भी ठिकाना, तो वह भ गए मैं भी मीडिया। हाँ, और अब कोनो ई नहीं छे। मान लियो जे अगर अहाँ के मीडिया हाउस चलबक अछि, कोनो चैनल अहाँ के चलबक अछि, तो ओकरा लेल अहाँ के कतौ सँ की के अनुमति लेबऽ पड़ैया, ओकर की क्राइटेरिया छै, ई हमरा पता नहि। मुदा हम एकटा गाड़ी पर प्रेस लिख कऽ घूमि रहल छी और हम जे छै से कतौ अपन मोबाइल निकालि कऽ शुरू भऽ जाइ छी, कोनो कार्यालय में हम घुसि जाइ छी, कि मीडिया के लेल कोनो प्रोटोकॉल नहि छै? आइ अगर हमर कोनो आकाशवाणी के संवाददाता छथिन, दूरदर्शन के संवाददाता छथिन, तो प्रोटोकॉल के मेंटेन करै छथिन। प्रिंट मीडिया प्रोटोकॉल के मेंटेन करै छै, मुदा ओकरो नियम छै, अगर हम कतौ साक्षात्कार करबाक लेल किनको जाइ छियनि, तऽ पहिले हुनका सँ कॉल कऽ कऽ समय लै छियनि। ओतऽ गेला के बाद हम जे गेट पर आदमी ठाड़ छियै, परिचारी जे छै, तिनका कहै छियनि जे अहाँ अधिकारी के जाकऽ कहियौ जे अमुक जगह सँ अमुक व्यक्ति अयला है, ओ हमरा परमिशन दै छथि, तखन हुनका सँ जाकऽ साक्षात्कार करै छियनि। लेकिन आजुक डेट मे मोबाइल लऽ कऽ सीधे पहुँच गेलहुँ, मैं परिचित हूँ, कहाँ अधिकारी, नहि। गरिमामयी पत्रकारिता समाज के ऊपर लऽ जाइ छै और मर्यादा सब तरह छै। उदाहरण के लेल हम अहाँ कुशल कही, अखन बारिश के समय छै, थोड़े दिन में अपनो सबके क्षेत्र में बाढ़ि आबि जेतै, गंगा मैया में उफान होतै, जे गंगा मैया बहुत नीचा चल गेलखिन है, काल बाढ़ि होतै तो गंगा मैया गंगा के क्षेत्र में जे वसल लोग छथि हुनका घर तक पहुँच जेथिन। एक दिन हम ओहि गंगा में जाकर स्नान करै छी, लेकिन वह गंगा जखन ओहि घर तक पहुँचतै तऽ लोग झाड़ू मारि के पानि के हटाबै छथिन। इएह होइ छै मर्यादा शब्द के।

मतलब जखन अहाँ मर्यादा के उल्लंघन कऽ देबै तऽ ओतऽ किछु नहि रहि जाइ छै। तैं मीडिया सँ जे कोनो जुड़ल व्यक्ति होइत, चाहे ओ प्रिंट मीडिया सँ जुड़ल होइत, आकाशवाणी सँ होइत, दूरदर्शन सँ होइत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सँ होइत, ओ अपना मर्यादा मे रहैत तऽ मीडिया के मान रहतै, सम्मान रहतै। और जखन मीडिया के मान सम्मान रहतै तऽ मीडिया कर्मी के मान सम्मान रहतै, तऽ मर्यादा के उल्लंघन नहि होबाक चाही। और फिलहाल कार्यक्रम में हमरा लोकनि आगा बढ़ै छी। और जेना पहले अहाँ घोषणा केने छलहुँ जे हमरा लोकनि शुक्र दिन का साप्ताहिक कार्यक्रम सुनै छी, तब ई साप्ताहिक कार्यक्रम अखन हमरा लोकनि सुनै छी।

महात्मा गांधी बचपन से ही सरल, सादगी पसंद और शर्मीले स्वभाव के थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई के सबसे छोटे पुत्र के रूप में हुआ। इनके पिता को धन जोड़ने का लोभ न था, इसलिए वह अपनी संतान के लिए बहुत थोड़ी संपत्ति छोड़ गए थे। गांधी जी पर अपनी माता का बचपन से ही गहरा प्रभाव पड़ा। सेवा, स्वार्थ त्याग और दूसरों के लिए प्रेम, यह गुण गांधी जी ने अपनी माता से ग्रहण किए थे। गांधी जी का बचपन पोरबंदर में ही बीता। उन्हें किसी पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया, परंतु वहां उन्होंने मुश्किल से कुछ पहाड़े ही सीखे। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि बचपन में उनकी बुद्धि मंद रही होगी। जब गांधी जी के पिता पोरबंदर से राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए, तब गांधी जी की उम्र महज 7 वर्ष थी। राजकोट में उन्हें एक देहाती पाठशाला में भर्ती कराया गया। पोरबंदर की तरह वहां भी गांधी जी को साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में ही गिना जाता था। पाठशाला के बाद 12 वर्ष की उम्र में इन्हें हाई स्कूल में भर्ती कराया गया। अभी गांधी जी हाई स्कूल में ही पढ़ते थे कि महज 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। गांधी जी की स्त्री का नाम कस्तूरबा गांधी था। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, वह स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और कम बोलने वाली स्त्री थी। जब गांधी जी के पिता का देहांत हुआ, तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। गांधी जी ने 6 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण की, परंतु उन्हें पाठशाला में कभी धर्म की शिक्षा नहीं मिली। वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण उन्हें वैष्णव मंदिर जाने का मौका मिला करता, परंतु उन्हें मंदिर का वैभव अरुचिकर लगता था। 1887 में गांधी जी ने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण की। गांधी जी के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः बड़ों की इच्छा से आगे की पढ़ाई के लिए कम खर्ची के ख्याल से गांधी जी ने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में पढ़ने का निश्चय किया। वहां उन्हें सब कुछ मुश्किल लगा। अध्यापकों द्वारा दिए गए व्याख्यान उन्हें समझ नहीं आते थे। इसमें अध्यापकों का कोई दोष न था, बल्कि गांधी जी ही पढ़ाई में कमजोर थे। भावनगर कॉलेज में अपना पहला सत्र पूरा करके गांधी जी घर आए। एक दिन गांधी के पुराने पारिवारिक मित्र और सलाहकार, व्यवहार कुशल ब्राह्मण भावजी दवे उनके घर आए। उन्होंने कहा कि करमचंद गांधी उर्फ कबा गांधी की गद्दी लेने के लिए भाइयों में से किसी का विलायत जाकर शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है, इससे परिवार पुनः सम्मानित होगा। जब उन्होंने गांधी जी से इस विषय में उनकी राय जाननी चाही, तो गांधी जी को उनका विचार बहुत पसंद आया और खुद विलायत जाने की हामी भर दी। उस वक्त गांधी जी की उम्र केवल 19 वर्ष थी। 4 सितंबर 1888 को गांधी जी ने बंबई छोड़ा। गांधी जी के साथ राजकोट के एक वकील, जिनका नाम मजूमदार था, भी विलायत बैरिस्टर होने जा रहे थे। गांधी जी अपनी यात्रा पूरी करके साउदम्पटन आ पहुंचे। गांधी जी के पास 4 परिचय पत्र थे। एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता के नाम, दूसरा दलपत राय शुक्ल के नाम, तीसरा प्रिंस रणजीत सिंह जी के नाम और चौथा दादा भाई नौरोजी के नाम। साउदम्पटन से ही गांधी जी ने डॉक्टर मेहता को तार देकर बुला लिया था। वह आए और उन्होंने प्रेमपूर्ण विनोद किया।

0: और यहीं से गांधी जी की यूरोपियन रीति रिवाज की शिक्षा का आरंभ हुआ। डॉक्टर मेहता ने गांधी जी को बताया कि होटल में रहने पर खर्च अधिक होगा, अतः किसी निजी परिवार के साथ ही रहना उचित होगा। डॉक्टर मेहता और दलपत राय शुक्ल ने वेस्ट कैसिंगटन में एक एंग्लो इंडियन घर खोज निकाला और गांधी जी की वहां रहने की व्यवस्था कर दी, परंतु वहां भी गांधी जी के भोजन की समस्या खड़ी हो गई। गांधी जी को बिना मिर्च मसाले का साग पसंद नहीं आता था। घर की मालकिन सुबह जई का दलिया बनाती, जिससे उस समय तो गांधी जी का पेट भर जाता, लेकिन दोपहर और शाम को उनको भूखा ही रहना पड़ता। उनके मित्र उनको समझाते कि मांसाहार में कोई दोष नहीं है, परंतु गांधी जी उनकी एक न सुनते। गांधी जी ने अपना भोजन खुद पकाने का निश्चय किया और साल्ट की लिखी अन्नाहार की हिमायत नाम की पुस्तक एक शिलिंग देकर खरीद ली। अब गांधी जी ने सभ्यों के लक्षण प्राप्त करने का निश्चय किया, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी सभ्यता सीखनी शुरू की। सबसे पहले गांधी जी ने आर्मी और नेवी स्टोर में सभ्य सूट बनवाए, लेकिन केवल सभ्य सूट पहन लेने से ही कोई सभ्य थोड़े ही हो जाता है। अतः गांधी जी ने कुछ ज्येष्ठ व्यक्तियों से लंदन के आचरण तथा इंग्लिश समाज के आचरण के बारे में जो प्रथाएं प्रचलित थीं, उन सब की जानकारी प्राप्त की। गांधी जी ने फ्रेंच भाषा सीखी, नृत्य करना और सार्वजनिक भाषण की कला सीखने का भी प्रयास किया, लेकिन वह नृत्य कला नहीं सीख पाए। भाषण कला सीखने के लिए उन्होंने बेल का लिखा स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट खरीदा और पिट का भाषण शुरू किया। इन्हीं बेल साहब ने गांधी जी को उचित राह दिखाई। उन्होंने गांधी जी से कहा कि वे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, इंग्लैंड में जिंदगी बिताने नहीं। नाच नाच कर कोई सभ्य नहीं बन सकता, मनुष्य अपने सदाचार से ही सभ्य समझा जा सकता है। इन बातों का गांधी जी पर बहुत असर हुआ और उन्होंने सभ्य बनने की ललक छोड़कर सादगी का जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। गांधी जी अब वास्तव में विद्यार्थी बन गए। और अब प्रस्तुत है गांधी जी के बारे में अमरेश्वरी चरण सिन्हा के विचार।
1: महात्मा गांधी ने संपूर्ण जीवन में साधन और साध्य की शुद्धता और पवित्रता, एकरूपता पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। उसका मूल उद्देश्य यह था, जब तक जीवन में सत्य प्रेम करुणा पर आधारित संघर्ष मनुष्य के अंतर क्षेत्र में नहीं होगा, तब तक बहिर्मुखी स्वरूप में उभर कर नहीं आएगा। वह प्राणियों में ईश्वर का वास देखते थे। यही कारण था कि मूर्ति प्रथा के वह समर्थक तो नहीं थे, लेकिन विरोधी भी कहे नहीं गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके लिए प्राणियों की सेवा, प्राणियों में व्याप्त ईश्वर को देखना, समझना और उसकी सेवा करना जीवन का एक लक्ष्य है। आज जब हम गांधी को एक व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं, तो उसमें बहुआयामी प्रतिभा झलकती है। इसलिए गांधी को समझने और गांधी को जानने की आवश्यकता आज के दौर में बढ़ जाती है, क्योंकि आज हमारे बीच नैतिक और चारित्रिक बल, जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति की सबसे बड़ी पूंजी थी, उसकी कमी आई है। और गांधी ने सबसे अधिक नैतिक और चारित्रिक बल को दिया था। हमारे जीवन में यदि उसका ह्रास होता है, तो संपूर्ण वांग में गांधी का जो है वह प्रभावित होता है। जब हम महात्मा गांधी के जीवन और उनके कर्म पर विचार करते हैं, तो उसमें एक आध्यात्मिक शक्ति हमें नजर आती, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण अपने संघर्ष में सिर्फ प्रयोग किया है, और प्रयोग इस रूप में किया है कि उन्होंने यह नहीं कहा कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो। उन्होंने सिर्फ यह किया कि उन्होंने अपने कर्म के माध्यम से हमें प्रेरित किया। आज जब स्वयं में परिवर्तित स्वरूप स्थापित करते हुए बहिर्मुखी रूप में प्रकाश पुंज को दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, तो महात्मा गांधी के किए गए प्रयास, उनके सत्य के प्रति निष्ठा, प्रेम पूर्वक किसी भी विषय

0: को लोगों तक पहुंचाने की दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे लिए प्रेरणादायी और हमें एक मार्ग निकलने में सक्षम हो रहा है, उसे आज सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है।
1: अभी आप गांधी जी के बारे में अमरेश्वरी चरण सिन्हा के विचार सुन रहे थे। गांधी कथा में आज इतना ही।

0: रंजीत जी, अभी हम लोग सुन रहे थे, अपने श्रोताओं को सुनवाए थे 7 तारीख का कार्यक्रम
1: कार्यक्रम
0: गांधी कथा का।
1: जी जी
0: तो आइए अब क्यों ना चलते चलते हम लोग फिल्म संगीत का एक बार और आनंद ले लें, अपने श्रोताओं को थोड़ा मनोरंजन करवाते हैं।
1: चले,
0: फिल्म संगीत।

बड़े धोखे हैं इस राह में तो श्रोता लोग फिल्म संगीत हम लोग सुनने चलूँ हैं। और आज तो मुस्कान मिथिलांक हम लोग अब समय भर रहे विदा लेवा के श्रोता लोग के आधार पर मुस्कान हमेशा कायम रहें। अही शब्दक संग आजुक नमस्कार मिथिलांक अंक सँ हम लोग लै छी विदा। नमस्कार मिथिला।

0: आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
4: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
3: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
5: तुम नाचो रस बरसी,
3: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: से जुड़ी हस्तियों की
1: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
0: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
2: तुम नाचो रस बरसी,
0: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग, बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: भोर होते उठ जाओ किएक त इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
6: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
5: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
7: तुम नाचो रस बरसी,
5: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग, बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

0: इस समय सुबह के 8 होने ही वाले हैं। अब समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया।

अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक

0: प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज़ जल डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
3: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
4: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3,000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला

0: की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत, लोकसत्ते ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail.

0: ने कांसे का तमगा जीता जबकि कुमार योगेश चौथी पोजीशन पर रहे। योगेश प्रतीक और अभिनव चौधरी पर मुश्तमिल भारतीय टीम ने टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। आखिरी रोज भारत ने चार तमगे जीते और तमगों की तादाद 25 हो गई, जिनमें सोने के साथ चांदी के 8 और कांसे के 10 तमगे शामिल हैं, जिसके बाद भारत लगातार दूसरी मरतबा तमगों के मामलों में सरफहरिस्त रहा। क्रिकेट में आज बेलफास्ट में पहले T20 बैन अलावामी मुकाबले में भारत मेजबान आयरलैंड का सामना करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से खेला जाएगा। इतवार के रोज भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ अपना दूसरा और आखिरी T20 मैच खेलेगी। इसके बाद सुरेश अय्यर की कप्तानी में मर्दों की भारतीय टीम 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगी। इसका आगाज आइंदा माह की पहली तारीख से होगा। इसके बाद 3 एक रोजा बैन अलावामी क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, वेनेजुएला में तबाहकुन जलजले सैकड़ों अफराद हलाक, 1,000 से जायद जख्मी, 10,000 से 1,00,000 के दरमियान अमवात का खदशा, दुनिया के कई मुल्कों ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ। इसी खबर से मुतालिक रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वेनेजुएला में जलजले से भारी तबाही पर दुख, वजीर आजम ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, LPG की सप्लाई पर से तमाम पाबंदियां हुकूमत ने उठाई, अब लोगों को मामूल के मुताबिक गैस सिलेंडर दस्तियाब होगा। भारत अमरीका मेगा डील जल्द, दुनिया की नजरें 24 जुलाई पर टिकी हुई हैं। यह खबर रोजनामा प्रताप के सफ़े अव्वल पर नुमाया अहमियत के साथ मौजूद है। इसी सफ़े की एक और खबर है, दिल्ली की 270 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को नए सिरे से बनाया जाएगा, रेखा गुप्ता का बयान। रोजनामा प्रताप ने रेखा गुप्ता के इस बयान को भी नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है कि दिल्ली के 75 CM श्री स्कूलों में नई सहूलियात तैयार की जाएंगी। कुछ दीगर अहम खबरें इस तरह से हैं, हज 2027 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज 20 जुलाई 2026 से कर दिया गया है, आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 है। 1,000 उम्रा जायरीन शाह सलमान के शाही मेहमान बनेंगे, मगरबी यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में नए रिकॉर्ड कायम।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के कायदाना रोल वाले इनकलाब पर तबादला ख्याल किया। सरकार ने कमर्शियल LPG की सप्लाई बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दी है, मुख्तलिफ तरह की बंदिशें हटा ली गई हैं। अयोध्या राम मंदिर अतिया केस के सिलसिले में 8 नामजद मुलजिमों और कई नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बैन अलावामी माली फंड ने कहा है कि मगरबी एशिया महाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इक्तिसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया, जिसमें शिफाली वर्मा की उमदा कारकर्दगी का अहम रोल रहा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों व बहनों ध्यान दें, जहां हो आपके हक की बात सहायता कॉल सेंटर दे आपका साथ हर बार। अगर आपको चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान, तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-345-6345।
4: सभी दिवस पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी।
3: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: AIR at 90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि के साथ बैठक करेंगे। केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग की आज कैमूर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और कटिहार समेत 29 जिलों में बारिश की चेतावनी। और मुहर्रम की 10वीं तारीख आज यौमे अशूरा के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रहा है ताजिया और मातमी जुलूस का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। यह प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देशभर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की

0: अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। एक रिपोर्ट।
1: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की यह परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। NTA के अनुसार उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। NTA ने पुनर्परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए शुल्क वापसी हेतु अपने बैंक खाते के विवरण की पुष्टि और उसे अद्यतन करने के लिए भी एक पोर्टल खोला है। बैंक विवरण इसी महीने की 30 तारीख तक अद्यतन किए जा सकते हैं। नीट पुनर्परीक्षा के दौरान लखीसराय जिले के परीक्षा केंद्रों पर हुए फर्जीवाड़े मामले की जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने 12 सदस्यीय SIT का गठन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस टीम का नेतृत्व EOU के DIG करेंगे। गौरतलब है कि नीट पुनर्परीक्षा के दौरान लखीसराय में अलग अलग मामलों में 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं मद्य निषेध सिपाही बहाली परीक्षा में बेगूसराय और नवादा में फर्जीवाड़े मामले की जांच भी EOU करेगी। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉ नरेंद्र प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद नाराजगी जाहिर की है। डॉक्टर सिंह के अनुसार विभाग ने कार्रवाई से पहले उनसे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मांगा। उन्होंने कहा है कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वे कॉलेज में उपस्थित नहीं हो सके थे। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर सिंह को बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और अन्य कार्यों में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर PMCH के स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग के अध्यक्ष डॉ गीता सिन्हा को कॉलेज के प्राचार्य का प्रभार दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने सदन की विभिन्न समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राज्य के भीतर या बाहर स्थल अध्ययन पर जाने वाली सभी समितियों के साथ प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा के दौरान प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार करनी होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय, नवादा, लखीसराय, जमुई, औरंगाबाद और अरवल जिले के कई प्रखंडों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह से ही इन स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन स्थानों पर अगले 2 से 3 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने बांका, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया और मुजफ्फरपुर समेत 29 जिलों में बारिश की चेतावनी

0: ने जारी की है। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में लू की चेतावनी जारी की है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं पटना, गयाजी, जीरादेई, बक्सर, शेखपुरा और वाल्मीकि नगर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। केंद्र सरकार ने नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर रोक लगाने के लिए

0: प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं पटना, गयाजी, जीरादेई, बक्सर, शेखपुरा और वाल्मीकि नगर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। केंद्र सरकार ने नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर रोक लगाने के लिए दवाओं पर QR कोड या बार कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सभी कैंसर रोधी दवाओं, टीके, मादक और मनोरोगी दवाओं पर QR कोड लगाना अनिवार्य है। यह प्रावधान अगले वर्ष 1 जुलाई से लागू होगी। रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पटना, अहमदाबाद और दानापुर बलसाड़ समेत 5 जोड़ी विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर नगर पटना स्पेशल अब 30 जुलाई तक, बलसाड़ दानापुर स्पेशल 27 जुलाई तक और अहमदाबाद पटना स्पेशल ट्रेन 1 जुलाई तक चलेगी। इधर रेलवे ने पटना कोटा एक्सप्रेस को जौनपुर सिटी स्टेशन पर प्रायोगिक तौर पर ठहराव दिया है। यह ट्रेन शाम 5:41 पर जौनपुर सिटी स्टेशन पर पहुंचेगी। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों के शहादत की याद में यौमे अशूरा मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस और मातमे जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने अपने संदेश में कहा है कि मुहर्रम के अवसर पर हम हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के करबला में दिए गए बलिदान को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से पारंपरिक सद्भाव, शांति और भाईचारे की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुहर्रम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि उनकी शहादत हमें इंसानियत, त्याग और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इधर मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को जुलूस मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। अरवल समेत विभिन्न जिलों में वरीय पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर और पटना सिटी समेत 351 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है। वहीं पटना समेत अन्य जिलों में ताजिया जुलूस को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला क्षेत्र में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से मुंगेर जिले के 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे में एक युवक अब भी लापता बताया जा रहा है। मृतकों के शवों को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मुंगेर भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। मामले में गोदाम मालिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारत और आयरलैंड के बीच आज से T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला बेलफास्ट में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू होगा। बिहार के वैभव सूर्यवंशी इस मैच से अपना डेब्यू कर सकते हैं। ऐसा होने की स्थिति में वैभव टीम इंडिया के लिए खेलने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे। उनकी उम्र अभी 15 साल 90 दिन है। भारत रविवार को आयरलैंड के खिलाफ दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच शुरू।

0: बिलौटी पहुंची, आयोग की टीम ने निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है हज 2027 16 साल बाद पटना एयरपोर्ट से हज ऑपरेशन होगा, पहली बार सीधे जा सकेंगे जेद्दाह और मदीना। हिंदुस्तान की सुर्खी है वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप से 188 की मौत। प्रभात खबर लिखता है स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण के दौरान गायब रहे पीएमसीएच के प्राचार्य को हटाया। राष्ट्रीय सागर ने लिखा है एनसीईआरटी सिलेबस में इमरजेंसी सेक्शन जोड़ा गया, 9वीं कक्षा को पढ़ाया जाएगा। आज अखबार की प्रमुख खबर है शिक्षकों के तबादले के लिए नई नियमावली लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग की आज कैमूर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और कटिहार समेत 29 जिलों में बारिश की चेतावनी। और मुहर्रम की 10वीं तारीख आज यौमे आशूरा के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रहा है ताजिया और मातमी जुलूस का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अब हर माह के अंतिम रविवार को आपकी ग्राम पंचायत में होगा पंचायत विकास दिवस।
2: ग्राम सभा में जानिए पंचायत की योजनाएं, प्राप्त राशि, व्यय, अवशेष राशि और आगामी विकास कार्यों की पूरी जानकारी।
1: चर्चा होगी स्थानीय विकास लक्ष्यों पर, दिखाए जाएंगे उत्कृष्ट पंचायतों के विकास कार्यों के वीडियो
2: और सुना जाएगा प्रधानमंत्री जी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात। आइए जुड़िए पंचायत विकास दिवस से।
1: जन भागीदारी से सशक्त ग्राम पंचायत, विकसित भारत, समृद्ध बिहार।
2: पंचायती राज विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग, बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
3: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानि बुन्नी नहीं हैत त खेती नहीं हैत आ खेती जँ नहीं हैत उपजा नहीं हैत त हमरा लोकनि खायब की
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम
6: पेश है। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

दुआ सलाम आदाब और आपके इस्तकबाल के साथ एक बार फिर हाजिर है आपकी मेजबान आपके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के साथ। आगाज़ अंजुमन से पहले आइए जान लेते हैं हमारी आज की नशरियात। हिज़्ब मामूल शुरुआत करेंगे हम शेर नगमा के साथ और आज हम आपको सुनवाएंगे जुमा के अफजल और मुकद्दस दिन के मौके नाते पाक। फिर आप सुनेंगे मकाला बातें जिनसे जिंदगी सवरती हैं के तहत तालीम का मकसद। मकाला निगार होंगे मोहम्मद तौसीफ आलम। और आज यौम आशूरा है तो इस मौके पर हम आपको सुनवाएंगे वासिफ हुसैन शब्बर से नौहा। और प्रोग्राम के

0: खुदा से करता हूँ मैं ये दुआ मदीने में। आप सुन रहे थे उस्ताद अफजल हुसैन जयपुरी का ये कलाम अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जमील मजहरी की शायरी के बारे में। अगर इस गुलशने हस्ती में होना ही मुकद्दर था, अगर इस गुलशने हस्ती में होना ही मुकद्दर था तो गुंचों की मुट्ठी में दिले बुलबुल हुआ होता, गुनाहों में जरर होता, दुआओं में असर होता, गुनाहों में जरर होता, दुआओं में असर होता, मोहब्बत की नसर होता, हसीनों की अदा होता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जमील मजहरी साहब के बारे में। सामईन, जमील मजहरी अदबी दुनिया में एक ऐसा नाम जिन्होंने उर्दू शायरी को एक अलग पहचान दी है। मजहरी साहब एक मशहूर उर्दू शायर रहे हैं जो अपनी गज़लों और नज़मों में जदीद मौजूआत के साथ साथ क्लासिकी रिवायत को खूबसूरती से मिलाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर ज़िंदगी, मोहब्बत और इंसानी खुद शनासी के बारे में अपने पुरजोश शोरों के लिए जाने जाते हैं। जमील मजहरी का असल नाम सैयद काजी मरी था। इनकी पैदाइश 1905 ईस्वी को पटना के मुग़लपुरा में हुई थी। इनका वाबस्ता पटना यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से भी रहा है। जमील मजहरी बुनियादी तौर पर नज़मों के शायर थे, मगर इसके अलावा वे गज़ल और मरसिया भी लिखते थे। जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, ये क्या कहा कि तेज़ है हवा ज़माने की। गर्ज़ की जमील मजहरी की शायरी फ़लसफाना सवालात, वजूदी मुश्किलात और इंसानी तजुर्बात की पेचीदगियाँ वाज़े होती हैं। वो अपनी नज़मों में मुख्तलिफ जज्बात और ख्यालात को पेश करते हैं जो पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मजहरी की शायरी और तशबीहात का इस्तेमाल इस उलझन को मज़ीद गहरा करता है जिससे क़ारी को एक नई बसीरत मिलती है। उनके ख्यालात की कसरत और गहराई उनकी तख्लीकात को ख़ास बना देती है, जहाँ कभी ज़िंदगी की सादगी और कभी उसकी पेचीदगियों को बयान किया गया है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मकाला, बातें जिनसे ज़िंदगी सवरती हैं। मकाला निगार हैं मोहम्मद तौसीफ आलम।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़ूबसूरत बनाएं और दुनिया व आख़रत को संवारें। अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम इंसानों को न सिर्फ़ इंसानियत सिखाई बल्कि हमें सही तरीक़े से ज़िंदगी जीने का सलीका भी सिखाया है, ताकि हम न सिर्फ दुनिया बल्कि आख़रत भी संवार सकें। दुनिया के सब रिश्तों का आगाज़ सबसे ख़ास रिश्ते से हुआ, वो था शौहर बीवी का पाक रिश्ता, जिसके बग़ैर दुनिया के किसी और रिश्ते का वजूद नामुमकिन है, ख़ाह वो माँ बाप, भाई बहन या दिगर और रिश्ते ही क्यों न हों। जब वजूद आदम अलैहिस्सलाम किया गया तो उनकी तन्हाइयाँ को दूर करने के लिए अल्लाह ने न माँ बनाई, न बाप और ना ही कोई दोस्त, बल्कि एक ऐसी शख्सियत को पैदा किया गया जो एक औरत थी और उनका रिश्ता अल्लाह ने शौहर बीवी का बनाया। यानी कि अल्लाह ने एक रिश्ता में ही हमारे तमाम रिश्ते दे दिए।

आप सुन रहे थे वासिफ हुसैन शब्बर से नौहा। दोस्तों, आज मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है, जिसे हम यौम आशूरा भी कहते हैं। मुहर्रमुल हराम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, जिनमें यौम आशूरा मुहर्रम की 10वीं तारीख को कहते हैं। आज के दिन अकीदतमंद रोज़ा रखते हैं और इबादत करते हैं, क्योंकि यौम आशूरा की बहुत फजीलत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि अगर मोमिन ज़मीन भर सोना भी खर्च करे तो भी आशूरी की फजीलत को नहीं पा सकेगा। इसमें जन्नत के 8वें दरवाजे खोल दिए जाते हैं, ताकि वो जिस दरवाजे से चाहें जन्नत में दाखिल हो जाएं। यौम आशूरा की ख़ास फजीलतें इस तरह हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दरजाते आलिया नसीब हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर उतरी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कलील का मनसब अता हुआ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई नसीब हुई, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौटाई गई, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के कौम की तौबा कबूल हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को फिरौन से निजात मिली, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठाया गया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को शहादत नसीब हुई। गर्ज़ की मुहर्रमुल हराम की कई फजीलतें हैं और इस दिन

दयारों में है एक दयारे मदीना। आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में मुकद्दस नातिया कलाम। आइए सुनते हैं अगला कलाम, चिराग जयपुरी का।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। ये प्रोग्राम आकाशवाणी पटना दरभंगा से प्रसारित किया गया।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। सुबह के 10 बजे हैं, समय हो चला है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के गाए इस युगल गीत से।

तुमने पुकारा और हम चले आए। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में बनी ये फिल्म थी राजकुमार। इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर को। सच में आप बुलाएं और भला हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? प्यार भरे फिल्मी गीतों का ये सुहाना सफर जारी है। श्रोताओं, आपके साथ एक बार फिर हाजिर है आपका ये रेडियो हम सफर। लीजिए आपको सुनवाते हैं रविंद्र जैन के संगीत गीत निर्देशन में बनी फिल्म गीत गाता चल का ये गीत, गायक कलाकार आरती मुखर्जी और जसपाल।

प्यार भरे फिल्मी गीतों का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। अपने सुनने वालों को हम याद दिला दें, अपनी ही चिट्ठियों पर आधारित पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज आप सुनेंगे दोपहर 1:15 से। अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के फिल्मी गाने हमारे इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, जो आज दोपहर 1:15 से प्रसारित होगा, तो हमें इस कार्यक्रम के लिए लिख भेजिए। एक पोस्टकार्ड पे अपने पसंदीदा फिल्म का नाम, गीत के बोल, गायक कलाकार का नाम, अपना नाम पता साफ अक्षरों में लिखकर भेज दीजिए हमें हमारे इस पते पर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड नंबर है 846004। और आइए ना फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनवाते हैं आपको मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल का गाया ये युगल गीत। फिल्म का नाम है आजाद देश के गुलाम।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

आंखियों के झरोखों से। इस फिल्म में आप सुन रहे थे हेमलता को। प्यार भरे फिल्मी गीतों का ये सुहाना सफर है, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। प्यार भरे फिल्मी गीतों का हमारा ये सफर जारी है। राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में ये बनी फिल्म है द ग्रेट गैम्बलर। इस फिल्म में आपको सुनवाते हैं अमिताभ बच्चन और आशा भोसले को।

बप्पी लहरी और आशा भोसले को आप सुन रहे थे। ये फिल्म थी प्रेम प्रतिज्ञा। फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा।

मेरा कातिल मेरा मसीहा। लैला मजनू फिल्म का वो गाना हम आपको सुनवा रहे थे जिसे गाया था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। प्यार भरे फिल्मी गीतों का ये सुहाना सफर है, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। अपने सुनने वालों को हम याद दिला दें, आज दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे अपनी चिट्ठियों पर आधारित पसंदीदा फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आज रात 10 बजे आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों का हमारा जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन एक साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

सच में दोस्तों, हम सब एक मुसाफिर तो है, आते हैं जाते हैं और आने जाने के इस क्रम में बस हमारी यादें शेष रह जाती है। तो यादों को ही शेष रह जाना है तो यादें बेहतर होनी चाहिए, ऐसी यादें जो कोई याद करके खुश हो जाए, ना कि हमें याद करके नाराज हो जाए। तो जिंदगी में हमेशा कोशिश करना है कि हम इस सफर से जब आगे जाएं तो याद रहें, याद आते रहें। फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे, अपनापन फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे थे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। दीजिए अपने इस रेडियो हम सफर संजीव सुधाकर को विदा, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, कलाकार हैं अलाउद्दीन खान। आइए इनसे सुनते हैं सरोद वादन पर राग अलहिया बिलावल।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में अलाउद्दीन खां को सरोद वादन पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं।

0: प्रकृति का चमत्कार है। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओ, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओ, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओ, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं, और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है, और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।

0: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: 1942 ऑक्सफर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
4: Thank you. How are you?
5: Happy birthday, Stephen! Thank you,
4: congratulations!
5: Thank you, John! Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine!
5: Thanks for coming in. Please come in.
3: Oh, yes, sure. Yes. Why not? Why not?
2: Come! Yay!
3: Come!
2: John, please come here.
3: Oh, sure.

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh.

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में

0: बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ১৯৮৫ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी

0: पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे, लेकिन वे बोलते कैसे थे ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से

0: व्यंग हैं, तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
4: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
5: आग का गोला?
4: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
6: सूरज।
4: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
7: बहुत आसान पूछते हो।
4: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
7: अगली बार में बहुत मुश्किल।
4: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
6: हाँ।
4: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
7: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
4: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
8: वो तारा होता है।
4: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
9: वो रात और दिन भी बनाता है।
4: एकदम सही, एकदम
8: सही। वो हमें धूप भी देता है।
4: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
7: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
4: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
7: विटामिन डी।
4: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे।
8: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
4: हाँ बिल्कुल,
7: पेड़ों को खाना भी देता है।
4: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
7: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
4: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
7: हाँ।
9: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
4: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
7: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
4: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना।

0: अभी तेजी चल रही है।
1: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
2: ना।
1: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है
2: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना।
0: वो बहुत बड़ा भी होता है,
2: बहुत बड़ा होता है,
1: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
2: हम क्योंकि कई
0: दूर होता है इसलिए
2: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
0: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
2: हाँ,
1: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
2: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
3: सर्दी।
2: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
0: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
2: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
1: नहीं करता।
2: है। सूरज आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता है,
3: फिर भी जीवन दाता है।
2: धरती काटे चक्कर इसके,
3: धरती काटे चक्कर इसके।
2: लगे ये चलता जाता है,
3: लगे ये चलता जाता है।
2: सर्दी गर्मी बनते इससे,
3: सर्दी गर्मी बनते इससे।
2: ये दिन रात बनाता है,
3: ये दिन रात बनाता है।
2: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
3: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
2: सूरज ये
3: कहलाता है।
2: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये

0: लगे ये चलता जाता है,
1: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे,
1: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है,
1: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
1: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
2: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
2: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ की नहीं आऊँ।
2: वो भी दस
0: पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
2: और
0: से डर जाती
2: है। और आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप आने लेंगे हमारे केंद्र से नए फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म माँ से। गायक कलाकार हैं उषा उतुफ, संगीत निर्देशन हर्ष उपाध्याय के हैं और गीत लिखा है प्रणव वत्स ने।

0: आकाशवाणी पर।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

शहद कादरी के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म वनवासी। आवाज ये थी विशाल मिश्रा और पलक मुच्छल की। संगीत निर्देशन मिथुन ने किया था। श्रोता ये सुनते हैं अगला गीत जिसे गाए हैं राघव अर्जुन और राघव चैतन्य ने फिल्म वेदा से। गीत और संगीत राघव चैतन्य के हैं।

यारिया टू फिल्म का यह गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत और संगीत मनन भरद्वाज के थे। आवाजें थी अरिजीत सिंह और मनन भरद्वाज की। श्रोता आइए सुनते हैं एक और गीत अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म लापता लेडी से। संगीत निर्देशन राम संपत ने किया है। गीत लिखा है प्रशांत पांडे ने।

राम संपत के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को भी आप सुन रहे थे लापता लेडी से श्रेया घोषाल की आवाज में। गीत रचना श्वानंद केरकेरे की थी। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म किसी का भाई किसी की जान से। गायक कलाकार हैं कमाल खान, पलक मुच्छल, संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया ने किया है। गीत के बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने।

श्रोता, अभी आप सुने थे किसी का भाई किसी की जान का यह गीत कमाल खान और पलक मुछल की आवाज में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी आप आनंद ले रहे थे हमारे केंद्र से नए फिल्मी गीतों का। प्रस्तुत है सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार।

नारी संसार सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज शुक्रवार है और हमेशा की तरह आज भी हम विभिन्न विषयों पर चर्चा तो करेंगे ही, चर्चा के साथ साथ आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में, जहां आनंद लेंगे कुछ नए पुराने भूले बिसरे फिल्मी गीतों का। और हर दिन कुछ खास में होगा कुछ खास आपके लिए। मैडम, आज 26 जून के अवसर पर हम चर्चा करेंगे मानक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। यह दिवस हमें नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और समाज को नशा मुक्त बनाने का संदेश देता है। नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। शराब, तंबाकू, अफीम, गांजा और अन्य मादक पदार्थ धीरे धीरे व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देते हैं। एक नशे की लत कई सपनों को तोड़ देती है। परिवार में कलह बढ़ता है, आर्थिक संकट उत्पन्न होता है और बच्चों का भविष्य भी इससे प्रभावित होता है। सबसे अधिक पीड़ा उन महिलाओं को, उन माताओं को झेलनी पड़ती है जिनके परिवार का कोई सदस्य नशे की गिरफ्त में आ जाता है। आज के समय में युवाओं को इस गिरफ्त से बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ खुलकर संवाद करना चाहिए, तरह तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए ताकि युवा नशे के खतरों को समझ सके। यदि किसी व्यक्ति को नशे की लत लग गई है तो उसका तिरस्कार बिल्कुल भी ना करें, बल्कि उन्हें सहानुभूति और उचित उपचार की आवश्यकता होती है, इस बात का ध्यान रखें। परिवार का सहयोग और समाज का साथ उसे नई शुरुआत करने का अवसर दे सकता है। बहनों, हमें अपने आसपास एक अच्छा वातावरण बनाकर सभी को नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो चलिए इसी संकल्प के साथ कि हम अपने समाज को नशे से बिल्कुल विमुक्त बनाएंगे, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गांव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गांव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है। तो वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
2: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं। और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आए हैं तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: आइए बहनों, आपको सुनवाते हैं एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत वार्ता। विषय है गर्मी और खान पान। वार्ताकार हैं विजेता सिन्हा।
4: नमस्कार बहनों, एक छोटी मुलाकात अंक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सहेली विजेता। बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं गर्मी के मौसम में खान पान का खास ख्याल रखने की। तो बहनों, गर्मी अभी अपनी चरम सीमा पर है। तेज धूप के कारण लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो रहा है, पर जिन्हें बाहर निकलना जरूरी होता है वो तो हर हाल में बाहर निकलते ही हैं और अपने कामों को भी पूरा करते हैं। मतलब जिन्हें ऑफिस जाना होता है वो ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं घर के कामों को देखते हुए बाहर के कामों को भी करती हैं। उनके लिए क्या गर्मी, क्या जारा, क्या बरसात, हर मौसम समान है। तो कहने का मतलब है कि हर काम अपने तय समय पर होता है। तो हम इन कामों को करने के लिए हमेशा स्वस्थ रहें, हमें इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। बहनों, इसके लिए हमें अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना होगा, ताकि हम हर मौसम का आनंद ले सकें। जैसे इस गर्मी के मौसम में ज्यादा देर तक भूखा रहना ठीक नहीं। सुबह हल्का फुल्का नाश्ता अवश्य करें। अंकुरित मूंग मटर अवश्य नाश्ते के रूप में लें। अधिक तेल मसालों का सेवन करने से बचें। ठंड के दिनों में तो ये थोड़ा बहुत पच भी जाता है, ज्यादा नुकसान नहीं करता, पर गर्मी के दिनों में अधिक तेल और मिर्च मसालों वाला सेवन पेट में जलन उत्पन्न करती है। इसलिए गर्मी के दिनों में ज्यादा तेल मिर्च मसालों के सेवन से बचने की कोशिश।

0: करें। बासी भोजन करने से बचें क्योंकि इससे पेट में गैस बन सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट फूल सकता है, तो बासी भोजन करने से बचें। जितना हो सके ताजा भोजन ही करें। भोजन में दही या दही से बना रायता, सलाद को अवश्य शामिल करें। जितना हो सके ठंडी चीजें ही खाएं, बाहर के कोल्ड ड्रिंक के बजाय इन दिनों कच्चे आम का शरबत बनाकर पिए, नींबू पानी बनाकर पिए। ये आपको अंदर से ऊर्जा भी देगी और डिहाइड्रेशन की समस्या भी दूर होगी। दही से बना लस्सी पिए, ये पेट को अंदर से ठंडा रखता है। इसके अलावे नारियल पानी अवश्य पिए। बच्चे जब स्कूल से घर आए तो उन्हें तुरंत फ्रिज से पानी निकाल कर पीने से मना करें, क्योंकि धूप में से तुरंत आकर फ्रिज का ठंडा पानी पीने से उन्हें सर्दी खांसी की समस्या हो सकती है। इन दिनों जितने भी मौसमी फल हैं, खीरा, ककड़ी, लीची, आम, जो भी मौसमी फल हैं, उनका सेवन अवश्य करें, क्योंकि ये फल आपको गर्मी के दिनों में ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करती है। तो बहनों, यदि आप अपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखना चाहती हैं, उन्हें गर्मी की मार से बचाना चाहती हैं, तो इस तरह की थोड़ी सावधानी अवश्य बरतें और गर्मी के इस मौसम का आनंद उठाएं। तो अब अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मायसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन, गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: बहनों, आज विश्व भर में यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिवस उन लोगों के प्रति संवेदना, सम्मान और समर्थन व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने किसी न किसी रूप में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक यातना का सामना किया है। मैंने यातना केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा दोनों को गहरी चोट पहुंचाती है। किसी व्यक्ति के साथ हिंसा, उत्पीड़न, भेदभाव, घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना या गलत व्यवहार उनके जीवन पर लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को यातना देना मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। हमारे समाज में अनेक महिलाएं, बच्चे और कमजोर वर्ग के लोग विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना का सामना करते हैं। कई बार पीड़ित डर, शर्म या सामाजिक दबाव के कारण अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते। ऐसे में परिवार, मित्रों और समाज का दायित्व है कि वो पीड़ितों की बात को सुने, उनका विश्वास बढ़ाएं और उन्हें न्याय और सहायता प्राप्त करने में सहयोग करें। मैंने हमेशा याद रखिए कि पीड़ित व्यक्ति को सबसे अधिक जरूरत होती है सहानुभूति, सम्मान और सहयोग की। संवेदनशील व्यवहार उनके जीवन में आशा की नई किरण ला सकता है। महिलाओं की भूमिका भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक जागरूक महिला अपने परिवार और समाज में मानव अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना विकसित कर सकती हैं। बच्चों को बचपन से ही ये शिक्षा देनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ हिंसा, अपमान या क्रूर व्यवहार सही नहीं है। उन्हें बड़े बुजुर्गों का घर में आदर करना सिखाएं ताकि जब घर में आदत पड़ जाए तो वो बाहर भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। बहनों, हम महिलाओं की भूमिका जब महत्वपूर्ण है तो हमें ये सोचना चाहिए कि घर में जो बुजुर्ग होते हैं, कई बार जाने अनजाने में हम लोग उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार उनकी ज़रूरतों पे, उनके समय पर हम लोग उपस्थित नहीं होते। तो कोशिश करें कि शुरुआत हम अपने घर से करें और जब घर से ही संस्कार अच्छा होगा तो उससे समाज और राष्ट्र का निर्माण भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं, बच्चे वही सीखते हैं।

तो आइए हम सभी मिलकर एक संवेदनशील, सुरक्षित और मानवीय समाज के निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प लें। तो चलिए बहनों, बातें आगे और भी होंगी, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मायसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर लोहार पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार शाह। ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी, प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है। अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: बहनों, अब वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। गर्मी अपने प्रचंड रूप में है, आमजन जहां इसके प्रकोप से प्रभावित हो रहे हैं, वहीं पेड़ पौधे भी गर्मी में झुलस रहे हैं। तो आइए जानते हैं पेड़ों के रखरखाव के विषय में कुछ उपाय। मैंने रोजाना पौधों में पानी देना चाहिए। गर्मी में तो सुबह और शाम दोनों वक्त पानी डालना बहुत जरूरी होता है। पौधों को गमले में उनके आसपास निकले खर पतवार, घास, इन सभी को साफ करते रहना चाहिए। पौधों में जैविक खाद का प्रयोग करें, गोबर की खाद, कंपोस्ट का उपयोग करें, धूप और हवा का ध्यान रखें। इसके साथ ही कीट एवं रोग नियंत्रण करें। अगर किसी पौधे में कीट दिखाई दे तो जैविक कीटनाशकों या नीम के घोल का प्रयोग करें। पौधों के आसपास पशु से बचाने के लिए पौधों के आसपास सुरक्षा घेरा लगा

वर्षा के जल का उपयोग करें और इन्हें संग्रहित कर सिंचाई में उपयोग करने से पौधों को प्राकृतिक पोषण मिलता है और पौधों का नियमित निरीक्षण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बहनों, ये तो बातें हुई पौधों के रखरखाव और देखभाल की। अगर आप भी चाहें तो अपनी किसी भी संदेश, किसी भी सुझाव, किसी भी समस्या को, कार्यक्रम संबंधी किसी सुझाव को पत्र के माध्यम से हमें हमारे पते पर लिखकर भेज सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा। आप अपने संदेश हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकती हैं। हमारा ईमेल का पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो चलिए बहनों, अब घड़ी इशारा करिए कि वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो इसी संदेश के साथ दीजिए विदा। श्वेता को नमस्कार।

0: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। अब समय हो चला है हिंदी समाचार का, जिसका प्रसारण हम दिल्ली से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृहमंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
2: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में।

अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। दोपहर 1:10 पर हम आपको सुनवाएंगे देशभक्ति गीत। श्रोताओं, आज 1:15 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दोपहर 2:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना।

दोपहर 2:30 पर आप आनंद ले सकेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का। संध्या 5 आप सुनेंगे युवा को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। युवाणी में श्रोता सुनेंगे तरुण कुसुम। साथ ही फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे 5:40 पर।

शाम 6:15 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीतों को। हफ्तावार जायजा हम आपको सुनाएंगे 6:10 पर संध्या काल में, साथ ही सुनेंगे संध्या 6:30 पर कार्यक्रम गांव घर। गांव घर में श्रोता सुनेंगे नन्हा मुन्हा राही। किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी हम आपको सुनवाएंगे 7:00। संध्या काल में श्रोता फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे 7:52 पर।

मैथिली साहित्य के कार्यक्रम सिंगर हार हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि काल 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र पटना से शब्द शिल्प आकाशवाणी पटना की प्रस्तुति कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप सुनेंगे रात्रि 10:00। सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त होता है।

श्रोता भी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, मोहम्मद रफी उनके साथियों की आवाज में फिल्म जागृति से। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब समय हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम, आपके फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके प्यारे प्यारे पत्र, आपकी प्यारी प्यारी फरमाइशें, फिल्मी गीत, जो हमें और आपको एक बहुत ही सुंदर गीतों की करी में पिरोता है। और आपकी फरमाइश, यदि आप किसी की फरमाइश पूरी करते हैं और उसके चेहरे पे एक अच्छी सी मीठी सी मुस्कान आती है, तो कितनी खुशी मिलती है यह हम सब जानते हैं। तो क्यों ना हम आपकी यह फरमाइश पूरी करें और ले चलते हैं आपको इस कार्यक्रम में।

श्रोता, हम लेकर उपस्थित हैं आपका यह प्यारा फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश आपके रेडियो मित्र। श्रोताओं, पहली फरमाइश आई है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। राम पट्टी गौसनगर से आप है शुभ नारायण महतो, राजा बाबू, राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण महतो, अजय कुमार। बठेना से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा। चटौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहाद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा। इन लोगों की फरमाइश है या सुनना चाह रहे फिल्म क्रांति का यह गीत जिसे गाया है महेंद्र कपूर और मीनू पुरुषोत्तम उनके साथियों ने। गीतकार हैं संतोष आनंद, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है।

श्रोताओं, अभी जो मैं आपकी फरमाइश सुना रही थी, किसी कारणवश आपके मॉनिटर तक नहीं पहुंच रहा है, मॉनिटर पर नहीं जा रहा आपके रेडियो सेट पे, तो क्यों ना हम अगली फरमाइश सुनवाते हैं। यह आया है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार धनजय, शीला धनजय, गायत्री धनजय, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से आप है अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव। एक और पत्र है जो है अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से आप है दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीला, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। इन लोग की फरमाइश आई है, यह सुनना चाह रहे हैं फिल्म कोरा कागज का यह गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। संगीत दिया है कल्याण जी, आनंद जी ने।

श्रोता, अभी आप आने ले रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप श्रोताओं को दिलों को जोड़ते हैं, दिल से जुड़े हैं दिल के तार, ऐसा है गीतों की बहार। जी हाँ, हम लेकर आते हैं प्यारे प्यारे गीतों के तराने। तो इस गीत की फरमाइश आई थी बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से संतोष कुमार मुखिया, रानी अनीता राज, गरी महाराज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, अमरेंद्र वंश प्रसाद। इन्होंने सुनना चाहता फिल्म ताजमहल का यह गीत, जिसे लिखा था शाहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया था रोशन ने, आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। इसी गीत की फरमाइश बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोबने, वैष्णवी डोबने, चंचल डोबने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सव्वा सेरे, इन लोगों की यह फरमाइश थी। तो अभी आप सुन रहे थे इन लोगों की फरमाइश का यह गीत। श्रोताओं, एक पत्र आया है, इन्होंने लिखा है आदरणीय उद्घोषक या उद्घोषिका, आकाशवाणी दरभंगा, मैं आपका नियमित श्रोता हूं। इन्होंने सुनना चाहा है जॉनी मेरा नाम, इस फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गीत रचना इंदिवर ने की है। इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। एक और पत्र आया है, ये है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, आपका प्रिय श्रोता विनय रंजन, नेहा रंजन, बेला गार्डन, वार्ड नंबर 3, दरभंगा।

से यह पत्र है। यह पत्र आया, इन्होंने लिखा है, आप अपने मन का कोई भी गीत सुना दे तो क्यों ना हम आपको इसी गीत में शरीक करते हैं। एक और पत्र आया है, ये है झंझारपुर लंगरा चौक से हरेराम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान, नानी कुमारी। आप हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, चानी नाज। इन लोगों ने लिखा है, आप अपने मन का कोई भी गीत सुना दें तो हम क्यों ना इसी प्यारे से गीत में आपको शरीक करते हैं, सुनवाते हैं यह गीत।

दूरियों को मिटाकर सुरों को पास लाते हैं, आपकी फरमाइश पर हम ये प्यारे प्यारे गीत सजाते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम में इस गीतों को सजाते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरह अपने प्यारे प्यारे चुनिंदा गीतों को, तरानों को हमें ऐसे ही भेजते रहिए और हम आपको ऐसे ही सुनाते रहेंगे। एक और पत्र आया है, ये है, इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म पाकिजा का यह गीत, बोल है चलो दिलदार चलो। गीतकार हैं कैफ भोपाली, इस गीत को संगीतबद्ध किया है गुलाम मोहम्मद ने। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी। आप हैं एकता रेडियो श्रोता संघ से बरी खंजरपुर भागलपुर बिहार से। भाई गुलाम गुलफ राज आलम, बेगम शमा आरा, दोस्त जमालुद्दीन नेपाली, फायजा फातमा, यूसुफ हमजा। नाहर मंटोला से कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद सलमान। डबवाली हरियाणा से जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, मीनू बकोलिया। इन्होंने लिखा है, आप अपने मन का कोई भी गीत हमें सुनाएं तो क्यों ना हम आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आपकी यह फरमाइश भी पूरी करें और इस गीत में आपको शरीक करते हैं। एक और पत्र है जो है गोविंदपुर धनबाद से, शराफत हुसैन अंसारी, बेगम रेहाना, परवेज अशरफ, हसन इमाम, आप अपनी पसंद से कोई भी गीत सुनवा दें। चलिए तो हम अपनी पसंद का और आपकी पसंद का यह गीत सुनाते हैं और सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

दर्दे दिल इस गीत को भी आप सुने थे फिल्म कर्ज से, मोहम्मद रफ़ी उनके साथियों की आवाज़ में। इस गीत की फरमाइश आई थी गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कुशेश्वर स्थान सलमगढ़ से ईशा मोहम्मद, ईशा सबीना नाज, मोहम्मद इरफान आज़ाद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद आफ्ताब, नवासी सना आफरीन, नवासी सादिया नूर, नवासा आरिश बाबू, शमा प्रवीण, शाहिन प्रवीण, नेमत प्रवीण, रौनक प्रवीण, सुमैया फातमा तथा खुशी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर मीका, जयगत बीरक, मीका बीरक, कनेरा मटोला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलग, करण गीतो, निहारिका, बसंत बत्ता। एक और पत्र आया था इन्होंने ग्राम महसेड़वाड़ी तहसील मालकापुर महाराष्ट्र से, शत्रुघ्न थाने, वाल्मीकि थाने, नीनाजी थाने, स्वप्निल थाने, अजय खिरोडकर। इन्होंने सुनना चाहता कर्ज फिल्म का यह गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत। ये है पुणे से पंकज आर्या, प्रियंका आर्या, जरूर वरूड से बाबा साहेब वरोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे। इन लोगों ने सुना चाहा फिल्म नदिया के पार का यह गीत। गीत के बोल लिखे हैं रविंद्र जैन ने, संगीत दिया है जसपाल सिंह ने। श्रोताओं, ये हैं डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये।

राधिका गजभिये, बेबी अनिस्का, तन्मय गजभिये, बिलाई गढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन, बोरखेरा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मूनत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूनत, चेतन नाहर, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मूनत। इन्होंने लिखा है आपकी पसंद का कोई भी नगमा आप हमें सुनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद जो आप हमें अपने प्यारे से पत्र को हमें भेजते हैं और हमें अपने अपने मन का, हमारे मन का सुनाने के लिए आप कहते हैं। और आप हैं फुटानी चौक नरहन स्टेट से भाई फटफटिया झा, फुलेश्वरी देवी, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, ललन मिश्रा। आदर्श नगर मटौल से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा। इन लोगों की भी फरमाइश है कि आप कोई भी गीत हमें सुना दें, क्यों ना हम इस प्यारे से गीत में आपको शामिल करते हैं और सुनते हैं यह गीत।

नाम आपका गीत हमारे खुशियों की यह रीत है, आपकी हर फरमाइश में छिपी कोई मीठी मीठी प्रीत है। जी हाँ श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं प्यारे प्यारे से गीतों को। आइए सुनते हैं अगला गीत, जो फरमाइश आई है वो है तुझ संग प्रीत लगाई सजना। बोल है फिल्म कामचोर से, इन्होंने सुनना चाहा है यह गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने की आवाज़ में। गीत रचना इंदिवर के हैं और संगीत दिया है राजेश रोशन ने। यह फरमाइश आई है गोकुल चौक गंग जला सहरसा से, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्कीवाली, फलना झा नया नगर सुपौल से, श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। एक और पत्र है जो इन्होंने लिखा है, प्रिय कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जी नमस्कार। जी हां, आप श्रोता को भी बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। हमें अपने पसंद के किसी भी फिल्मी गीत में शामिल करें। आप हैं लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्लाह फकीर, डब्लूउल्लाह फकीर, परवीन आशमा फकीर, बुलंदशहर से बर्दू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी। आई सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

नियम से रहती है और हम आपको यह गीत नहीं सुनवा पा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगले अंक में हम आपको सुनवाएंगे आपका पसंदीदा प्यारा सा गीत। तब तक के लिए दीजिए हमें इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अब समय हो चला है प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरों का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों से सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य को खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर सरकार संवेदनशील है। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार ने स्थानांतरण पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे शिक्षकों का स्थानांतरण सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों की शहादत की याद में यौम ए आशूरा मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने प्रदेशवासियों से पारंपरिक सद्भाव, शांति और भाईचारे का माहौल में मुहर्रम मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत हमें इंसानियत, त्याग और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इधर मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को जुलूस मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर और पटना सिटी समेत 351 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाया गया है। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान शिवहर, मधुबनी और पश्चिम चंपारण जिले के कुछ स्थानों में भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवहर में सबसे अधिक 112.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पश्चिम चंपारण के बगहा में 95 मिलीमीटर, हरलाखी में 68 मिलीमीटर और सोनवर्षा में 49 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कहा कि मानसून की उत्तरी सीमा अभी मोतिहारी से होकर गुजर रही है। अगले 3 से 4 दिनों में बिहार के शेष भागों में मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। अररिया जिले के जौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने 340 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार और अपर समाहर्ता सचिदानंद सुमन ने वीरपुर अनुमंडल के 14 और सुपौल अनुमंडल के 15 नवनियुक्त पीडीएस डीलरों को लाइसेंस प्रदान किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना।

0: लेखा परीक्षक एवं सहायक 2026 ने कुल 1829 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 14/7/2026 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/8/2026 है। इस पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। कुल JKSSB ने कुल 130 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू करने की तिथि 22/6/2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21/7/2026 है। इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग 2026 ने कुल 607 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 4/6/2026 और आवेदन की अंतिम तिथि 3/7/2026 है। इस पद के लिए न्यूनतम सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। इसकी विस्तृत जानकारी आप rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। BSNL ने कुल 100 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू करने की तिथि 4/6/2026, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/7/2026 है। इस पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी विस्तृत जानकारी इस आवेदन की ले सकते हैं। bsnl.co.in पर सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित। हिंदुस्तान के सहयोग से परुणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग के गांव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था। रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था। उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित। हिंदुस्तान के सहयोग से पंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
3: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संदेश पूर्व रोजगार सूचना, यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप कुछ ही क्षणों में सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष।

0: से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
3: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
3: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन

0: और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार

0: कहिए अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हो रहे हैं। पुनः हम आपको ले चलते हैं फिल्मी गीतों की दुनिया में और सुनवाते हैं पहला गीत फिल्म सफर से किशोर कुमार की आवाज में। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी ने किया है।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म जुर्माना से। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर और मन्ना डे। गीत रचना आनंद बख्शी ने की थी। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मन्ना डे की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं फिल्म उपकार का यह गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुने थे फिल्म खानदान का यह गीत। संगीतकार रवि और गीतकार राजेंद्र किशन थे। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म कोरा कागज से। गीत रचना एमजी हसमत की है और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म काला बाजार से। गीत लिखा था सैलन ने, गायक कलाकार मोहम्मद रफी और गीत आदत। श्रोता, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म कोहिनूर से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने, संगीत दिया है नौशाद।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में भी आप सुन रहे थे कोहिनूर फिल्म का यह गीत। इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। यह सभा यही समाप्त होती है। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है, तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: शीला सहनी, दिल्ली से।
0: शीला जी, क्या हाल चाल है? हाँ, शीला जी
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
0: जी हमारे भी हाल चाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के क्या हाल चाल है?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
0: गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप ऊप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर निकलते वक्त छाता लेके
1: पी लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
0: निशा जी, क्या हाल चाल है
1: हाँ
0: आपके?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ,
0: क्या बात है,
1: विविध
0: शुक्रिया।
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी
1: और
0: जी
1: मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा
0: अच्छा जी, निशा जी, आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ
0: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: जी। हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप मैं कर रही हूँ अब
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में
1: जी
0: हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप
1: जी
0: योगा करती हैं? योग से जुड़ी
1: जी
0: हुई हैं?
1: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
0: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और 3-4 आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ, तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला। तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार
1: जी
0: के साथ
1: हाँ,
0: खुशहाल हैं।
1: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप, सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बागुल, सावन में लीजो बुलाए जी।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम, मैं
0: पूनम जी क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: तो मतलब बस हाउस वाइफ है मैडम
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी। पूरे परिवार का
1: जी। हाँ
0: ख्याल रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक है आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ जी
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में। और ये कला जो होती है ना, अद्भुत है
1: जी
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया मतलब तो पारिश होके हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी, जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: एक बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का, मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते। कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी मैं श्वेता भारती, जिला अयोध्या, ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
0: क्या हालचाल है आपके?
1: बढ़िया है दीदी, आप बताओ कैसी हो?
0: जी हम भी मजे में हैं, और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी दीदी घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने
1: मुझे
0: में?
1: मुझे गाने में आनंद मिलता है, रेडियो सुनती हूँ,
0: गाती भी है।
1: भारती बहुत ज्यादा सुनती हूँ। बहुत खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी
0: जी, और गाती भी हैं आप?
1: जी दीदी गाती हूँ।
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: अच्छा गुनगुना के भी सुनाओ।
0: सुनाइए।
1: देवी जी के मंदिर में लट से बाहर आई, देवी जी के मंदिर में

0: जी से मांगी आई देवी जी के मंदिर में लट से आई।
1: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: जीत फिल्म का सुना दीजिए दीदी।
1: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: कोई भी सुना दीजिए
1: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी कलाओं में
1: जी
0: आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी हैं या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया, अपनी हॉबीज

0: को डेवलप करती रही टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही, और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहां जहां मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी, और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें, भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
1: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
0: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं, और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी,
1: ये
0: ऐसा
1: बहुत
0: मेरा
1: सही
0: मानना।
1: बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सई जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
0: जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है वो, मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए। और यही
1: धन्यवाद
0: गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है
1: जी, मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है, वहां पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: हाँ हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने
1: जी।
0: पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी।
0: आप क्या काम करती है वहां पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: हाँ,
0: वहां जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। मैंने प्रकाश बाबा आमटे ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला, और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: तो कैसा लग रहा
1: और
0: है आपको वहां जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
1: जी
0: जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का
1: जी
0: काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
1: जी
0: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ हाँ मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।

0: प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को
1: जी
0: बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीजें
1: जी
0: सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो
1: जी
0: बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: आपको भी वहां पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो
1: जी
0: बताइए रेडियो कब सुनती हैं आप?
1: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ। और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ, तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमको मन की शक्ति देना, यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है, और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
0: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है, और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ, जी।
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है, और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। जी
0: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना
1: हाँ,
0: जी,
1: जी
0: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी किसी
1: जी
0: को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
1: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ। जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप
1: जी,
0: सुनना चाहती हैं?
1: संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है, और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गालियाँ करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी, जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
0: तो ये गाना
1: जी
0: गुनगुना के बताइए आप।
1: जी जी

0: रुबा तबा रे दिल रुबा दिल रुबा दिल रुबा दिल रुबा।
1: ये गाना लता जी और कमल बारोट का गाया हुआ गीत है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हाँ जी, हरियाणा हिसार से। हाँ
0: हिसार हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है और सिलाई करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी,
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: विविध भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती हैं, व्यायाम करती हैं?
1: थोड़ा बहुत बस घर पे कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखे जो खत तुझे वो फूल बन गई।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बिहार
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर अब तो निश्चिंत की जिंदगी है, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से बीर भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत बचपन से, जब
0: बचपन।
1: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से, तब से।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत तो रच बस गया है, योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से, मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उसका कोर्स किया, और तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही।
1: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया, और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव
1: हाँ
0: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
1: जी जी
0: बदौलत
1: जी
0: आप तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर महिला
1: जी
0: को ऐसे ही करना चाहिए कि कितनी भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है, अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा, और जब
1: जी
0: हम
1: जी
0: योग
1: बिल्कुल
0: करते हैं ना तो हमारा देखा सीखी बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज में।
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी

0: सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार है 400-24662, फिर से 400-24662। दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 2867-0288। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।

मित्रों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था। रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे,

निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था, रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी, उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया कि कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सोने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहां लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब जयभारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था, उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू।

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है, जैसे तैसे रातें कटती हैं। नए साल की शुरुआत होने वाली थी, इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हां, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलूनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था। राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था।

उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे। रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता। यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हां, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलभेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूं कि सौ राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूं, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि यह तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्कसंगत हो, ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थीं कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए, और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का, जा जा जा, जा।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय

पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहे, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहें।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही हम उपलब्ध हैं मोबाइल सेट पर भी न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम से।

तरुण कुसुम सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। उपस्थित हो गए हैं आपके इस कार्यक्रम को लेकर। बना रहेगा 5:40 तक हमारा और आपका साथ। करेंगे बातें, सुनेंगे लोकगीत, गैर फिल्मी गाने और गैर फिल्मी गज़लें भी सुनेंगे। तो पहले हम थोड़ी बातचीत आपसे कर लें। देखिए दोस्तों, ये जीवन बहुत ही कीमती है, महत्वपूर्ण है। अगर हम दुनिया को देखें तो कह सकते हैं कि जीवन हमें सिर्फ एक बार प्राप्त होता है, और इस बहुमूल्य जीवन की कोई कीमत नहीं हो सकती। हम जब गुज़र जाते हैं तो दुनिया में कुछ भी हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना। तो ये जीवन है तभी हम सब कुछ देख रहे हैं।

हैं कि जीवन हमें सिर्फ एक बार प्राप्त होता है और इस बहुमूल्य जीवन की कोई कीमत नहीं हो सकती। हम जब गुजर जाते हैं तो दुनिया में कुछ भी हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना। तो ये जीवन है तभी हम सब कुछ देख रहे हैं या अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन हम जब नहीं होते हैं तो फिर क्या उजाला क्या अंधेरा, क्या अंधेरा क्या उजाला, क्या धन क्या दौलत, हमारे लिए तो सब बेमानी हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि जब हमारा इतना बहुमूल्य जीवन है और कहते हैं कि एक ही बार मिलता है ये जीवन, तो इस जीवन के महत्व को हमें और आपको समझना ज़रूरी है। अब कुछ युवा तो इस बात को समझते हैं और अपने आप पे पूरी तरह से ध्यान देते हैं, जितना ध्यान देना चाहिए वो देते हैं और जीवन को सही मार्ग पे ले जाने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ युवा गलत मार्ग पे चल निकलते हैं, और गलत मार्ग कुछ भी हो सकता है। संसार में अगर बुराइयां हैं तो उन बुराइयों को ही तो गलत कहते हैं हम, और ये भी सही है कि इस संसार में अगर अच्छाइयां हैं तो साथ साथ पैरेलल चलती हैं बुराइयां भी। तो अगर युवा मन सीधे सीधे अपने पथ पे चलता रहता है, लक्ष्य को निर्धारित करके कुछ बनने कुछ पाने, जीवन में कुछ करने समाज का कुछ भला करने के लिए सोचकर आगे बढ़ता है, तो फिर वो तो सफल होता है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि कुछ युवा गलत रास्तों पे चल निकलते हैं। गलत रास्ते नशा भी हो सकता है एक उन रास्तों में से। अब नशा एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपने आप पे तो किसी को काबू रहता नहीं। नशा करने के बाद व्यक्ति अपने हवास को खो देता है, अपने आप में वो नहीं होता है। आपने घटनाओं के बारे में सुना होगा कि नशे की हालत में ये हो गया वो हो गया, बड़े से बड़ा क्राइम भी कर देता है नशे की अवस्था में, उसे पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो नशा जो है ना ये बहुत ही मारक है युवाओं के लिए, तो ख़ास तौर से क्योंकि आप देश का भविष्य हैं। कल जब बड़े नहीं होंगे तो आप ही होंगे, इस देश को आप ही चला रहे होंगे। आज बड़े लोग चला रहे हैं, कल जो आज युवा हैं वो कल बड़े बनेंगे, कल वो चलाएंगे, फिर जो आज बच्चा है किशोर है वो युवा बनेगा, फिर बच्चा जो है वो किशोर बनेगा। तो इस तरीके से दुनिया का वो जो एक पथ है उस पथ पे सब लोग चलते चलते चलते हैं चलते रहते हैं और अपना अपना योगदान देते रहते हैं। नशा ख़राब चीज़ है, ख़राब वस्तु है, ये सभी लोग जानते हैं। तो उससे हमें बचने की भी बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और एक बात और बता दें आपको कि आप किसी भी बुराई से तब तक नहीं बच सकते जब तक आप उस बुराई के बारे में समझें नहीं। बुराई के बारे में समझना हमें अत्यधिक आवश्यक है। बुराई को हम जानेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये बुरा रास्ता है, इस पे हमको नहीं चलना चाहिए, और नहीं जानने के कारण हम उससे दलदल में फंस जाएंगे। तो नशा क्या है इसके बारे में आप अवश्य जानें, और नशे के नुकसान क्या हैं ये भी आप जानें, फ़ायदे क्या हैं ये भी आप जानने की कोशिश करें। आपको पता चलेगा कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान के अलावा कुछ है ही नहीं उसमें नशा में। तो आपको हम बता दें दोस्तों कि युवा किसी भी राष्ट्र के, जैसा कि पहले भी बताया, सबसे बड़ी शक्ति जो है वो आप ही हैं। युवा आप ही के कंधों पर देश का वर्तमान और भविष्य टिका हुआ है। लेकिन जब युवा शराब तंबाकू गुटखा सिगरेट या अन्य नशीले पदार्थों की गिरफ्त में आ जाते हैं तो उनका स्वास्थ्य शिक्षा परिवार और करियर सब तबाह हो जाता है, प्रभावित होने लगता है और कई बार पूरी तरह तबाह हो जाता है। नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को कमज़ोर करता है। नशे की लत से अनेक बीमारियां जन्म लेती हैं, मानसिक तनाव, दुर्घटनाएँ,
घरेलू हिंसा

चिकित्सा, अपराध और बेरोजगारी जैसी समस्याएं भी बढ़ती हैं। कई प्रतिभाशाली युवा केवल नशे की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। अगर हमें एक सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण करना है तो हम युवाओं को नशे से दूर रहना ही होगा। इसके लिए परिवार, विद्यालय, समाज और सरकार सभी की जिम्मेदारी बनती है। माता पिता बच्चों को अपने अच्छे संस्कार दें, विद्यालयों में नशे के दुष्परिणाम के बारे में जागरूकता फैलाई जाए और युवाओं को खेल, योग, पुस्तक पठन तथा रचनात्मक गतिविधियों पर जोड़ा जाए। हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि न तो स्वयं किसी प्रकार का नशा करेंगे और न ही दूसरों को इसके लिए प्रेरित होने देंगे। अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति नशे की लत से जूझ रहा है तो उसका मजाक न उड़ाएं, उसका उपहास न करें, बल्कि इसके बजाय उसे सही सलाह दें। अब आप कहेंगे, नशे की अवस्था में कोई व्यक्ति है उसको मैं बोलने जाऊंगा, फिर तो वो भड़क जाएगा। भाई, उस वक्त नहीं, आप देखें, जब वो नशे की हालत में व्यक्ति ना हो तब आप उससे बात करें, उसे प्यार से समझाएं, एकांत में समझाएं, ताकि उसे एहसास ना हो कि आप किसी के सामने उसे अपमानित कर रहे हैं। कई बार अच्छी बातें भी अगर आप लोगों के बीच किसी को कह देते हैं तो वो बुरा मान जाता है। कारण क्या है कि वो कई लोगों के बीच में अपने विरुद्ध कोई बात सुनता है तो अपमानित महसूस करता है। तो जब भी अच्छी बातें किसी को बतानी हो तो किनारे से बताएं और प्रयास करें कि दूसरे व्यक्ति न सुने, समझाएं और उन्हें प्रेरित करें अच्छे कामों के लिए। और फिर भी अगर दिक्कत हो रही है तो उनको उपचार केंद्र की ज़रूरत होती है ऐसे नशा में डूबे लोगों को, तो उपचार केंद्र तक पहुंचाने के प्रयास करें, यानी उनके परिवार से मिलकर, और जो कुछ आपसे बन पाता है उनके लिए करें। क्योंकि देखिए, ये समाज तब तक पूरी तरह से खुशहाल नहीं होगा जब तक इसका प्रत्येक व्यक्ति, इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल ना हो जाए। हम और आप शानदार घर बना लेते हैं, मोहल्ला बसा लेते हैं, लेकिन उस मोहल्ले में एक दो तीन छोटी छोटी झोपड़ियाँ अगर हैं तो बताइए आपका मोहल्ला कैसा लगेगा देखने में। बस, यानी कि गरीबी में जूझ रहे लोग उसी महल्ले में हों और उसी महल्ले में बड़े बड़े लोग हों, तो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता है जैसे मखमल में टाट का पेबंद। तो प्रयास कीजिए कि जो झोपड़ी में है उसको भी महल तक पहुंचाएं, है ना। इसी तरीके से शिक्षा को लेकर भी है, इसी तरीके से समाज की बुराइयों को लेकर भी है कि अगर बुराई है कहीं तो बुराई को हटाएं तो पूरा समाज साफ़ हो जाएगा। अगर किसी समाज में गरीबी है तो उस गरीबी को हटाने का प्रयास भी आपको करना है, क्योंकि अगर एक भी गरीब हमारे आसपास है तो हम खुशहाल कैसे कहला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा और हमदर्दी पूर्वक समझना होगा। किसी का भी जीवन में, याद रखें, उपहास न उड़ाएं, क्योंकि हम सब आस्तिक हैं और हमारा और आपका विश्वास मालिक पर है। आज हम जिनका उपहास उड़ा रहे हैं, हो सकता है कल हम उसी स्थिति में पहुंच जाएं कि लोग हमारा उपहास उड़ाएं। इसलिए किसी की कमज़ोरी, किसी की मजबूरी, और किसी की बात चली है तो हम कह दें, शारीरिक मामले को लेकर तो कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। कारण क्या है कि शारीरिक मामला जो होता है किसी का, जैसे कोई दिव्यांग है, तो दिव्यांग को प्रायः गाँव में कह दिया जाता है, मैं तो वो शब्द नहीं बोलूँगा, किसी के पाँव में कोई दिक्कत है तो उसको ए फला इधर आ, तो ये बोलते हैं। कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति दिव्यांग अपनी मर्जी से नहीं बना है, वो मालिक की मर्जी से बना है, मालिक ने चाहा है तो उसे बनाया है। इसलिए मालिक की कमी आप निकाल रहे हैं अगर किसी को का उपहास उड़ा रहे हैं या किसी का नाम उसके दिव्यांगता पे ले रहे हैं, दिव्यांगता आधारित अगर नाम ले रहे हैं आप, तो इसका मतलब आप उसका उपहास उड़ा रहे हैं और आप उसका हकीकत में उपहास नहीं उड़ा रहे, आप उस मालिक का उपहास उड़ा रहे जिसने उस व्यक्ति को उस लायक बनाया। तो शारीरिक कमियों को कभी भी मजाक में ना लें और याद रखें, कोई ठीक

नहीं है जो कल किसी और के साथ समस्या थी वो आज हमारे साथ हो जाए। इसलिए समाज में प्यार बांटें, अच्छाइयाँ बांटें, समाज को खुशहाल करें, समाज को सुंदर बनाएं, तभी आप सुंदर होंगे। एक अकेला आपके सुंदर होने से समाज सुंदर नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये बात थोड़ी कड़वी गोली जैसी लगी होगी, लेकिन पसंद आई होगी। कड़वी लगी होगी तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन सत्य के बारे में कहा गया है कि थोड़ा कड़वा होता ही है। तो ये रही बातें, और फिर बता दें कि अगर फिर भी बुरा लगा है आपको मेरी किसी बात का तो क्षमा करेंगे। फिर भी एकांत में सोचेंगे कि हमने जो बातें कही हैं वो क्या गलत हैं। तो अगर गलत नहीं है तो प्रयास कीजिए कि इस पूरे समाज को सुधारने के लिए अपना योगदान आज ही से देने लगिए, और प्रण कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि समाज के लोगों को नशा से दूर रखेंगे, और वो भी प्यार से समझा बुझा कर। बहुत सारी बातें हो गई, अब क्या ख्याल है, एक देवी गीत हो जाए? विभा सिन्हा के स्वर में है ये देवी गीत।

स्नेहा झा के स्वर में सुन रहे थे ये गीत, और अब आपको सुनवा रहे हैं कुंज बिहारी मिश्र का गाया हुआ ये लोकगीत।

कुंज बिहारी मिश्र के स्वर में सुन रहे थे आप ये प्यारा सा लोक गीत, और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं कमल बारोट का गाया हुआ ये गैर फिल्मी गाना।

0: कमल बारोट के स्वर में सुन रहे थे आप ये प्यारा सा गीत, और अब आप तक पहुंचा रहे हैं एक गैर फिल्मी कव्वाली जिसे गाया है सलीम चिश्ती ने। कव्वाली की पहचान है पगली के नाम से, तो सुनिए ये कव्वाली पगली।
1: दोस्तों, फिल्में बहुत आपने देखी होंगी जिनके असरात भी होंगे अभी जहनों दिल पर, जोरदार आपने डायलॉग सुने होंगे बहुत, अब भी आंखों में बसे होंगे हजारों मंजर, नक्श दिल होंगे रफिया और लता के नगमे, बाकी होगा अभी नौशाद के साजों का असर। मैं भी आया हूँ दिखाने के लिए फिल्म नई, देख सकती है जिसे सिर्फ तसव्वुर की नजर, साजो संगीत में काविश है जनाबे चिश्ती, गीतकार और कहानी के मुसन्निफ नश्तर। दोस्तों, नाम है इस फिल्म का रखा पगली, पर्दा उठने को है अब हाथों को रख लो दिल पर।

अरे कितनी मानी खेज है इसकी निगाहे पुरमलाल, कितना हसरतनाक है इसके तकद्दुस का जलाल, कि हादसे की इसको परवाह न मर जाने का डर, बीच राहों में फिरा करती है बेखौफ व खतर, इस तरफ ही आ रही है दौड़ती दीवानवार, पीछे पीछे वो है और आगे आगे कोई कार, उसको छू लेने की कोशिश कर रही है दौड़कर, लो पहुंची हाथी चौरास्ते के मोड़ पर, उफ अचानक एक सवार रफ्तार मोटर आ गई, लो वो टकराई, अरे टकरा गई।

सलीम चश्ती की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये कव्वाली पगली। और अब समय भी निकट आ चला है कि हम आपसे विदा लें। तो चलते चलते आपको बता दें दोस्तों कि आज यौमे आशूरा यानी मुहर्रम की दसवीं तिथि देश भर में मनाई जा रही है। मनाई तो सभी जगह जा रही है और स्थान बदलने पे थोड़े थोड़े रीत रिवाज जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एक ही चीज़ ये नहीं है कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई थी आज के दिन, बल्कि और भी कई बातें हैं इस दिन। वो ये कि जो इस्लामी वर्ष शुरू होता है ना, वो इसी महीने की पहली तारीख से शुरू होता है और मुहर्रम की आज दसवीं तिथि है, यानी वर्ष के पहले महीने की आज दसवीं तिथि है। इसी दिन यौमे आशूरा मनाया जाता है। इस दिन इतना ही नहीं हुआ है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का की शहादत हुई है, उन्हें शहीद किया गया है, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी निजात आज ही के दिन हुई थी। और कहा जाता है कि आज के दिन का जो रोज़ा है वो एक साल के गुनाहों का कफ़ारा होता है, तो रोज़े की फजीलत भी आई है इस्लाम में। आशूरा के दिन रोज़ा रखना चाहिए। और नौवीं दसवीं या दसवीं और ग्यारहवीं मुहर्रम का रोज़ा जो है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि नौ और दस मुहर्रम या दसवीं और ग्यारहवीं मुहर्रम का रोज़ा रखना बेहतर है। लेकिन इस दिन और भी कई नबी से आज के दिन को जोड़ा जाता है और कई अच्छाइयों से भी जोड़ा जाता है, जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी जोड़ा जाता है जो निजात का ज़रिया बना। जो दिन वो आज ही का दिन था। इसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा याद करने वाला वाक़या है वो है वाक़ए करबला। इसी दिन सिर्फ 61 हिजरी में हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों की करबला में शहादत हुई थी। तो आज के दिन को इसलिए याद किया जाता है, हम लोग प्यार से आज के दिन को मनाएं अपनी अपनी रीति रिवाज के अनुसार। और अब इजाज़त दें, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

तरुण कुसुम सुन रहे थे युवा दोस्त, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। आकाशवाणी दरभंगा से अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: दोस्तों, श्रोताओं, आप सुन रहे थे ये घूमर फिल्म का गाना, दीपाक्षी खलीता अल्तमश फरीदी का गाया हुआ। इस गाने को लिखा था कौसर मुनीर ने और संगीत अमित त्रिवेदी का था। अब जो गाना आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म एक्टिंग का भूत से। युगल स्वर भूमि त्रिवेदी और राहुल जैन का है।

अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म सत्य प्रेम की कथा का ये गाना। आवाजें हैं मीत ब्रोस, मोनाली ठाकुर और पीयूष मेहरोलिया की।

0: ये गाना आप सुन रहे थे गीता माधुरी और विनीत श्रीनिवासन का गाया हुआ। फिल्म का नाम था हाय पापा। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपको बता दें कि फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम जो आप सुनते हैं 5:40 पर संध्या काल में, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आते हैं नई फिल्मों के गाने। अगले अंक में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर सुनेंगे ये नई फिल्मों के गाने। और अब समय हो चला है समाचारों का, 6:00 को हैं, कुछ क्षणों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, आने वाले 3 तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है

कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है।

0: कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि एआई विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि यह सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा सुन लीजिए। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे हफ्तावार जायजा। पेशकश होगी एहतशामुल हक की।

6:15 पर विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में सुनिएगा संवेद स्वर में और सूर्य नारायण पोद्दार का गाया हुआ विद्यापति गीत। मैथिली संवाद का समय होता है 6:25 पर। गाम घर कार्यक्रम के तहत आज होगा नन्हा मुन्ना राही, बच्चे सुनेंगे चर्चा मुहर्रम के महत्व पर। किसान भाइयों के लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी 7:00। इसके अंतर्गत किसान भाई पान की आधुनिक खेती पर चर्चा सुनेंगे, साथ ही मौसम संबंधी जानकारी और समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में भी बातें बताई जाएंगी। 7:52 पर लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आठ बजकर पंद्रह मिनट पर आप सुनते हैं मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

रात 9:30 बजे शब्द शिल्प हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना की प्रस्तुति होगा। और लेकर आएंगे रात 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। तो ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। अगला कार्यक्रम होगा हफ्तावार जायजा।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
1: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
2: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं। प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आबि रहल छी एक कई क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए हफ्तावार जायजा। पेशकश एहतेशामुल हक की है।
2: सामीन आदाब, पेश है हफ्तावार जायजा। मिथिला और कोसी के खित्ते के लिए गुज़श्ता हफ्ता समाजी, सकाफ़ती, तालीमी और मजहबी सरगर्मियों के एतबार से खासा अहम रहा। बैनुल अक्वामी योम योगा के मौके पर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी का पैगाम दिया गया। इस दौरान किताब मेला, विरासती तहफ़्फ़ुज़, बच्चों के हकूक़ और कानूनी बेदारी से मुतालिक कई अहम सरगर्मियाँ भी देखने को मिलीं। सबसे पहले जिक्र बैनुल अक्वामी योम योगा का। 21 जून को 12वीं बैनुल अक्वामी योम योगा के मौके पर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल समेत मुख्तलिफ अजला के तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में खसूसी योगा प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। दरभंगा में ज़िला गंगा समिति, ज़िला आयुष कमेटी और महकमा खेल के इश्तराक से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अहाते में मरकज़ी तकरीब मुनक़िद हुई। सेहतमंद ज़ईफ़ुल उम्री के लिए योगा के मौजू पर मबनी प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों, इंतज़ामी अफसरों, नौजवानों, रज़ाकारों और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रुकन पार्लियामान डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने योगा को हिंदुस्तान का कदीम सकाफ़ती वरसा करार देते हुए नौजवानों से अपील की कि वो योगा को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ज़िला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने कहा कि योगा और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ एक दूसरे के जुज़्व हैं। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए तहफ़्फ़ुज़ आब, सफाई और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो देना ज़रूरी है। इधर मुहर्रमुल हराम के आगाज़ के साथ ही हलके में मजहबी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं।

संवेद स्वर में आप सुन रहे थे जय जय भैरवी। अब प्रस्तुत है सूर्य नारायण पोद्दार का गाया हुआ ये विद्यापति गीत।

सूर्यनारायण पोद्दार के स्वर में सुन रहे थे आप ये विद्यापति गीत। इसके साथ ही ये कार्यक्रम आज का समाप्त होता है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे मैथिली संवाद।

पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कल्पना झा। गृहमंत्री अमित शाह आई नशाक विरुद्ध एकजुट भऽ कऽ लड़बाक आह्वान कयलनि। ओ कहलनि जे मादक पदार्थक कारोबार देशक सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हित आ युवा लोकनिक भविष्यक लेल खतरा अछि। ओ आध्यात्मिक नेता, युवा आ माता सभ सँ एहि अभियान मे मिलकर भाग लेबाक अपील कयलनि। श्री शाह एहि गपक चर्चा नव दिल्ली मे नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर अर्थात NCORD के 10th शीर्ष स्तरीय बैसक के संबोधित करैत कहलनि। गृहमंत्री कहलनि जे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मादक पदार्थ सँ जुड़ल अपराधक जनतब समय पर साझा करबाक लेल कतेको ऑनलाइन पोर्टल आरंभ कयलक अछि। ओ सभ राज्यक मुख्य सचिव आ पुलिस महानिदेशक सभ सँ एहि पोर्टल पर नशा सँ जुड़ल मामिलाक जनतब तय सीमाक भीतर अपलोड करबाक लेल कहलनि। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रवि दिन 28 जून कऽ आकाशवाणीक मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोक सभ सँ अपन विचार साझा करताह। ई मासिक रेडियो कार्यक्रमक 135 कड़ी होयत। कार्यक्रमक प्रसारण आकाशवाणी आ दूरदर्शनक सभ चैनल, AIR न्यूजक वेबसाइट आ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर कयल जायत। संगहि AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयक YouTube चैनल पर सेहो एकर सीधा प्रसारण कयल जायत। राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, डिजिटल प्रशासन आ जवाबदेही के बढ़ावा देबाक लेल आई पटना लोकभवन में उच्च स्तरीय बैसक आयोजित कयल गेल। राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अता हसनैन के अध्यक्षता में

0: आयोजित बैसक मे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सेहो उपस्थित छलाह। बैसक मे सभ विश्वविद्यालय मे एहि वर्ष 31 दिसंबर धरि समर्थ पोर्टलक सभ मॉड्यूल लागू करबाक निर्देश देल गेल अछि। एहि दरमियान नवसृजित 211 सरकारी डिग्री महाविद्यालय मे सहायक प्राध्यापक लोकनिक केन्द्रीकृत नियुक्ति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, शोध आ डिजिटल शिक्षा के बढ़ावा देबा पर चर्चा कयल गेल। बैसक में विद्यार्थी सभक लंबित डिग्री वितरणक कार्यक्रम के 30 दिसंबर धरि पूरा करबाक निर्देश देल गेल। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहलनि जे प्रदेश में शिक्षक लोकनिक स्थानांतरण के लऽ कऽ सरकार संवेदनशील अछि। श्री तिवारी पटना में संवाददाता सभ सँ गपशप में कहलनि जे सरकार स्थानांतरण पोर्टल लॉन्च कयलक अछि, जाहि सँ शिक्षक सभ के बदली सरल, पारदर्शी आ भ्रष्टाचार मुक्त होयत। जदयूक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भरत भूषण तिवारी कथित मुठभेड़ मामला पर कहलनि जे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एहि पर कड़गर कार्रवाई शुरू कयलनि अछि। श्री झा आई पटना में संवाददाता सभ सँ जनौलनि जे एनडीए सरकार राज्य में कानून आ व्यवस्था के मजबूत रखबाक लेल पूरा तरहें प्रतिबद्ध अछि। मोहर्रमक आई दसवीं तिथि अछि। हजरत इमाम हुसैन आ 72 साथी सभक शहादतक याद मे यौमे आशुरा मनाओल जाइत अछि। एहि अवसर पर प्रदेशक विभिन्न भाग मे ताजिया जुलूस आ मातमी जुलूसक आयोजन कयल जा रहल अछि। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोशल मीडिया संदेश मे कहलनि जे हजरत इमाम हुसैनक बलिदान सत्य आ न्यायक मार्ग पर अडिग रहबाक प्रेरणा दैत अछि। राज्यपाल सैयद अता हसनैन प्रदेशवासी सभ सँ पारंपरिक सद्भाव आ भाईचारा वातावरण मे मुहर्रम मनेबाक अपील कयलनि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि जे हजरत इमाम हसैनक शहादत हमरा लोकनि के मानवता, त्याग आ सद्भावक मार्ग पर चलबाक प्रेरणा दैत अछि। एम्हर मुहर्रम के लऽ कऽ पूरा प्रदेश मे शांति व्यवस्था बनाओल रखबाक लेल सुरक्षाक व्यापक प्रबंध कयल गेल अछि। पटना सहित दक्षिण बिहारक कतेको जिला मे बरखा होयबा सँ लोक सभ के भीषण गर्मी सँ थोड़ेक राहत भेटल अछि। पछिला 24 घंटाक दरमियान शिवहर, मधुबनी आ पश्चिम चंपारण जिलाक किछु स्थान पर भारी वर्षा दर्ज कयल गेल। मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार शिवहर मे सभसँ बेसी 112.4 मिलीमीटर वर्षा भेल अछि। विभाग जनौलक जे अगिला 3 सँ 4 दिन मे बिहारक शेष भाग मे मॉनसून के आगाँ बढ़बाक अनुकूल परिस्थिति अछि। सुपौलक जिलाधिकारी सावन कुमार आ अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन वीरपुर आ सुपौल अनुमंडलक नवनियुक्त 29 पीडीएस डीलर सभ के लाइसेंस प्रदान कयलनि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर।

0: कार्यक्रम
1: गाम घर अंतर्गत नन्हा मुन्हा राही सुननिहार समस्त बच्चा लोगन का आजुक दिन आशुतोष कुमार झा जी से स्वागत आ नमस्कार संगे नमस्कार देवू भाई
0: नमस्कार नमस्कार आशुतोष भाई
1: बड़ हड़बड़ी में छियो
0: संगे समस्त नन्हा मुन्हा राही के सेहो स्नेह भरल शुभ आशीर्वाद आज तो शुक्र दिन है आशुतोष भाई आ शुक्र दिन को हमरा लोगन सुने छी साप्ताहिक कार्यक्रम किसले
1: और संगे ही आजुक दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है आजुक जे है से मुहर्रम का दसम तिथि जकरा यौम आशूरा कहल जाता है से है और एकर ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत

0: अछि। एहि दिन इमाम हुसैन और हुनकर संगी सब करबला के युद्ध में अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ैत सर्वोच्च बलिदान देलनि। हुनकर संदेश छलनि जे सत्य और इंसाफक लेल हर कठिनाई का सामना करबाक चाही, चाहे ओकरा लेल अहाँ के सब किछ न्योछावर किया नहीं करो पड़े।
1: हाँ ठीक कहलो है आशुतोष भाई। जो शहादत के गप करी तब मुहर्रम के दसम दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का नवासे इमाम हुसैन आ हुनक संगी करबला के मैदान में धर्म सच्चाई आ न्याय के रक्षा लेल अपन प्राण का सर्वोच्चम बलिदान देने छला। ई मास हमरा लोकन के जुल्म के आगू नहीं झुकबाक प्रेरणा देत अछि। इबादत आ रोजा के जो गप करी आशुतोष भाई तो इबादत करबाक बहुत बेसी पुण्य मानल गेल अछि। पैगंबर मोहम्मद साहब मुहर्रम के नौमी आ दशमी तारीख का उपवास रखबाक परंपरा सुन्नत मानल जात अछि।
0: सबसे पैघ बात तो अहाँ कहबे केलहुँ हँ और संगे ही ई दिन अपना सबके संदेश देता अछि जे धर्म के वास्तविक स्वरूप मानवता न्याय सत्य और त्याग संगे ही करुणा में निहित अछि। ई महीना लोक सबके जे छै से समाज में भाईचारा बना के रखबा और मानव मूल्य जे कि अपना सबके ई सिखबैत अछि जे सब केओ बराबर छथि हुनकर रक्षा करबाक प्रेरणा सेहो दैत अछि। ताहि कारणे ई दिन केवल एकटा अवसर नहि बल्कि सत्य और इंसानियत के लेल देल गेल एकटा अमर बलिदान के मून राखबाक एकटा प्रतीक दिन अछि।
1: हाँ ठीक कहलहुँ हैं जे हमरा लोकन के जे ई बहुत ही नीक और नमहर समृद्ध परम्परा रहल अछि। जो ढक्कन अवध आ मुगल काल में मुहर्रम का मजलिस और जुलूसक परंपरा सुदृढ़ रहल अछि। समय के संग ओते तजियादारी विशिष्ट सांस्कृतिक रूप में विकसित भेल। तजिया दरअसल इमाम हुसैन के मकबरा का प्रतिकृति होइत अछि, जकरा कागज लकड़ी आ बांस से तैयार कयल जात अछि। मुहर्रम के दिन सब कोई जुलूस के रूप में जाकर प्रतिकृति का पान में विसर्जित कराओल जात अछि। भारत के अनेक भाग में जे सब गोटे हिंदू सिख आ आन धर्म के लोग नहीं केवल जुलूस में भाग लेते अछि परंच पीढ़ी बा पीढ़ी से जे छै तैयार करबाक परंपरा चलत आबि रहल अछि।
0: तऽ बड़ा नीक अपना सब एखन चर्चा केलहुँ हँ जे ई महीना जे दसम तारीख आशूरा इमाम हुसैन के करबला के युद्ध में देल गेल शहादत के लेल हुनकर याद में मनाओल जाइत अछि। तऽ मुहर्रम में सत्य न्याय त्याग धैर्य और मानवता के जे यहाँ के अमूल्य सनेस अछि ओ अपना सबके दैत अछि। तऽ क्षणिक पहले विराम लै छी तकर बाद फेर हेतै गप।
1: हाँ हाँ
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे, जैसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो बनवाए अपने पंचायत में और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उसे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
4: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

0: क्षणिक विराम के बाद श्रोतागण के एक बेर फेर से स्वागत छन और अपना सब जना चर्चा केलहुँ हँ। देवू भाई देखियो बहुत रास एहन चीज होइत अछि जे नेनपनमे होइत अछि और अपना सब नहि बुझै छी ने, जे कहै छै अबूझ छल बच्चावला दिन छल, देखलहुँ सबके नाचैत तऽ हमहूँ नाचऽ लगलहुँ नहि, मुदा जे असली ओहि चीजके महत्व छै ओकरो बुझबाक चाही। तऽ ई केना अपना सब बुझै छियै तऽ गीते नाच नहि यौ?
1: हँ हँ, तऽ हमरा लोकनि किएक नहि गीतनाथके आनन्द ली?
0: पहिले सुनी एकटा सुन्दर सङ्गीत, फेर हेतै गपशप।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया, चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: हाँ, विराम से पूर्व अपना सब सुन लो जे नेनपन के दिन रसगुल्ले छी ने। हाँ, मृदुला मिश्र के स्वर में अपना सभी गीत सुन रहा छलो। तो निश्चित रूप से यही बात छे जे बच्चा के दिन जे छे से रसगुल्ले हुई छे और सबटा किछ आसाने लागे छे जे हम ई बन जेबे हम ई बन जेबे तुरंत हवाई जहाज पर तो तुरंत अहाँ के अपना सब कोन ग्रह पर कखन पहुँच जाए तकर कोनो ठीक नहीं है, मुदा तैयारी ओकरा लेल पूरा हेबाक चाहिए,
3: हेबाक चाहिए। लक्ष्य के प्राप्ति करबाक लेल परिश्रम करे पड़ै छै।
2: हाँ,
3: तै दुआरे हमरा लोकन के जो छै जे तब किएक नहि हमरा लोकन छै धियापुता से संबंधित जे हमरा लोकन एकटा जे मिस्टर टोला मोहल्ला दरभंगा के बच्चा के संग किसले कार्यक्रम हमरा लोकन सुनी,
2: मतलब जे अपना सब प्रत्येक शुक्र के सुनै छी अपना सब किसले तऽ पहिले सुन ले।
3: संकलन वाचन निर्माण में सहयोग अछि आशुतोष कुमार झा आ प्रस्तुति असद दाऊद के।
4: धियापुता जय हिंद। आजू किसलाई कार्यक्रम है मिश्र टोला मोहल्ला से तो बहुत रास धियापुता बैसल बहुत किस सुनाब चाहे तो आप हिंद के सबसे गपशप करी। वो की नाम छी अहाँ?
5: अमिताभ कुमार।
4: आजू कार्यक्रम में अहाँ की सुनाब चाहे?
5: कविता।
4: सुनो।
5: उदय हुआ सूरजपुरम में आसमान में छाई लाली रही न रात न रहा अंधेरा रही न चंदा की उजाली डाल डाल पर बैठे पक्षी चाचा चाचा चाक रहे खिले फूल मुस्काए कलिया सारे उपवन महक रहे हैं हवा बह रही धीमी शीतल मांदर सुखदाई जाग गए हैं खेत बागवन पेड़ ले रहे हैं अंगड़ा कनकन पर बिखरे हैं मोती कनकन पर बिखरे हैं मनिया कन कितने सुंदर कितने मनहर सुखद सुहानी एक लिए।
4: वो की नाम छी अहाँ का?
6: मनीषा कुमारी।
4: आज कार्यक्रम में की सुनाबे चाहे छी?
6: कविता।
4: सुनो।
6: अगर नहीं सूरज होता तो यह होता अंधियारी अगर न आता चांद न लगता आसमान में यह प्यारा अगर नहीं ये तारे होते चमकीले चमकीले आसमान में कहाँ चमकते झिलमिल पीले पीले और रंगे रंग बिरंगे फूल न खिलते होते तो क्या होता हम फूलों की यह सुंदरता खोते।
4: वो की नाम छी अहाँ का?
7: चिंकी कुमारी।
4: आज कार्यक्रम में की सुनाबे चाहे छी?
7: कविता।
4: सुनो।
7: बिजली रानी बहुत हुआ छोड़ो अब आना जाना सोचो सर पर इंतहाम है गर्मी करती परेशान पंखा कूलर बंद करा के नहीं कया मत जाना तुमको क्या चुनचल अचानक हम भुगते परिणाम भयानक इधर मेज पर प्रेस अधूरी उधर किचन में खाना थोड़े दिन तो साथ निभाओ कच्ची खू दुखाओ पाओ बारिश के आते ही फिर नखरे भले दिखाना।
4: वो की नाम छी अहाँ का?
8: गुंजा कुमारी।
4: आज कार्यक्रम में की सुनाबे चाहे?
8: कविता।
4: सुनो।
8: चाहे वह हवा लुबाली फूल हमेशा मुस्कुराए चाहे वह हवा लुबाली फूल हमेशा मुस्कुराए पत्ते की गोद में रह के फूल हमेशा मुस्कुराए कांटे की नोक सा कर फूल हमेशा मुस्कुराए ऊपर रहा डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्कुराए रोना नहीं फूल को आता फूल हमेशा मुस्कुराए इसलिए वह सबको भाता फूल हमेशा मुस्कुराए।
4: वो की नाम छी अहाँ का?
9: अभिषेक कुमार।
4: आज कार्यक्रम आ की सुनाबे चाहे?
9: कविता।
4: सुनो।
9: हाउ डू यू लाइक टू गो अप एंड स्विम अप इन द एयर सो ब्लू ओ आई डू थिंक इट द प्रेजेंट थिंग इवन ए चाइल्ड कैन डू अप इन द एयर एंड ओवर द वर्ल्ड टिल आई कैन सी सो वाइड यू रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन।
4: वो की नाम छी अहाँके?
10: रजना कुमारी।
4: आज कार्यक्रम आ की सुनाबे चाहे?
10: गाना।
4: सुनो।
10: रोते रोते हंसना सीखो हंसते

0: रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना।
1: वो की नाम छे यहाँ के?
2: सुहानी कुमार।
1: आज वो कार्यक्रम वहाँ की सुनावा चाहे?
2: कविता।
1: सुनो।
2: ठीक से पढ़ने लो जाओ, ठीक से पढ़ चलो नहा, ठीक से पढ़ खाना खाओ, ठीक से पढ़ पढ़ने जाओ, ठीक से पढ़ मौज उड़ाओ, ठीक से पढ़ ज्ञान लगाओ, ठीक से पढ़ सबका बड़ा, तो तुम बहुत बड़े कहलाओ।
1: वो की नाम छे यहाँ का?
3: चटकी।
1: आज वो कार्यक्रम वहाँ की सुनावा चाहे?
3: बाबा कुछ जरूर
1: सुनाओ।
3: वहाँ
1: की नाम छे?
3: नाथी कुमारी।
1: हाँ दोनों मिलकर एक गीत सुनावा चाहे छे, सुनाओ।
4: बाबा कुछ ऑर्डर डाली दाता पलम उदार चाहे कियो कमलिया जलवा के करो बटुला को बाल चाहे।
1: वो की नाम छे यहाँ का?
5: शिवा भंडारी।
1: आज वो कार्यक्रम वहाँ की सुनावा चाहे?
5: कविता। प्यारा भारत देश हमारा, हमको है प्राणों से प्यारा, सारी धरती के देशों में सबसे सुंदर सबसे न्यारा, उत्तर में है खड़ा हिमालय, दक्षिण में है सागर लहरा, सूरज सबसे पहले आकर इसे प्रेम से सिर झुका, इसी देश के आंगन में गंगा यमुना बहती, सदियों से जो इस माटी की गौरव गाथा करती।
1: वो की नाम से यहाँ का?
6: कुसुम।
1: आज कार्यक्रम वहाँ की सुनावा चाहे?
6: फूलों का संसार।
1: सुनो।
6: पंखुड़ियाँ तोड़ कर आप फूल की खूबसूरती इकट्ठा नहीं कर सकते, अकेले फूल को कई कांटों की इच्छा करने की जरूरत नहीं होती, आपको गुलाब देने वाली के हाथों में हमेशा थोड़ी सी खुशबू आ जाती है, फूल यूं ही नहीं खिलते, इसके लिए बीज को दफन होना पड़ता है। हम एक फूल से यह सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को न्योछावर करके और बिना स्वार्थ के दूसरों की खुशियाँ को और भी बढ़ा सकते हैं। हम फूल प्रकृति में खिली आत्मा है, पतझड़ एक दूसरे बसंत की तरह है, लुहावने फूल ईश्वर की अच्छाई की मुस्कान है, फूल प्रेम की सच्ची भाषा है, फुलवाली लगाना ईश्वर के साथ टहलना है।
1: वो की नाम से यहाँ का?
7: श्याम भंडारी।
1: आज कार्यक्रम वहाँ की सुनावा चाहे थी?
7: कविता।
1: सुनो।
7: बुढ़िया को चल बुखार, डॉक्टर को तो पड़ी बुहार, मुन्ना बन कर चला डॉक्टर, बोला लूंगा रुपए चार, मुँह लटका कर मुन्नी बोली यह गुड़िया गरीब है भोली है, कुछ तो इस पर दया दिखाओ, कुछ तो अपनी फीस घटाओ, चुन्नी बोली सुनो डॉक्टर एक बात का ध्यान रखे, पर कभी दवा बिल्कुल ना देना, चाहे फीस चौगुनी लेना।
1: वो की नाम छे यहाँ का?
8: प्रिंस कुमार।
1: आज कार्यक्रम वहाँ की सुनावा चाहे छे?
8: गाना।
1: सुनो।
8: ए मेरी जमी अब सोच नहीं जो तेरे लिए चौधर चाहिए, मैं पूछ रहे वो आंध चदा या जाने मेरी ये रहे न रहे, ए मेरी जमी मैं वो मेरी तेरी नच नच में मेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी अंग तेरा जिस मुँह से निकल के खून कहे,

0: खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरजू, अब सोच नहीं खलियान मेरे झूम के भंगड़ा पाल करता था, आवाज रहे वो गांव मेरा जिस गांव में लौट के वापस जा न सका, वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा साथ निराला था, कुर्बान हुआ तेरे चम्मच पे मैं कितना नसीबों वाला था, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुलबंगे मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरजू, ओ हीर मेरी तू हस्ती है मैं मरता था जिस मुख मुकरे पर कभी कम ना हो, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुलबन के मैं खिल जावा इतनी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरजू।
1: वो की नाम जी यहाँ का
2: सामवे कुमार।
1: आज जो कार्यक्रम माँ की सुनावा चाहिए जी।
2: बड़े सवेरे
1: सुना।
2: बड़े सवेरे जब खिलते बेला गुलाब कचनार, मुझे बहुत प्यारा तब लगता फूलों का संसार, गेंदा चंपा और चमेली महकी महकी है अरवेरी, आंगन में आ गई अचानक आज बसंत बहार, मुझे बहुत प्यारा तब लगता फूलों का संसार, लंग लंग के फूल खिल मुझसे तो सब हिले मिले हैं, फूलों की साड़ी

0: बगिया है अपना ही परिवार, मुझे बहुत प्यारा तब लगता फूलों का संसार। रंग घोलते महक उठाते फूल हमेशा ही मुस्काते, डूबता फूल चाहे वर्षा पड़े मूसलाधार, मुझे बहुत प्यारा तब लगता फूलों का संसार।
1: नाम से आज कार्यक्रम की सुनावा चाहिए
2: कविता।
1: सुना।
2: जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिसली सी घोलो, जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी ना बातें लच लच बोलो, जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो, हंसकर मन की गाठे घोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो।
1: वकी नाम से यहाँ का
3: दिव्या कुमार।
1: आज कार्यक्रम महा की सुनावा जाए
3: कविता।
1: सुना।
3: खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अभी चल होकर सब संकट तूफानी में, डीगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो, प्यारे तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते नव के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाग, मुसीबत आने में मिली सफलता, जग में उसको जीने में मर जाने दो।
1: अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता, जग में उसको जीने में मर जाने में। बहुत सुंदर। वो की नाम से यहाँ का
4: सृष्टि कुमार।
1: आज कार्यक्रम में यहाँ की सुनावा चाहिए
4: कविता।
1: सुनाओ।
4: चाहे भय हवा मतवाली फूल हमेशा मुस्काता, चाहे भय हवा लुवाली फूल हमेशा मुस्काता, पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्काता, कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता, ऊपर रह डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्काता, नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्काता, रोना नहीं फूल को आता वो हमेशा मुस्काता, इसलिए वह सबको भाता फूल हमेशा मुस्काता।
1: बउआ एक बेर एक संत लग में दूटा विद्वान अलाय, दुनू स्वयं के एक दूसरा से श्रेष्ठ बता रहा छलखिन। ओ संत से अनुरोध कल जे वह तय करे जे दुनू में से श्रेष्ठ संत के छथि। संत दुनू के परीक्षा लखिन तो दुनू एक से बढ़ के एक छलथि। हुनका बुझो में नहीं आबि रहल छलनि जे श्रेष्ठ किनका कहल जाय। किछु काल सोचि के संत बजला, एखन त अहाँ सब बराबर छी, लेकिन एकटा और परीक्षा लेल जायत, एकर बाद जहन अहाँ सब उत्तीर्ण भ जाएब वह श्रेष्ठ मानल जेता। ई बात कह के गुरुदेव हुनका सामने फल फूल आ आन आन वस्तु सब राखि देलखिन। फिर हुनका सबसे कई एकटा विषय पर चर्चा होमय लागल। एकटा प्रश्न पर दुनू विद्वान अड़ि गेला आ संतक जवाब के गलत सेहो साबित करय लगला। हुनकर बात सुनि के संत आवेश में आबि गेला आ हुनका नीक खराब से कह लगलखिन। संत के तामस में बाजैत देख के पहिल विद्वान त अपना आप पर काबू रखलथि आ धीरज से अपन पक्ष रखलथि, मुदा एकर विपरीत दोसर विद्वान अनाप शनाप बाजे लगला, तामस में फल फूल सेहो इम्हर आम्हर फेंक देलखिन। एतौ तक कि ओ महात्मा जी संगे हाथापाई करय पर सेहो उतारू भऽ गेला। हुनका देख के महात्मा जी बाजि उठला, बस अहाँक परीक्षा खत्म भऽ गेल, आब शांत भऽ जाउ। दुनू विद्वान हुनकर बात सुनि कऽ चुप भऽ गेला। हुनका चुप होइत देख कऽ संत कहलखिन, एहिमे कोनो दूटा राय नहि जे अहाँ दुनू आदमी बहुत ज्ञानी आ विद्वान छी, मुदा श्रेष्ठ अहाँमे सँ ई पहिल विद्वान छथि। एना कहैत महात्मा जी पहिल विद्वान दिस इशारा केलखिन। ई सुनि कऽ दोसर विद्वान हैरान भऽ गेला। ओ तुरंत महात्मा जी सँ कहलखिन, महोदय हमहूँ तऽ अहाँके सबटा गपक जवाब देलहुँ, मुदा अहाँ फैसला पहिल के पक्ष में किया देलियनि। महात्मा जी हुनकर बात के जवाब देत कहलखिन, अहाँ के ज्ञान में कोनो कमी नहीं, मुदा क्रोध पर नियंत्रण अहाँ नहीं रख पाबी छी। याद राखू, क्रोधी व्यक्ति कखनो अपन ज्ञान के उपयोग नहीं कऽ पाबैत अछि। हुनकर गप सुन के दोसर विद्वान लज्जित भऽ गेला। एहि कथा से अपना सबके यह सीख भेटित अछि जे क्रोध बुद्धि के दिया के मिझा दैत अछि, ताहि कारणे एकरा से सदैव दूरी बना कर राखी। एकरे संग हम आजू कार्यक्रम के विराम दे छी। एक बेर फेर एहि विश्वासक संग विदा लै छी जे फेर भेंट होयब अगिला शुक्र दिन अहिना कोनो आन विद्यालय के बच्चा के मुख सँ किस लाय के संग धिया पुता जय।

0: हाँ, श्रोता लोकनि, अखन हमरा लोकनि किसलय सुन रहल छलहुँ धियापुताके मुखसँ। संकलन, वाचन आ निर्माणमे सहयोग छल आशुतोष कुमार झा, आ प्रस्तुति असद दाउदके छल।
1: आ ई छल मिश्र टोलाके बच्चा सभसँ गपशप, तऽ बड़ा नीक छल। आओर देखियौ, नेना भुटुकासँ गप करू, एखन तऽ ओ इसकुलसँ बेसी घरे पर भेटै छथि, मौसमो तेहने अछि। आओर इसकुलमे अहाँके देखलहुँ हँ जतऽ जतऽ खुलि गेल हँ, आओर बच्चा सभ आसानीसँ जाइ छथि, अभिभावक सङ्गे जा रहल छथिन, ओनाही एखन तऽ छुट्टी छल।
0: हँ हँ, ओनाहियो जे छै अखनका जे तापमान अछि आशुतोष भाई,

0: तापमानमे जे छै बड़ा सचेत भऽ कऽ जे हमरा लोकनिके आन स्थानपर जे छै जेबाक चाही, ओना खास कऽ कऽ जे छै भिनसर कालके जे छै हमरा लोकनिके बेसीसँ बेसी कोनो काज करबाक चाही,
1: समयानुकूल काज हेबाक चाही, जे लागै जे समय एहन छै जे एखन काज कयल जा सकैत अछि तखने, ई नहि कि बलजोरी करी, नहि तऽ एहन गर्मी भऽ जाइ छै कि अपना सभमे तऽ ओना प्राकृतिक उपचार सेहो अछि जे अमचूर बनाकऽ अहाँ पीबि सकै छी अगर अहाँके लू लागि जाइत अछि, अगर अहाँके गर्मी भऽ जाइत अछि कि
0: नहि नहि ओनाहियो जो हमरा लोकनिके छै गर्मी, देखियौ प्राकृतिकके साथ किनके कखनो खेलवाड़ नहि करबाक चाही, कारण जे हमरा लोकनिके जखन बेसी तापमान हुए तऽ ओहन कालमे जे छै हमरा लोकनि विशेष काज ओना तऽ नहि जेबाक चाही, जहन विशेष काज पड़ि रहल अछि तऽ ओहन कालमे जे छै छतरी लऽ लिअ माथापर जे छै गमछा रख लिअ,
1: बच्चाके शरीर ओनाहियो कजी होइत अछि नहि, छोट बच्चा छथि हुनका तऽ बुझू आओर बेसी, हम तऽ कहब जे बहुत बेसी अगर दिक्कत बुझबामे आबै तऽ अहाँके नियमित समयपर छत्ता तत्ताके सङ्गे इसकुल जाउ, मुदा एकटा बात ध्यानमे राखब जे इसकुलमे दौड़ धूप बेसी नहि करू,
0: सङ्ग सङ्ग जे छै
1: किएकि होइ छै कि भाइ कि दौड़ धूप कयलासँ पानिक कमी भऽ जाइ छै, बच्चाके चक्कर आबि जाइ छनि, तऽ अत्यधिक अगर रौदा अछि तऽ हमसभ अहाँके नेनपनके दिनमे भरले दौड़ा दी, मुदा अहाँसभ बेसी एखन नहि दौड़ब, नहि एखन अहाँसभ हमरा सभके मोन अछि जे अपनासभ गोट रस खेलैत रहिए, नहि बहुत रास लऽ लैत रहिए गोटी आओर हाथमे ओकरा लोकैत रहिए, नहि उल्टा मुँहे सीधा मुँहे,
0: आशुतोष भाइ स्वास्थ्य धन अछि, स्वास्थ्य जहन नीक रहत ने तखने कोनो काज करबामे या खेलबामे या कूदबामे जे छै मन लगै छै,
1: यौ अपना सभके मिथिलाञ्चलमे ओनाहियो बहुत रास एहन खेल अछि,
0: सङ्ग सङ्ग गर्मी मासमे जे छै खान पान पर हमरा लोकनिके सेहो विशेष रूपसँ आशुतोष भाइ ध्यान रखबाक चाही,
1: निश्चित निश्चित,
0: जे मौसमी फल फुलहरी जेना ककड़ी भेल, तरबूजा भेल, खीरा भेल, नींबूके शरबत भेल, नून आ पानि भेल, एकर सभके बेसीसँ बेसी हमरा लोकनिके व्यवहार करबाक चाही,
1: किएकि होइ की छै कि जे अहाँके रुचि बहुत बेसी आब अहाँ कचरी बनाकऽ गर्मीमे अहाँ बेसी दऽ
0: देने हेबाक चाही,
1: ई हो नहि हेबाक चाही, बड़ा नीक अहाँ कहलहुँ हँ जे तापमानके अनुकूल रखबाक लेल अपना सब शरीरके की कऽ सकै छी ओहि पर ध्यान राखैत बड़ा नीक अहाँ कहलहुँ हँ जे एखुनका समयमे खीरा ककड़ी आओर बहुत रास जे प्रकृति अपना सबके देने अछि अपन धन, ओकरा अपना सबके उपयोग करबाक चाही,
0: जो एहि तरहे हमरा लोकनि सावधानी पूर्वक जे गर्मी मासमे रहब खान पान सही रखब आशुतोष भाइ, अवश्य अछि जे हमरा लोकनि स्वस्थ रहि सकै छी,
1: आओर सङ्गे श्रोतागणके कहबनि जे अपन ई कार्यक्रमके लेल हमरा सबके अपन विचार सेहो दैत रहथि, आओर अपना सबके आब जे अछि से न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर सेहो अपना सब कतौ रही सुनि सकै छी, नानी गाँव गेल छी कतौ बाहर घूमऽ गेल छी तऽ सङ्गी साथी सबके कहियो आओर सब गोटे मिलकर सुनू अपन कार्यक्रमके एहि ऐप पर,
0: तऽ आशुतोष भाइ हमरा लोकनि आप बुझू जे समय हमरा लोकनि बांधल छी आओर एकरे सङ्ग जे देखू गाम घरके समेट कऽ
1: तऽ नन्हा मुन्हा राही से विदाली, नहि
0: विदाली आइ हमरा लोकनि आब हमरा लोकनि खेती गृहस्थी दिस चलबाक चाही,
1: अन्नदाता किसान लोकनिके अपना सब स्वागत करै छियनि, नमस्कार करै छियनि,
0: कार्यक्रममे हमहुँ करै छियनि, कार्यक्रम खेती गृहस्थीमे समस्त किसान श्रोता लोकनिके स्वागत करै छियनि, नमस्कार करै छियनि,
1: यौ देवू भाइ अहाँ बहुतो बेर हमरा कहै छियै जे किसान भाइ बहुतो रास एहन काज करै छथि जे एखन अगर हुनका ओ भारी बुझायल तऽ ओहि समयमे दोसर काज अपनी आयल अछि, नहि आ खास कर एहन काज तऽ आओर बेसी ओ ध्यान देने रहै छथिन जाहिमे मेहनतके सङ्गे सङ्गे फायदा सेहो बहुत बेसी होइत अछि,
0: देखियौ बहुत नीक गप कहलियै आशुतोष भाइ, हमरा लोकनिके खेतीबाड़ीके सङ्ग सङ्ग जे आन आन जे छै व्यवसाय जे अपनाबी आन आन खेती करी तऽ ओहोसँ बुझू जे बेसीसँ बेसी जे हमरा लोकनिके आमद प्राप्त कऽ सकै छी,
1: ई नहि कि खाली चौड़े गहूँममे लागल,
0: हँ आब जेना अखने देखू हमर किसान श्रोता लोकनि जे छै धानके बीया खसा देने छथि आ पानि भइए नहि रहल छै, ओहो बीया बुझू जे कखन जल रहल अछि, तऽ ओहन स्थितिमे हमरा लोकनिके केहन खेतीके अपनेबाक चाही जाहिसँ बेसीसँ बेसी कैचा प्राप्त कऽ सकै,
1: भऽ सकै आओर सङ्गे सङ्गे ओ एहनो हुए जे अपना सबके अगर संस्कृतिके संस्कारके आओर सङ्गे सङ्गे जेबीके सेहो बनाकऽ अगर नीक राखे तऽ आओर नीक,
0: तऽ आइ किएक नहि हमरा लोकनि इएह विषयसँ सम्बन्धित आइ हमरा लोकनि गप सप करब खेती गृहस्थीमे, आशुतोष भाइ
1: की करब
0: पान की आधुनिक खेती पर,
1: मतलब आइ अहाँ ठोर लाल कहिए कऽ जायब,
0: हँ
1: तऽ की अहाँ आइ बुझि गेलहुँ हँ से तऽ करब बादमे, पहिले लै छी क्षणिक विराम, तकर बाद अहाँ कनि हमरा बुझा कऽ कहब,
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान

0: के सहयोग से बनी है वैसी पंचायत से गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: कर्ज किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला, तो बहुत अच्छा लगा। पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ भी हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: क्षणिक विराम के बाद किसान श्रोतागण के एक बेर फिर से स्वागत छन खेती गृहस्थी में। और देखियो देबू भाई, हम तखन से तैयारी कऽ के रखने छी जे हमरा अहाँ पान के खेती केना केना करी से कनी बुझा के कहब। हमरो किछु किछु बुझल है मुदा कनी अहाँ पहले हमरा कहू।
3: हाँ हाँ, छै कि देखियो आशुतोष भाई,
2: हाँ हाँ,
3: जे पान के आधुनिक खेती के बारे की पर जो गप करी,
2: हाँ हाँ,
3: तो पान के खेती करवा से पहिने सबसे पहिने हमरा लोकन के जो छै जलवायु माटि आ उन्नत किस्म पर हमरा लोकन के विशेष रूप से प्रकाश डाल।

0: कहीं से कनी बुझा के कहब हमरो किछ किछ बुझल है मुदा कनी अहाँ पहले हमरा कहू।
1: हाँ हाँ छैये कि देखियौ आशुतोष भाई,
0: हाँ हाँ
1: जे पान के आधुनिक खेती के बारे की पर जो गप करी,
0: हाँ हाँ
1: तो पान के खेती करवा से पहने सबसे पहले हमरा लोकन के जो है जलवायु माटि और उन्नत किस्म पर हमरा लोकन के विशेष रूप से प्रकाश डलबाक चाहिए, ध्यान रखबाक
0: चाहिए। मतलब पहले अपना सब कतौ कह रहल छी, बिया कतौ से लऽ रहल छी, ई सब पूरा पूरा ध्यान राखऽ पड़त। चलो हम ई लिख लेलहुँ, कहू।
1: किएक तऽ जे जलवायु सबसे बड़ा निर्भर करै छै पानी खेती पर।
0: एखने अहाँ चर्चा केबे केलहुँ जे बुआ तैयारी कऽ ले पूरा, आ मौसम अनुकूल नहि रहत तऽ बुझियौ सबटा नुकसान होइके डर होइत रहै छै। नहि डर तऽ बनले रहै छै।
1: ओना देखल जाय तऽ बिहार लेल जे छै बिहारके जे छै एकर खेती नीक जकाँ कयल जा सकत अछि। ओना पान बिहारक एकटा नगदी फसिल अछि आशुतोष भाइ। ई एकटा बहुवर्षीय सदाबहार आओर लत्तरदार एकल जे खेती कऽ सकै छी, जकरा एक बेर उत्तरी बिहारमे लगा कऽ 10-12 बरख आ दक्षिण बिहारमे 2 बरख धरि नीक उपजा प्राप्त कयल जा सकैत अछि।
0: अच्छा ठीक है, गेलहुँ हाँ।
1: जँ माटिक गप करी आशुतोष भाई,
0: तऽ
1: पानके खेती सब तरहक माटिमे कयल जा सकैत अछि, परञ्च खेतक पानिके निकास जँ ढलवा जमीन हुए भऽ सकैत अछि। सङ्ग सङ्ग जैविक माटि आ दोमट माटिके विशेष रूपसँ नीक मानल गेल अछि।
0: आ इहोमे एकटा चीज आओर देखै छलियै, बच्चाके काके देखियनि जहन ओ करथिन तऽ इहो ध्यान रखथिन आ कहथि हमरा जे एकरा लेल जे छै दोमट माटि कनि नीक मानल जाइ छै, आओर एकर खेती प्रायः एकटा विशेष संरचना जकरा कि पान बाड़ी अपना सब कहै छियै ओतहि कयल जाइ छै, जाहिसँ कि गाछके तेज रौदा हवा आओर बरखासँ सुरक्षा भेट सकी। एकरा तऽ बहुत दिक्कत छै, बेसी पानि लागै छै तैयो नुकसान। नहि मौसममे बहुत चीज जखन एकरा अहाँ ध्यानमे राखै छियै तखन अपनासभ एहन सुन्दर पान खाइ छी। नहि समय समयपर निकौनी कमौनी बेलक छटाइ उचित देखभालके लेल पातक गुणवत्ता नीक होइत अछि, आओर कटाइके बाद देबू भाइ पातके जे छै से सावधानीपूर्वक ग्रेडिंग पैकिंग आ ओकर भंडारण एहन आधुनिक जे ओकर व्यवस्था होइ छै ओकरा जे छै से ताजा बनाकर राखैमे मदद करैत अछि। आओर एखन देखै छी जे अपना सबके बाहर बाहर से अपनो ओहिठाम पान अबैया आओर अपनो सब बाहर पठबै छी।
1: हाँ हाँ आदान प्रदान होइत रहै अछि आ जो एकरा जे छै खेती करबाक तऽ सेहो हमरा लोकनिके जे छै ध्यान राखै
0: पड़त। कोन महीनामे हैत, समय केहन रहै कहू ने, हमरा तऽ अहाँ लिखै छी आधा लिखेलहुँ कहू पहिले।
1: से जे छै अप्रैल माहके अंतिम सप्ताहमे गहरी जोताइ वा माटिके पलटैवला हलसँ जोताइ कऽ मध्य जून धरि खुजल छोड़ देबाक चाही।
0: मतलब गहीर जे छै से माटि पलटैवला जे हर होइए ओहिसँ जोताइ कऽ देबाक चाही। नहि ओकरा ओहिना छोड़ि दी
1: जाहिसँ जे छै माटिमे छिपल जे सूत्रकृमि वा कीट व्याधिक जे समस्या रहैत अछि ओहिमे कमी आबैत।
0: मतलब बुआ मतलब कीट अयलौ तऽ गेलौ, बहुत बढ़िआँ व्यवस्था।
1: सङ्ग सङ्ग बरेजा बनाकऽ उपरसँ खर आ पुआलसँ छा देबाक चाही, माने जकरा छाड़ माने जेना हमसब
0: छाड़ै छी, मतलब
1: छाड़ देबाक चाही।
0: चर्चा केलहुँ ऊपर नीचा समूचा ध्यान राखऽ पड़ै
1: छै। सङ्ग सङ्ग कोदालसँ माटिके भुरभुरी कऽ 30 सेंटीमीटर उचगर आ 50 सेंटीमीटर चौड़गर क्यारी बना देबाक चाही, जाहिसँ पानक जमाव नहि भऽ सकै। आ पटौनी जे छै समय समय पर हमरा नमीके देखैत, ओना तऽ अखनका जे समय देखिए रहल छियै पानि बिना अखन जे छै कोनो तरह फसिल लगेना
0: मुश्किल कऽ रहल अछि, माने पूरा व्यवस्था बात अछि तखने अहाँ आगाँ बढ़ू।
1: सङ्ग सङ्ग ओकर उन्नत किस्मके जे छै सेहो हमरा लोकनिके ध्यान रखबाक चाही। ओकर पानके उन्नत किस्म अछि आशुतोष भाइ मगही, बंगला, कपूरी, देसी, एहि तरहक जे छै एकर इत्यादि प्रभेद अछि।
0: देखियौ हमसब हमेशा चर्चा करै छी देवू भाइ जे सरकार दिससँ बहुतो रास योजना सब अछि जकर फायदा उठेनाइ अपना सबके काज अछि। नहि मौसम केहन अनुकूल अछि, करबाक की अछि बुझबै हमही अहाँ ने, जे हम अहाँ की कऽ सकै छी। व्यवस्था केनहार तऽ व्यवस्थे करत, नहि
1: जागरूक रहबै तखने ने,
0: जागरूक रहबै तखने। ताहि दुआरे पानोके जे किसान आधुनिक तकनीक वैज्ञानिक सबके सलाह आ नीक प्रबंधनके अपनियाबैत तऽ पानक खेती कम भूमिमे बेस लाभ

0: दैवला व्यवसाय बनि सकैत अछि। एकर एकटा आओर छै खासियत, देखू एकर उत्पादन जे छै से बढ़ैत अछि, बुझलियै, तऽ ई सब एकटा बढ़िआँ
1: माने एक बार लगा दिअ आ 2-3 साल धरि जे आमद प्राप्त करैत रहू।
0: ठीके कहलहुँ,
1: आ जहन आमद प्राप्त हैत तऽ बुझिते छियै ने,
0: मतलब गीत नाद नीक लागै छै तऽ हम बुझि गेलहुँ अहाँके गप, तऽ सुनी पहिले एकटा सुन्दर सङ्गीत, फेर हेतै गपशप।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं ज्योति कुमारी ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं यह सारी की सारी छुपी रह जाती अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ उभार कर एक मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: सने से पूर्व अपना सब संगीता मिश्र के स्वर में सुंदर संगीत संगीता सिन्हा के स्वर में सुंदर संगीत का आनंद ले लूँ और देबू भाई किया नहीं अपना सब आब आगू बढ़ी और एक प्रगतिशील किसान से जो भेल गपशप है वो सुनी। तो श्रोतागण अपना सब सुने प्रगतिशील किसान धनु यादव से देव नारायण यादव का गपशप तो सुनल जाए।
3: कार्यक्रम खेती गृहस्थी के अंतर्गत आई हम आयल छी बसैला गाँव। ये गाँव वासदेवपुर पंचायत के अंतर्गत सदर प्रखंड के अंतर्गत आबत है। इतो के किसान के जो देख रहल छी काफी जुझारू छथि, मेहनत छथि आ परिश्रम छथि। देखे छी जे अखन जे बरखा बुनी भेल या ये बरखा बुनी में हमर किसान श्रोता लोकन जे बाड़ी झाड़ी में बहुत रास जे तीमन तरकारी लगने छथि आ देख रहल छी जे चारू कात लत्ती फत्ती सेहो नजर आबि रहल अछि। ताव एही क्रम में एतो के किसान सँ गपशप करी। श्रीमान अपने के की नाम भेल?
4: हमर नाम धनु यादव भेल।
3: धनु यादव जी अपने खेती बाड़ी करे छी?
4: हाँ करे छी की खेती बाड़ी करे छी। बताओ
3: कोन कोन फसल के खेती करे छी?
4: सीजन बाय सीजन तो सब रंग के फसल होय छै आ अभी भदबरिया चले छै जे तीमन तरकारी सब लगेने छी।
3: देखियो धनु जी ई तो कहबितो छै कि हमार जे देश अछि ओटा जे कृषि प्रधान देश अछि आ कहबितो अछि जे उत्तम खेती मध्यम बान निर्खित सेवा भीख समान। जे खेती जो छै नीक चीज मानल गेल है उत्तम मानल गेल अछि आ खेती क जे छै हमर भारतीय अर्थव्यवस्था सेहो दिन प्रतिदिन आगू बढ़ रहल अछि। सरकार के सेहो एहि पर विशेष फोकस छै कि जे किसान श्रोता लोकनि नीक से नीक खेती बाड़ी करे और अर्थ युग के युग में जो हमर जे छै किसान जे देश बेसी से बेसी आगू बढ़े ताहि लेल सरकार के सेहो जे पर जे छै अनेक समय समय पर जे अनेक तरह के योजना सेहो दऽ रहल अछि। तऽ बहुत नीक गप छै कि अहाँ जे छै जे अहाँ धरवरिया खेती बाड़ी में जो छै तीमन तरकारी लगेने छी तो तीमन तरकारी में धनु जी कोन कोन फसल के जो छै तीमन तरकारी लगेने छी?
4: अभी तो हम लगेने छी कोबी लगेने छी, रमतरोई लगेने छी, करेला लगेने छी और यही सब।
3: अच्छा तो ये सब अहाँ लगेने छी? मतलब देखियो एक मांग का ओनाइयो जो छै जे सतखन हाट बाजार मुसगरे रहै छै।
4: हाँ हाँ अभी तो होबे करै छै, देखबे करै छै सीजन माहौल केहन भए गेलै।
3: तो देखे रहल छी जे अखन जो छै हाट बाजार के मांग जो छै सतखने हरियर तीमन तरकारी मुसगरे रहै छै। तो जँ अहाँ सब नीक जकाँ खेती बाड़ी करबै तऽ अवश्य अछि जे मांग और पूर्ति जो तीमन तरकारी के हाट बाजार में होइ छै वो संतुलन बनल रहत। तो धनु जी अहाँ जो तीमन तरकारी जो लगाबै छियै जेना अपने कहबे कहलौ हैं कि जे मंदिर घिवड़ा लगेने छी, रामतुरई लगेने छी, तो एकर सबके तो चुनाव प्रभेद के चुनाव तो सेवा करत होबै तो ओकर प्रभेद के चुनाव अहाँ केना की करै छी? कोन कोन प्रभेद के लगाबै छी अहाँ खेत पथार में?
4: देखियौ एना तो प्रभेद बहुते होइ छै लेकिन हम जे अपना खेत में प्रभेद के चुनाव कयने छी और हम किसान भाई सबके भी सजेशन देबै प्रभेद के चुनाव जरूर खेती में करे। और जेना कि अरका अरका अभय अरका जे होइ छै वर्षा उपहार और प्रभारी क्रांति
3: लगेने छी। अच्छा खेती करवा से पहिने तऽ अहाँ तऽ खेत के सेहो चुनाव करैत

0: हाँ किया ने वो सब चुनाव होइ छै कि
1: तो खेत के लेल जे छै केहन माने तरकारी के खेती लेल जे छै ओना त कहल गेल छै जे जोना जो कहल गेल छै जे जे दोमट माटि बलुआही माटि आ ढलवा वाला जमीन बेसी उपयुक्त मानल गेल
0: छै। हां देखियो माटि के में विशेष प्रकार के में होइ छै सब्जी के खेती। माटि कनी भकरल होना चाहिए, ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए माटि, ओकरा एकदम ढीला करल जाय छै माटि, बलुआ माटि होइ छै मतलब कि नमी बनल रहे सब्जी के उपजा बढ़िया हो मिट्टी के।
1: तो और यहाँ जो है जो है अहा माटिक गप कर लो है दन्नू जी संग संग जो है यहाँ जे का जो बाप के करबाक समय जो है सेहो होते तखन जो भरभरिया जो तीमन तरकारी लगेने छी तो भरभरिया तीमन तरकारी में यहाँ जो है तरह जे छै तीमन तरकारी के।
0: हाँ वह घिवड़ा सब भिंडी सब कहलू ने करैला सब कोबी सब लगेने छी।
1: अच्छा तही तो अहाँ जो है तरह जैसे तीमन तरकारी के गप कर लो संग संग जो है यहाँ खाद उर्वरक के तो सेहो अहाँ व्यवहार करते होबे।
0: हाँ
1: तो ओकरा लेल कोना की करै छी अहाँ?
0: खाद उर्वरक के तो विशेष जरूरी छै अभी के समय में, तो खाद उर्वरक में तो हम प्रति हेक्टर कंपोस्ट जे छै 200 क्विंटल हम दै छियै, ठीक छै, और ओइके बाद 120 किलोग्राम नेत्रजन दै छियै और पोटासो देलौ 60 किलोग्राम पोटासो देलौ। ई इकाई में बुआई करै छी, सिंचाई करै छियै।
1: तो बहुत नीक गप कहलो कि अहाँ जो छै रासायनिक खाद के अहाँ व्यवहार करै छियै धन्नू जी। संग संग अखिनका दौर में जे सरकारो के योजना अछि और हमर किसान श्रोता लोकन बा वैज्ञानिक लोकन के सदखन जे सलाह रहै छै कि बेसी से बेसी रासायनिक खाद के व्यवहार नहीं कऽ कऽ जौ नीम कोटेड यूरिया के व्यवहार कयल जाए, जैविक खेती के व्यवहार कयल जाए, तो मानव स्वास्थ्य के लेल बेसी से बेसी निक मानल गेल अछि आ मानव स्वास्थ्य के संग संग जो जीव जंतु के कल्याण लेल सेहो बेसी से बेसी उपयुक्त भ सकैत अछि। तऽ एहि लेल अहाँ की कहब चाहबै जे रासायनिक खाद के बेसी दिस बढ़ावा दऽ रहल छियै या जैविक खेती के लेल, एहि लेल आम किसान के अहाँ की सलाह देबे छबै?
0: किसान भाई लोग, हमारे जितने भी मित्र है, भाई लोग, किसान लोग है, जैविक खेती का सदा उपयोग करे अपने खेत में। जितना भी ये केमिकल वाला खाद पदार्थ सब जो होय छै वो सब बीमारी के घर छै, ओकरा कम उपयोग करल जाए और जैविक खेती के उपयोग के बढ़ावा देल जाए।
1: बहुत नीक गप कहलो है धन्नू जी जे अखिनका दौर में जे जो हमरा लोकन जैविक खेती करे छी तो मानव स्वास्थ्य लेल बहुत ही लाभदायक भ सकै छै। ओनाहियो तो अखन देखिए रहल छियै कि जै दौर सँ जे अखिनका जो अन्न पानि के जो उपजा भ रहल अछि या अन्न पानि में जो छै तीमन तरकारी हुए बा कोनो नाना तरकारक फूल फुलौरी की अखने, तो सब में जो छै अखनो जो देख रहल छी जे शुद्धता भेटबाक चाही वो शुद्धता के जो छै अभाव हमरा लोकन के जे छै दिन प्रतिदिन घट रहल अछि। तैं किसान श्रोता लोकन के आग्रह करबन कि जो छै बेसी से बेसी जैविक खेती के बढ़ावा देबाक चाही। संग संग धन्नू जी जे एकटा और सवाल पूछब जे अहाँ जो छै अखन जो छै जे भदवरिया के समय आब जे किछु दिन के बाद चलत, संग संग खरीफ फसिल के लेल तीमन तरकारी के अलावा अहाँ आरो खेती के बारे में कुछ अहाँ सोचने बे जेना अखन जखन भदवरिया धान बिछड़ा सब गिराबे के सेहो उपयुक्त समय छै, मरुआ के कमौनी कठौनी के लेल जो छै सेहो उपयुक्त समय छै, ताहि लेल अहाँके की प्रक्रिया छै, आगे अहाँके की माने विचार अछि?
0: देखियो सीजन बाय सीजन सब तो खेती करबे करै छै, आब आबे वला छै इधर हटतै आब ई सब सब्जी उपटेबै तऽ फिर वो सब अपन खेती होतै, एकर विशेष रूप से जेना होइ छै ओना कयल जाइ छै।
1: माने धान के बिचरा अहाँके देख रहल छी?
0: हाँ
1: अहाँ खसेने छी?
0: हाँ वो खसा देन छियै, आब वो अब एक महीना अब यही सब समय में तो खसबै छियै। हाँ आब भ जेतै एक एक हाथ के भ जेतै फिर ओके बाद समय पुरतै।
1: माने अहाँ
0: बरखो नहीं देखै छी अभी कते कड़क धूप छै, बरखो होतै तब ने यहाँ तो पानी के तो से आपदा पड़ल छै।
1: सोच बहुत नीक अछि, माने कभी तो छै जे समय से पहले चेत किसान, यानी अहाँ समय से पहले यहाँ बिया बाल खसा के रखने छी।
2: निश्चित रूप से बहुत नीक अपना सब जे छै से जानकारी सब प्राप्त केलहुँ जे केना जे छै से अपना सब मौसम के अनुकूल छै कोनो खेती करै छी, और अगर किसान भाई से जानकारी वैज्ञानिक सब दऽ दै छथिन तो ओ और बढ़िया से अपना सब खेती नहि भऽ जाइत अछि। संगे संगे अपना सबके मौसम के पूर्वानुमान संबंधी जे किछु जानकारी अइ तेबू भाई से दऽ दियनि।
3: हाँ हाँ दऽ दियनि।

0: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर और भारत मौसम विज्ञान विभाग का सहयोग से जारी अपना सबके 30 जून धरिक मौसम पूर्वानुमान जे अछि ओकरा अनुसारे पूर्वानुमान के अवधि में आमतौर पर मौसम के शुष्क रहबाक संभावना अछि। हालांकि किछ स्थान पर 27 और 29 जून के जे छै से मेघ गर्जन कनी तेज झोंकेदार हवा चलबाक संभावना छै। एकर प्रभाव से कतौ कतौ हल्लुक वर्षा के माध्यम से जे छै से लोक के राहत सेहो भेटबाक उम्मीद अछि। तो ई 27 से 29 जून के मध्य एहि दौरान औसतन जे छै से अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना अछि, जखन कि सीवान गोपालगंज बेगूसराय आ पूर्वी संगहि पश्चिमी चंपारण जिला में तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकैत अछि। न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक अनुमान अछि।
1: ई छल मौसम संबंधी सूचना। एकरे संग जो छै आशुतोष भाई हमरा लोकन के जो छै खेती गृहस्थी समय सेहो सम्पन्न भ रहल अछि, तब किसान श्रोता लोकन से चले के आज्ञा ली। नमस्कार आशुतोष भाई।
0: नमस्कार देबू भाई।

खेती गृहस्थी किसान भाइयों को संबोधित था। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: शोज पर दिखाए जाएंगे उत्कृष्ट पंचायतों के विकास कार्यों के वीडियो
1: और सुना जाएगा प्रधानमंत्री जी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात। आइए जुड़िए पंचायत विकास दिवस से।
0: जन भागीदारी से सशक्त ग्राम पंचायत, विकसित भारत, समृद्ध बिहार।
1: पंचायती राज विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नशे का कारोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती, नशे के खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील की। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 31 दिसंबर तक समर्थ पोर्टल के सभी मॉड्यूल लागू होंगे। उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार का बड़ा कदम। गया जी केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को अनियमितता और लापरवाही के आरोप में किया गया निलंबित। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीमांचल सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स

0: राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, डिजिटल प्रशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए आज पटना लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अता हसनैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहे। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों में इस वर्ष 31 दिसम्बर तक समर्थ पोर्टल के सभी मॉड्यूल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान नवसृजित 211 सरकारी डिग्री महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की केंद्रीकृत नियुक्ति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, शोध एवं डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। बैठक में विद्यार्थियों की लंबित डिग्रियों के वितरण कार्य को 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। गया जी केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को अपराधियों के साथ मिलीभगत और कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में गृह विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित उपाधीक्षक पर जेल में प्रतिबंधित सामग्री मिलने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आरोप है। जेल अधीक्षक की जांच में यह भी सामने आया है कि उपाधीक्षक की ओर से बंदियों के परिजनों से पैसे लेकर उनकी ओर से लाई गई सामग्री को बिना सुरक्षा जांच के जेल परिसर में पहुंचाया जाता था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित अनियमितता के मामले में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर श्री राम जन्मभूमि थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे सरकार उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी।
1: मैं सबके आस्था का जगह है राम, पूरे देश के लोगों का आस्था विश्वास राम जी में है। जो भी ये किया है निश्चित रूप से

0: जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भरत भूषण तिवारी कथित मुठभेड़ मामले पर कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। श्री झा ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एनडीए सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई हो, और कल से इंक्वायरी भी शुरू हो गया, कमीशन बनाया गया है, उनके परिवार से भी जा करके मिले हैं, अन्य लोग जो गांव के हैं उनसे भी मिले हैं, और मुझे लगता है कि अब जब कमीशन काम शुरू कर दिया उसके रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सरकार जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे कार्रवाई करेगी और इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। बिहार जैसे प्रदेश में कानून स्थापित करना, कानून का राज रखना, ये एनडीए सरकार की प्राथमिकता नंबर वन है।
0: राज्य सरकार ने राजस्व प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश के 90 अंचलाधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह स्थानांतरण विभागीय वार्षिक तबादला नीति के तहत किया गया है। इससे पहले विभाग ने 60 अंचलाधिकारियों का तबादला किया था। इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य राजस्व एवं भूमि प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाना है। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में विभागीय स्तर पर जून माह में वार्षिक तबादलों की व्यवस्था लागू की गई थी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर सरकार संवेदनशील है। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार ने स्थानांतरण पोर्टल लॉन्च किया है, इससे शिक्षकों का स्थानांतरण सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगा।
2: शिक्षकों की लंबे समय से जो मांग रही है उसे हमने बिहार कैबिनेट से पास करा करके और उनके स्थानांतरण नीति को सरल कर दिया है, और स्थानांतरण पोर्टल के माध्यम से होंगे, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और वो अपना आवेदन जब पोर्टल पर करेंगे तो ऑटोमेटिक उनके ट्रांसफर हो जाएंगे। महिलाओं को उनके पंचायत के बगल के पंचायत में, पुरुषों को उनके ब्लॉक के बगल के ब्लॉक में ये स्थानांतरण करने की हमने योजना बनाई।
0: जदयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास और सुशासन का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जिसे देश के अनेक राज्यों ने अपनाया है। पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद श्री यादव ने कहा कि एनडीए सरकार न्याय के साथ विकास की अपनी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी कथित मुठभेड़ मामले में सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। शीर्ष समाचार।

0: एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। ग्रामीण विकास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने किसानों से परंपरागत खेती के साथ वैज्ञानिक तकनीक, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की अपील की है। श्री कुमार ने नालंदा जिले के नूरसराय में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इससे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और खेती अधिक लाभदायक बनेगी। उन्होंने किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए भी प्रेरित किया। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों की शहादत की याद में योम ए आशूरा मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने प्रदेशवासियों से पारंपरिक सद्भाव, शांति और भाईचारे के माहौल में मुहर्रम मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत हमें इंसानियत, त्याग और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इधर मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को जुलूस मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर और पटना सिटी समेत 351 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाया गया है। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान शिवहर, मधुबनी और पश्चिम चंपारण जिले के कुछ स्थानों में भारी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवहर में सबसे अधिक 112.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पश्चिम चंपारण के बगहा में 95 मिलीमीटर, हरलाखी में 68 मिलीमीटर और सोनवर्षा में 49 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कहा कि मानसून की उत्तरी सीमा अभी मोतिहारी से होकर गुजर रही है। अगले 3 से 4 दिनों में बिहार के शेष भागों में मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है।
1: राज्य के किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अरिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: भारत और आयरलैंड के बीच बेलफास्ट में आज पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 17 ओवरों में 5 विकेट खोकर 164 रन बना लिए हैं। भारत और आयरलैंड के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम T20 मैच रविवार को खेला जाएगा। सिवान के सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद ने मॉडल

0: सदर अस्पताल में बन रहे आईसीयू का निरीक्षण किया। चार बिस्तरों वाले अत्याधुनिक आईसीयू को 30 जून तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अररिया जिले के जौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने 340 लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार और अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन ने वीरपुर अनुमंडल के 14 और सुपौल अनुमंडल के 15 नव नियुक्त पीडीएस डीलरों को लाइसेंस प्रदान किया। रोहतास के जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रथम चरण में जिले के 7,000 से अधिक कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को निःशुल्क लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड के परसोना गांव में आंधी और बारिश के दौरान वज्रपात से कई घरों में लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नशे का कारोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती, नशे के खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील की। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 31 दिसंबर तक समर्थ पोर्टल के सभी मॉड्यूल लागू होंगे। उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार का बड़ा कदम। गया जी केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को अनियमितता और लापरवाही के आरोप में किया गया निलंबित। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीमांचल सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बांका जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विदु शेखर।
1: बांका जिले में आज मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। पूरे जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी तथा दंडाधिकारियों की लगातार निगरानी सुनिश्चित की गई। विकसित भारत योजना और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होगी के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की गई बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी अंकुर अग्रवाल शामिल हुए। बैठक में योजना के प्रावधानों की जानकारी देते हुए जिला एवं प्रखंड स्तर पर कर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण तथा योजना के 100% क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया। अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत बीते दिनों बांका जिले में आयोजित रोजगार सह

0: युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। आगामी 28 जून को होने वाली सिपाही प्रचालक भर्ती परीक्षा को कदाचार मुक्त और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी दंडाधिकारियों, केंद्राधीक्षकों तथा पुलिस पदाधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। बांका जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में लगातार सहयोग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना तथा उनकी शिकायतों के समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना है। जिला प्रशासन ने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और उन्हें पारदर्शी और त्वरित सेवा मिल सके।
1: और अब प्रस्तुत है लखीसराय जिले की हलचल, इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनय कुमार।
2: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लखीसराय जिले में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का काम शुरू हो गया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में अधिकारियों ने योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचाने पर जोर दिया। जिले के खिलाड़ियों ने बीते दिनों राज्य टाइकांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 स्वर्ण, 12 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर पूरे बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अब राष्ट्रीय टाइकांडो प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्य प्रशिक्षक दादर गुप्ता ने इस उपलब्धि का श्रेय खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और जिले की मजबूत खेल परंपरा को दिया है। बीते दिनों कृषि विभाग ने खरीफ महा अभियान 2026 की शुरुआत कर

चर्चा की गयी। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन कर पात्र लाभुकों तक

0: आयोजन किया गया। इस जॉब कैंप में 36 युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 13 अभ्यर्थियों का प्रोविजनल चयन किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे बांका और लखीसराय जिले की हलचल।
2: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये पहला गाना किशोर कुमार का गाया हुआ, जिसे हमने लिया है फिल्म कसौटी से।

जाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: Gato.
1: आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार का गाया हुआ, जिसे हमने लिया था फिल्म कसौटी से। अब जो गाना आप सुनेंगे उसे गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा हुआ है हजरत अमीर खुसरो का, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की।

आप सुने थे मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का नगमा। गुलोकारा थी लता मंगेशकर। अब जो गाना आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म अमर से, आवाज़ लता मंगेशकर की है।

0: to watch more.
1: और ये गाना सुनिए फिल्म पारस मणि का, युगल स्वर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का, शब्द रचना असद भोपाली की और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये गाना आप सुन रहे थे फिल्म शीरीं फरहाद का, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी दरभंगा से लीजिए सुनिए मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक एहि नव अंकक संग हम राकेश चंद्र नंदन। श्रोता बंधु, एखुनका जे समय अछि ओहिमे हमरा लोकनि देखैत छी जे हमरा सबमेसँ बहुतो गोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स केर उपयोग करै छी आ एहि सभक उपयोग दिनानुदिन बढ़िते जा रहल अछि। देखू ने, समयक संग तऽ हमरा सबके चलहे पड़ैत अछि आ एखुनका जे समय अछि ओ तऽ निश्चित रूपसँ वैज्ञानिक युग अछि, यांत्रिक युग अछि। तैँ हमरा लोकनि एहि यंत्र सभक संग वैज्ञानिक पद्धतिसँ अपन काज व्यापारमे लागल रहैत छी। दैनिक उपयोगी जे किछु सुविधा सब देलक अछि विज्ञान, ओकर लाभ उठबैत रहैत छी, सहयोग ओकर लैत रहैत छी। देखू ने, हमसब समयक संग चली ई तऽ निश्चित रूपसँ नीक बात अछि, बेजाय नहि अछि, मुदा ओकरा पर बेसी निर्भर रहब से ठीक नहि बुझाइत अछि। एखने किछु दिन पहिने कोरोना कालमे हमरा लोकनि देखलहुँ जे हमरा लोकनि बाहर नहि निकलि पाबि रहल छलहुँ, घरमे बन्द छलहुँ। ओहि समय एक दोसरासँ सम्पर्क करबाक, गप करबाक, बात विचार करबाक ई एकटा नीक माध्यम बनल हमरा सबके। आ ओहू मध्य जे साहित्य सब लिखल गेल ओकरा एक दोसराक सोझा आनबाक माध्यम बनल ई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब। एक तरह देखल जाय तऽ हमरा सब लेल ई नीक अवसर सेहो बनबैत अछि, कारण हमसब एकर उपयोग कऽ अपन साहित्य, अपन संस्कृति, ओ सांस्कृतिक परम्परा सभक संरक्षण संवर्धन कऽ सकैत छी, करितो छी। हमसब साहित्यसँ सम्बद्ध बहुत रास काज सब तऽ भइयो रहल अछि। हमसब देखैत छी जे रचनाकार लोकनि अपन रचना सब प्रेषित करैत रहैत छथि एहि माध्यमसँ, ओकर समीक्षा सेहो होइत अछि, नीक गप अछि। नव रचनाकार लोकनि लेल ई सिखबाक अवसर होइत छनि। श्रोता बंधु, हमसब एकर एकटा आओर पक्ष देखैत छी, ई हमरा सबकेँ अपन इतिहाससँ सेहो परिचित करबैत अछि, वर्तमानक संग इतिहासक जनतब दैत अछि। देखू ने, एखन अमृत काल चलि रहल अछि आ हमरा लोकनि एखन

0: पंच प्रण केर संकल्पक संग आगू बढ़ि रहल छी। इएह पंच प्रण अछि जे आबयवला बरक सबमे हमर देशकेँ विकसित देशक रूपमे विश्वक समक्ष सबसँ आगाँ आनिकऽ ठाढ़ करत। आ एहन समयमे हमरा लोकनि लेल आवश्यक होइत अछि अपन पूर्वज लोकनिसँ प्रेरणा लेब। जखन हमरा लोकनि हुनका शब्द पढ़ैत छी, हुनकर सभक कयल गेल जे काज सब ओकरा सबकेँ देखैत छी, प्रेरणा भेटैत अछि, आगाँ बढ़बाक हौस होइत अछि आ उत्साहक सङ्ग हमसब आगाँ बढ़ि जाइत छी। तऽ की विचार? आउ ने पहिने हमरा लोकनि स्वाधीनताक सिपाही श्रृंखला सुनि लैत छी। स्वाधीनताक सिपाही।
1: नमस्कार, आई एहि श्रृंखला में स्वाधीनताक सिपाही गंगा प्रसाद सिंह। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अनेक शाह वीर योद्धा एहन भेलाह जे अपन सर्वस्व समर्पित कयलनि, अपन तन मन धन सब किछु देश लेल राष्ट्र लेल समर्पित कऽ देलनि। भगत सिंह सन वीर सपूत सेहो भेलाह जे हँसैत हँसैत फांसी केर फानकेँ चूमि लेलनि, तऽ चंद्रशेखर आजाद सन सिंह सपूत सेहो जे अपना वचनक अनुसार अंग्रेज द्वारा जीवित बंदी बनायल जेबासँ बचबा लेल स्वयं अपना हाथसँ अपना माथमे गोली मारि लेलनि। अनेक शह वीर योद्धा लोकनि अपन घर परिवार सबकेर चिंता बिसरि कऽ राष्ट्र चिंतनमे लीन भऽ गेलाह, राष्ट्रकेर स्वाधीनता संग्राममे अपनाकेँ पूर्णतः झोंकि देलनि। हुनका लेल सम्पूर्ण राष्ट्र सम्पूर्ण देशे परिवार भऽ गेल आ ओहि परिवारक कल्याण लेल सब किछु बिसरि कऽ अहर्निश जुटल रहलाह। एहने वीर स्वाधीनता सेनानी रहलाह गंगा प्रसाद सिंह, जिनकर जन्म 2 अप्रैल 1901 केँ अयोध्या प्रसाद सिंह केर पुत्र रत्न केर रूपमे कोसी क्षेत्रक बरुआरी परसरमा में भेल छलनि। गंगा प्रसाद सिंह स्वाधीनता संग्राम केर क्रम में 4 खेप जहल यात्रा कयलनि। जहल केर यातना केँ फूलक हार जकाँ अंगीकार कयलनि। पहिल बेर 1921 में 6 मासक जहल भेलनि। 1930 आ 1932 में 1-1 वर्ष लेल जहल केर यातना सह पड़लनि। 1942 केर आंदोलन में हिनका 3 वर्षक जहल केर सजाए देल गेलनि, जकरा ई सहर्ष स्वीकार कयलनि। गंगा प्रसाद सिंह 1920 में भारत में स्वराज केर स्थापना हेतु सहरसा में जे स्वाधीनता सेनानी लोकनि सक्रिय छलाह ताहि में शीर्षस्थ छलाह। ई राजमहल में आयोजित एकटा कार्यक्रम में गेल छलाह, ओतय सँ घुरतिये में हिनका बंदी बना लेल गेलनि। तहिया हिनकर अवस्था मात्र 20 वर्षक छलनि। पिता हिनकर अध्ययन के लऽ कऽ चिंतित छलाह आ हिनका कॉलेज पठेबा केर ओरियान कयने छलाह। 1920 में ई कॉलेज में प्रवेश लइयो लेलनि, मुदा तखने महात्मा गांधी केर आह्वान पर ई पढ़ाई छोड़ि कऽ आंदोलन में सक्रिय भऽ गेलाह। हिनका संग हिनक पत्नी देवयंती देवी सेहो स्वाधीनता संग्राम में अपन योगदान देलनि। ओ गाम में महिला संगठन आ चरखा कैंप चला कऽ अपन सक्रियता बनौने रहलीह। हिनक धर्मपत्नी निर्धन लोकनिक सेवा सेहो करैत छलीह। गंगा प्रसाद सिंह 1942 में अनेक संगी सबकेर संग हिनको बंदी बनायल गेलनि, तो हिनका अन्य संगी केर संग अंग्रेज सरकार बर्बरता कयलक, मुदा हिनका शारीरिक दंड नहि देल गेल। देश केर स्वाधीन होयबासँ किछुए पूर्व हिनका जहल सँ मुक्त कयल गेल छलनि। ई अपन सम्पूर्ण परिवारकेँ अपना रङ्गमे ढाड़ि चुकल छलाह। हिनकर सम्पूर्ण परिवार सेहो स्वाधीनता संग्राममे कोनो ने कोनो रूपे सक्रिय छल। पत्नी तँ एहिमे अपन

0: सक्रियता देबे कयल छिन, हिनकर 12 बरखक पुत्र विक्रम प्रसाद सिंह सेहो 1942 केर आंदोलन में भाग लेलनि। बाद में अंग्रेज शासन केर भय सँ हुनका ओही अवस्था में भूमिगत सेहो होब पड़लनि। गंगा प्रसाद सिंह केर पत्नी आ विक्रम केर अनुज तिनको घर छोड़ी कऽ बरखो धरि पड़ायल रह पड़लनि। गंगा प्रसाद सिंह 1924 में मधेपुरा लोकल बोर्ड केर उपाध्यक्ष आ सहरसा जिला बोर्ड केर सेहो उपाध्यक्ष केर पद के सुशोभित कयलनि। ई अपना गाम में 1947 में उच्च विद्यालय केर स्थापना सेहो कयलनि, जकर जीवन पर्यंत अध्यक्ष रहला। हिनका स्मृति में सहरसा में गंगा टेक्निकल संस्थान केर स्थापना कयल गेल, मुदा उपेक्षा कारणे ई संस्था मृत प्राय सन रहल। गंगा प्रसाद सिंह केर स्नेह संपर्क में स्वाधीनता संग्राम केर सपूत राजेंद्र मिश्र, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, बाबू राम बहादुर सिंह, पंडित छेदी झा द्विजवर, श्रीकांत मिश्र, पुच्छा मियाँ आदि सेहो रहला। हिनका सभक संग तन मन धन पूर्वक राष्ट्र सेवा में समर्पित रहला गंगा प्रसाद सिंह। गंगा प्रसाद सिंह स्वतंत्रताक सूर्योदय अवश्य देखलनि, मुदा बरख 1947 में देश स्वाधीन हेबा केर 10 बरख नहीं जीवी सकला आ 22 अगस्त 1956 के हिनकर देहावसान भ गेलनि। गंगा प्रसाद सिंह सशरीर हमरा लोकनिकर बीच नहीं रहलाह, मुदा हुनकर यशोगाथा सदिखन विद्यमान छनि, जीवंत छनि। एही सिंह पुरुष के नमन। एकरा संग ही स्वाधीनता सिपाही कर श्रृंखला एत ही संपन्न होइत अछि। आलेख एवं वाचन अमलेंदु शेखर पाठक केर, प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद।
1: स्वाधीनता सिपाही। श्रोता बंधु, पूर्व प्रसारित एहि स्वाधीनता सिपाही श्रृंखलाक बाद अब हम सब बढ़ै छी अपन साहित्य दिस। आ देखू ने, हमरा लोकनिक जे साहित्य ओ दिनानुदिन समृद्ध होइत जा रहल अछि। प्रत्येक विधा में रचना सब भ रहल अछि। हम सब देखै छी जे साहित्य केर सब विधा एहि बीच संपुष्ट भेल अछि। जतय धरि कथाक गप अछि, ओकर तऽ एकटा नम्मा परंपरा रहल अछि, नम्मा इतिहास रहल अछि हमरा सब ओहिठाम। कथा कहबाक जे कला, ओ एहिठाम अदौ कालसँ विद्यमान रहल अछि। देशकाल परिस्थितिक अनुरूप कथा सब लिखल पढ़ल जाइत रहल अछि, एखनो लिखल जाइत अछि। तऽ आउ ने एक गोट कथा पहिने सुनैत छी। शीर्षक अछि पैकेज वाला बर। कथाकार छथि मुकेश आनंद।
2: वासुदेव जी बहुत दिन सँ अपन कन्याक लेल सुयोग्य वर तकैत छलाह। कन्याक पढ़ाई लिखाई समाप्त भऽ गेल छल आ तकर बाद नौकरियो केना 2 साल बीत गेल रहै। सुनैत छलखिन लोकक धियापुता बेसी पढ़ि जाइ छथि तऽ अपन ब्याह कऽ लैत छथिन, मुदा हुनक बेटी ब्याहक सब भार भुवनेश्वर बाबूक दऽ देने रहथिन। सौभाग्य हुनक। मानसिक और शारीरिक रूपसँ पूर्ण विकासक बाद आब बेटीक प्रति यह हुनकर अंतिम जिम्मेवारी रहनि। ओना तऽ जिंदगीमे जिम्मेवारीसँ कहियो मुक्ति नहि, से जिम्मेवारीके निर्वाह ओ पूर्ण गंभीरतासँ करय चाहै छलाह। एहि क्रममे भुवनेश्वर बाबू अपन सर सम्बन्धिक दोस्त महीम समेत कतौको गोटेके कहलखिन जे कोनो नीक कथा यदि अभरय तऽ सूचित करब, मुदा आब बहुत समय भऽ गेल रहनि। एहनो बात नहि जे बर सब नहि भेटथिन, मुदा कतौ वासुदेव बाबूके मोन नहि मानलकनि। पहिले ओ बरके दरमाहा मने पैकेज चेक करै छलाह। पैकेज मने एक सालमे कंपनी जतेक पैसा दरमाहामे दै छल तकर हिसाब। बेटीक पैकेज 25 लाखक छलनि, तैं बरक पैकेज ओहिसँ बेसी होय तखने ओ कथा उपस्थित करै लेल डेग उठाबथि। कन्यादानक परिप्रेक्ष्यमे वासुदेव बाबूक समस्या ई रहनि जे हुनकर कन्या सब तरहें नीक रहथिन, देखैमे सुन्दर और सुयोग्य। सुयोग्य सेहो एहन हो नहि, प्रतिष्ठित संस्थासँ

पर बहुत नीक कंपनी में कार्यरत छली। आब एहन कन्या लेल वर सेहो तेहन होबाक चाही। वर देखे में सुंदर पवित्र, पैसा कमाई कन्या से बेसी, खानदानी नीक परिवार आ यदि कनिको जाति पाँच बचल हुई तो नीक। कतेको ठाम गेला कथा उपस्थित कयलन मुदा काज सफल नहीं भेलन। एक ठाम था बरागत कथा स्वीकारो कर लेलखिन मुदा वास्तुदेव बाबू के अपने मन स्वीकार नहीं कलकन। परिस्थिति तेहन छल। वर बहुत नीक कंपनी में उच्च पद पर छला। मुंबई में बहुत नीक पैकेज पर नौकरी छलन। 50,000 मकानक किराए छलन। खूब लंबा चौड़ा फ्लैट मुदा गाम में वह पुरना स्टाइल के घर। मालजाल बान्हल सेहो चल जैते मुदा सबसे दिक्कतक बात ई भेले जे घर पर बरक बाबू जी गमछा देह पर धेने उगारे देह बैसल छला। एना में केना ब्याह कैल जाए। एक ठाम और सेहो कथा करीब करीब ठहरिए गेल छले मुदा परिवारे रही बड़ एडवांस। अहू ठाम लड़का रहत बड नीक, मतलब पैकेज बड नीक। गाम में खूब जमीन जथा परंच बरक बाबूजी आ पूरा परिवार शुरू से दिलिये रहित छल। तें परिवार में लगे अपन संस्कृति कोनो लेस नहीं। प्रायः सब मैथिली अंग्रेजे जकाँ बजत हाँ। तखन भ गेल जखन कथा वार्ताक बीच में बर के बहिन आबि कऽ बैस रहल। वासुदेव जी के पक्का विश्वास रहन जे नीक वैवाहिक जीवन लेल एक रंग परिवार, पैसा आ रहन सहन एक रंग भेनाई जरूरी होइ छै। हालांकि वो अपने साधारण परिवार से रहथि आ कनिया पैघ परिवार से, मुदा हुनकर जीवन बहुत सुखमय रहन कारण बर कनिया के बीच नीक सामंजस्य। मुदा हुनका ई मात्र संयोग बुझै अपन बेटीक ब्याह पूरा ठोक बजा कऽ करै चाहै छलाह मुदा अपन तय कए गेल समय सीमा पर काज नहि होयबाक कारण प्रायः उदास भऽ जाइत छलाह। धीरे धीरे वासुदेव जी तनावग्रस्त रह लगलाह। कथा नहि ठहरलाक कारणे मुँह लटकौने घर आबैत हुनकर उतरल मुँह देख कए पल्लवी आ ओकर माय सेहो उदास भऽ जाइत छलीह। एक दिन संजोग सँ वासुदेव जी पुरान जानकार भुवनेश्वर जी दरभंगा टावर लग गुदरी बाजार में भेंट भेलखिन। दुनू गोटे तरकारी मोलबै छलाह। वासुदेव जी के मुँह लटकल देख कऽ पुछलखिन की बात है। सबटा गप वासुदेव जी भुवनेश्वर जी के कहि सुनेलखिन। सब बात बुझि कऽ भुवनेश्वर जी कहलखिन अहाँ बच्चे से ओकर दिमाग में भरि देने छियै जे विवाह अहीं ठीक करबै। ओ एहि स्मृति से बाहर निकल नहीं पाबि रहल है। से बात छै। वासुदेव जी कहलखिन जी और बेटी संस्कारी है तैं अहाँके कष्ट नहीं पहुँचाबे चाहत है। वो अपन मोन एहि दिश से हटा लेने है। नहीं तो आइ काल्हि के बच्चा कतौ माय बाप के पूछे छै। ओहो कमाइत बच्चा। हाँ गप तो ठीके कहे छी भुवनेश्वर बाबू। आब हम की करू संशोधन। भुवनेश्वर बाबू कहला तात्पर्य पूछलन वासुदेव जी। वैचारिक संशोधन करू अपन व्यवहार में अपन पत्नी और कन्या के एहि प्रक्रिया में सम्मिलित करू। अहाँ के काज बहुत आसान भ जाए। ठीक कहे छी आप सह करब। वासुदेव बाबू बजला देखियो जिंदगी बीतेबाक छै ओकरा तैं ओकर पसीन बुझनाइ जरूरी छै। से तो ठीके कहे छी वासुदेव बाबू बजला और अहाँ के बेटी अहाँ से बेसी दुनिया देखने छै। ओकर निर्णयक आयाम पैघ हेतै। वासुदेव जी बदलैत समय के बुझियौ धीरे धीरे हमसब अप्रासंगिक भ रहल छी। खाली बेसी पाई कमाई वाला सब बड़ नीक होए से जरूरी नहीं। एकदम सत्य वासुदेव जी बदला देखियो वासुदेव जी अपन सीमित ज्ञानक कारण हमसब नीक वर्ग परिभाषा संकुचित कय देने छी। एहि से समस्या ठाढ़ भ जाइत छै। आबक लड़की हमरा अहाँ से कनिया जकाँ बरक नीक बेजा नहीं सहते। ओकर जीवनक सहयोगी चाही स्वामी ने। हम बात बुझल भुवनेश्वर बाबू आब हम घर जाइ छी। वासुदेव जी कहला एते जल्दी किया। जे बात अहाँ कहलहुँ ताहि पर अमल आइए सँ और अखने से शुरू करब। बेस तखन शीघ्रता करू। वासुदेव जी तुरंत उठ विदा भेला। घर जाकर सबके एक ठाम बजलखिन आ पल्लवी के कहलखिन अहाँ अपन पसीन किया नहीं बजै छी। नीक बरक निर्णय अहीं करबै ने बाबूजी। हमरा बसक बात नहीं है बर तकनाई। ई तो अहीं के करऽ पड़त। पल्लवी मुँह झुका के बाजल। वासुदेव जी बुझि गेलखिन ई पल्लवीक शब्द नहीं छल। ई हुनके पूर्व में बाजल शब्दक प्रतिध्वनि छल। अहाँ प्रयास तो करू। वासुदेव जी कहलखिन नहीं पप्पा हमरा एहिमे बहुत डर हुई है। कोनो बात नहीं पल्लवी हम सब मिलजुल के ई काज पार लगाए। हाँ पप्पा ई नीक रहत। हम मिल के करबै तखन कोनो दिक्कत नहीं। सब यदि एक ठाम बैस कऽ जे हम कहब या जे अहाँ कहबै से हम अगर विचार कऽ लेब तऽ हमरा बहुत नीक लागल। पल्लवी चहकैत बाजल। वासुदेव जी सबटा फोटो आ परिचय सामने राखि लेलखिन। माय बेटी सबटा के एक एक कर देखे लागल। फोटो सबके देख कऽ पल्लवी आ ओकर माय के भाव भंगिमा समय समय पर बदलि जाए। वासुदेव जी के भरोस भऽ गेलनि जे आब निर्णय जल्दी भऽ जाए।

0: घरक तनावक माहौल समाप्त भऽ गेल छल। ओकर स्थान पर उत्साह और उमंगक माहौल छल। साँझमे फेर सिंघारा जिलेबी आबे लागल। बरक चर्चा करके फेरामे नाश्ता बनबैके समय घरमे ककरो लग नहि छल। पल्लवी पहिले जकाँ ठठाके हँसऽ लागल और ओकरा देखकर वासुदेव जी और हुनकर आंगनवाली सेहो। वासुदेव जी के विश्वास भऽ गेलनि जे पैकेज वाला बर भेटाय वा नहि, पल्लवी के पसीन के बर जरूर भेट जेतनि आ जल्दिए भेट जेतनि।
1: श्रोता बंधु, हमरा लोकनि एखन पैकेज वाला बर ई कथा सुनि रहल छलहुँ। निश्चित रूपें एहि तरहक कथा जखन हमरा लोकनि सुनैत छी, लगैत अछि जेना हमरे परिवारक गप हुए, हमरे समाजक गप हुए। आ एना तऽ प्रायः हमरा लोकनि देखिते रहैत छी अपना सभक समाजमे, अपन परिवारमे, अपन गाममे। तऽ आब एहि कथाक बाद पहिने हमसभ बढ़ैत छी शब्द विमर्श दिस, तहन गीतनाद सेहो हेतै। एकटा शब्द अबैत अछि मरोत। मरोत भेल मुखपट, आँचरक कोरसँ मुँह ओ नाकपर देल आवरण जे संकोचपूर्वक गप करबाक काल महिला लोकनि रखैत छथि। ओना आब तऽ मरोत काढ़बाक जे परम्परा ओ कमे ठाम बचि गेल अछि। बहुत गोटा तऽ बुझितो नहि छी मरोत काढ़ब की होइ छै। मरोत काढ़ब भेल संकोचपूर्वक अपन मुँहकेँ झाँपब। आ माझ, माझ भेल बीच, केंद्र।

एहि गीतक बाद आब तऽ कार्यक्रमसँ विदा लेबाक बेर सेहो भइए रहल अछि, मुदा ओहिसँ पहिने अपने लोकनिसँ आग्रह जे अपन सुझाव ओ प्रतिक्रिया अपने सभ हमरा सभ धरि निश्चित रूपसँ पठबैत रही आ हमरा सभक मार्गदर्शन ओ उत्साहवर्धन करैत रही। एहि लेल जे हमर सभक पता अछि ओ अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। हमर सभक पिन कोड अछि 8460004। श्रोता बंधु, अपने लोकनि अपन सुझाव वा प्रतिक्रिया आकाशवाणी दरभंगा @gmail.com पर सेहो पठा सकैत छी। तऽ आब हमरा यानी राकेश चंद्र नंदन के चलबाक आज्ञा देल जाओ। नमस्कार।

मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं।
2: हिंदी बोलना है, सामान किनना है।
0: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियां।
3: मैं चाहता हूं कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
4: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोनों पार के आदमी

0: समस्या को सॉल्व करते हैं।
1: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतै
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खायब की
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं, कुछ क्षणों में समाचार होंगे।
6: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।
7: पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
8: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
6: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
8: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
6: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है।

उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

0: उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शब्द शिल्प, स्वर सहयोग सुरभि और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। हिंदी रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शब्द शिल्प सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी साहित्यिक साथी सुरभि का नमस्कार। श्रोताओं, ऋतुएं प्रकृति की वे सुंदर कविताएं हैं जिन्हें समय स्वयं अपने हाथों से लिखता है। कभी बसंत बनकर वे फूलों की मुस्कान बिखेरती हैं, तो कभी वर्षा बनकर धरती की प्यास बुझाती है। ग्रीष्म का तेज हमें संघर्ष का पाठ पढ़ाता है, तो शरद की चांदनी मन को शांति देती है। हेमंत की ओस जीवन में ताजगी भरती है और शिशिर की ठंडक धैर्य का संदेश देती है। वास्तव में ऋतुएं केवल मौसम नहीं है, बल्कि प्रकृति के बदले भाव हैं जो हमें सिखाती हैं कि परिवर्तन ही जीवन का शाश्वत सत्य है और हर परिवर्तन अपने साथ एक नया सौंदर्य लेकर आता है। शब्द शिल्प के इस अंक में हमने इसे केंद्र में रखकर रचनाओं का चयन किया है। इस अंक में आपको कवि की कल्पनाओं में शब्द रूपी भीगी धरती की सुगंध मिलेगी, तो लेखकों की कलम से झड़ते पत्तों की नजाकत भी महसूस होगी। ऋतु परिवर्तन न केवल प्रकृति का सौंदर्य बढ़ाता है, बल्कि साहित्य को भी नवजीवन प्रदान करता है। शब्द शिल्प हमेशा से साहित्य के विभिन्न रंगों को समेटने का मंच रहा है। ये अंक भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है, जहां मौसम का हर रंग हर रूप रचनात्मकता के सौंदर्य में ढलकर श्रोताओं तक पहुंचता है। आशा है कि ये अंक आपके मन के मौसम को भी कुछ क्षणों के लिए साहित्य की ठंडी छांव में शांति देगा। श्रोताओं, अब इस साहित्यिक यात्रा में बढ़ते हैं आगे, अगले खंड जरा सोचिए की ओर। श्रोताओं, जिस प्रकार ऋतुएं प्रकृति के बदलते स्वरूप का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है, उसी प्रकार पर्यावरण हमारे धरती की जीवन रेखा है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी ऋतुओं का ये अनुपम सौंदर्य भी बना रहेगा। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि और हरे भरे वृक्ष हमें प्रकृति से प्राप्त अनमोल उपहार हैं। जरा सोचिए, ये सब ना हो तो क्या हमारा अस्तित्व रहेगा? हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण आज पर्यावरण गंभीर संकट का सामना कर रहा है। पर्यावरण असंतुलन का प्रभाव हम सभी महसूस कर रहे हैं। मौसम में अनियमित परिवर्तन, बढ़ता तापमान, जल संकट और प्राकृतिक आपदाएं इसकी स्पष्ट चेतावनी है। यदि अब भी हमने इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझा, तो आने वाली पीढ़ियों को एक असुरक्षित और प्रदूषित वातावरण विरासत में मिलेगा। तो आइए, पर्यावरण संरक्षण की राह पर चलते हुए हम भी अपना अमूल्य योगदान दें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य की कुंजी है। साहित्य प्रकृति की गोद में जन्म लेता है और पर्यावरण से ही अपनी संवेदनाएं प्राप्त करता है। हमारी कविताओं, कहानियों और गीतों में नदियों की कलकल, पंछियों का कलरव, वृक्षों की हरियाली और ऋतुओं का सौंदर्य जीवंत रूप से दिखाई देता है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी साहित्य की सुंदर प्रेरणा भी जीवित रहेगी। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना केवल प्रकृति का ही नहीं, बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण का भी दायित्व है, क्योंकि जहां प्रकृति मुस्कुराती है, वहीं साहित्य गुनगुनाता है। तो आइए, इन्हीं विचारों के साथ इस साहित्यिक यात्रा में बढ़ते हैं आगे और भगवत झा अन्मेष जी से सुनते हैं उनकी स्वरचित कविता पाठ।
1: सबसे पहले एक कविता जिसका शीर्षक है बादल। आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, धारा से लेकर गगन तक बारिशों की लय, बरसना भी है सुनिश्चित भींगना भी तय, तम तमाया तमस है नव गर्जना का भय, भाग गए आकाश में फिर घिरे घन पागल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। दूसरा अंतरा, धरा कब से कर रही थी नित नवल मनुहार, जेठ के आते ही औचक आ गया आषाढ़, प्राणियों के प्राण प्रतिपल मांगते जलधार, छा गए आकाश में फिर रंग नव श्यामल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, वेदना के गीत गाते प्राण के आधार, गुरु पूनम के दिवस में दे रहे बौछार, वज्रधर उद्दंड नायक प्रलय के अवतार, धा गए आकाश में फिर बज रहा मादल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। बादल का वर्णन है आकाश में जिस जिस रूप में मुझे दिखाई पड़ा उसकी अभिव्यक्ति है। कौन इनका रूप गढ़ता दिवस में सौ बार, बैंगनी लल छौह आभा में भरे रसधार, कूचियों से नील नभ पर रंग देता झार, गा गए आकाश में फिर घन घनन काजल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। मीत देखे आज मैंने विप्लवी के रूप, कभी कभी बादलों का रूप बहुत विप्लवी होता है, विद्रोही। मीत देखे आज मैंने विप्लवी के रूप, जो चमकती सी लगी थी स्वर्ण वर्णा धूप, धूप में बिल्कुल अनोखा नव दुखों का कूप, खुल गया नव नील का था बंद जो सांकल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। अंतिम बंद है, कृषक मन में हर्ष का वह दे गया नव गीत, कृषक मन में हर्ष का वह दे गया नवगीत, कभी लगता है विकट वह कभी लगता मीत, कभी लगता है विकल सा देख जग की रीत, प्रेमियों के नेत्र में भरकर विरह का जल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। ये हमारे बीच की विसंगतियों और विडंबनाओं का विश्लेषण। गीत का शीर्षक है आदमी।

खो गया है भीड़ में जो आदमी, बंधु मैं उस मौन का पर्याय हूँ, हूँ तुम्हारे बीच की विडंबना, आज खुद से मांगता मैं न्याय हूँ। अगला बंध,

अगला बंद है। ठहरी ठिठकी सहमी सी यह चांदनी, कुछ अधूरे प्रश्न हमसे पूछती है। हर कमल पर यंत्र युग की यंत्रणा, आज के मन को श्रद्धा सूझती है। ठहरी

आज खुद से मांगता मैं न्याय हूँ। अगली रचना धान रोपती बेटियां। धान रोपती बेटियां बेटियों के श्रम से जुड़ा हुआ सौंदर्य, बेटियां आगे बढ़े अच्छा करे, इसमें बेटियों के श्रम का सौंदर्य सामने लाने का प्रयास किया गया है विनम्रतापूर्वक। धान

अगला बंद देखे, बेटों से पग दो पग आगे, जब मुस्काती सब दुख भागे। बेटों से पग दो पग आगे, जब मुस्काती सब दुख भागे। खुरपी कलम समझ लाज लस, लिए जगत की अम्मा लागे। जगत की अम्मा जगदम्बा। बेटों से पग दो पग आगे, जब मुस्काती सब दुख भागे। खुरपी कलम समझ लाज लस, लिए जगत की अम्मा लागे। अगहन में

बेटियां अंतिम बंद है, बेटी तुम सूरज बन चमको, चंद्र सम नभ में दम को, बेटी तुम सूरज बन चमको, चंद्र सम नभ में दम को, लाजमान मर्यादा समझो, हर सिंगार सम

0: तापती बेटियां सुंदरिया सलेटियां। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही। जीवन में हमें संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी हमारे भीतर एक लड़ाई चलती है, तो हमारे भीतर के अंतर्द्वंद को छंद द्वारा अभिव्यक्त करने का मैंने प्रयास किया है आपके समक्ष। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही। माया कर नित नौ चतुराई छल रही। होना था मुझको भी सोना, लेकिन मुश्किल ऐसा होना। सपनों की नव चित्र कथा नित जल रही। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही। अच्छे दिन आने वाले थे, दुख के दिन जाने वाले थे। अरमानों की सांझ सुरमई ढल रही। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही। लेकिन निराश नहीं होना है, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आशाओं को हम हेरेंगे, नया तराना फिर छेड़ेंगे। आशाओं को हम हेरेंगे, नया तराना फिर छेड़ेंगे। कोशिश ही तो हर विपदा का हल रही। कोशिश ही तो हर विपदा का हल रही। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही।
1: भगवत जा अन्मेष जी से अभी आप सुन रहे थे उनकी स्वरचित कविताएं। और अब इस साहित्यिक यात्रा में बढ़ते हैं आगे और सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी से सुनते हैं उनकी स्वरचित कहानी सब दिन होत न एक समान।
2: किसी गांव में संतोष नामक एक निर्धन व्यक्ति रहता था। स्वभाव से एकदम सीधा सादा, उसके नाम के अनुरूप उसकी प्रकृति और आचरण भी था। छल कपट से दूर अपनी पत्नी ललिता और तीन बच्चे, दो बेटियां और एक बेटा के साथ रहता था। वह अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिताजी ने दोनों बड़े भाइयों को अच्छी शिक्षा दीक्षा पढ़ा लिखा कर ठाट बाट की नौकरी दिलवा दी थी। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण संतोष को उच्च शिक्षा व पढ़ाई लिखाई नहीं करवाई गई। जैसे तैसे अपनी सूझबूझ, बलबूते व कठिन परिश्रम से 10वीं अर्थात मैट्रिक तथा शिक्षण प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग जिला के महाविद्यालय से दक्षता प्राप्त तो कर ली, परंतु आगे की पढ़ाई से वह वंचित रह गया। घर परिवार में सरल व सहज होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियां इसी के सिर पर लाद व मढ़ दिया गया। तीनों भाइयों के परिवार के सदस्यों का सारा बोझ इसके ही सिर पर आन पड़ा। अपने जीवन काल में न ही इसके पिता इसके साथ न्याय कर पाए और न ही नियति इसको न्यायोचित अधिकार व सुख दिला पाई। अब मरता करता भी तो क्या करता। आए वक्त संतोष की जिंदगी उहापोह व उथल पुथल सी गुजर बसर होने लगी। संतोष परिवार के बोझ से दिन ब दिन धसता ही चला जा रहा था, मगर फिर भी उसके ललाट और चेहरे पर चिंता, झिझक एवं परेशानियों की लकीर व रेखाएं कंचित मात्र भी नहीं दिखाई पड़ती थी। वह दुर्दिन से दुर्दिन परिस्थितियों में भी व्यथित व दुखित न दिखता था और उसके पीठ पीछे की सकारात्मक ऊर्जा और मनोबल के रूप में इसकी धर्मपत्नी ललिता थी। ललिता चंचल स्वभाव, कद पूरे 5 फुट, गौरवर्ण, फटे पुराने चिथड़े परिधान, उलझे केश, नग्न पैर, तीखे स्वर, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पाई पाई जोड़कर हिसाब रखने वाली, कमासुत, अहर्निश, रात दिन देह तोड़ मेहनतकश औरत, कदापि थकती नहीं थी, नित्य निरंतर कामों में लगी रहती थी। स्वभाव व आचरण से अत्यंत सरल, सहज, शालीन स्वभाव, पतिव्रता नारी होने के साथ साथ उसे ईश्वर में अटूट विश्वास और जुड़ाव था। घर परिवार में साक्षात लक्ष्मी की मूर्त थी वह। शायद यही कारण था कि संतोष को मानसिक रूप से दुखित व व्यथित नहीं होने देती थी। संबलवन सदा सहाय रहती थी, संतोष का मनोबल सतत बढ़ाती ही रहती थी, अतिशय विपदा में भी उसे समय समर पर ढांढस बंधाती रहती थी। निश्चल, निष्कपट, सीधा, सरल

व्यवहार के कारण ही संयुक्त परिवार के सभी लोग संतोष से उसके बीवी बच्चों को देखना पसंद नहीं करते थे। ऊपर से उन दोनों के सादगीपन और भोलापन के कारण उनका फायदा उठाते थे। घर का कोई भी सदस्य संतोष के परिवार से खुश नहीं रहता था, परंतु घर का चाहे कोई भी काज हो, बस ललिता को ही आवाज लगाई जीत। घर के लोग एक गिलास पानी तक ललिता से ही मांगते फिरते थे। ललिता के साथ मानो नौकरानी सा व्यवहार करते थे। विकट से विकट स्थिति में जीवन यापन करने वाली अडिग नारियल की तरह ऊपर से सख्त अंदर से कोमल ललिता ना तो कभी किसी से झुंझलाकर बोलती और ना ही कभी ईश्वर को कोसती थी। परिवार के सभी लोग ऐशो आराम से घर में रहते, परंतु ललिता हर मौसम, चाहे वह पूस की मलमली हो, ठेहुन भर बरसात या फिर भीषण गर्मी या चिलचिलाती दोपहरी, भोर में उठती चूल्हा चौकी घर आंगन लीप पोत कर चकाचक कर नहा धो पूजा पाठ कर सबके लिए खाना पकाती। ललिता में एक और सुंदर गुण था कि जब तक ईश्वर की पूजा नहीं करती तब तक मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं डालती। सभी लोग खाना खा लेते, जो शेष बचता खुसता व संतोष के परिवार को नसीब होता। भोर भिनसार में उठकर कांधे पर कुदाल लादे संतोष निर्जल बिना कुछ खाए भूख से तड़पता हल चलाकर घर को लौटता है, तब अपनी पत्नी ललिता को आवाज देता है। किधर हो ललिता, सुन रही हो? ललिता, अगर रसोई के चूल्हा चौका पर कुछ बचा कुचा हो तो ले आओ, जोर की भूख लगी है। ललिता अपने पति के थकान भरे स्वर को सुनते ही मन कचोटती हुई हामी भरती है। जी अभी लाई, थाली में सिराए मांड भात परोसती है और अंदर ही अंदर फफक फफक कर रोने का प्रयास करती है, परंतु दर्द हलकान करने वाले आंसू कोरे सुघड़ नैनों में सूख जाते हैं। ललिता खाना परोसती हुई, लीजिए स्वामी, बहुत दिनों से घर में राशन पानी नहीं है, सबको पता भी है, परंतु मास्टर साहब यानी बड़का भैया चाहे मंजला भैया के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा। अगर मैं ना पकाऊं तो घर में अलग ही बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बस एक आपका मुख दिख जाता है कि आप खेत पर से लौटेंगे तो क्या खाएंगे। लीजिए स्वामी खाइए। संतोष ललिता के चिंता को दूर करते हुए ध्यान भटकाते हुए कहता है, अरे वाह ललिता, नए का चावर का भात पकाई हो। ललिता तपाक से उत्तर देती है, जी हाँ, आप ताल वाले खेत में जो धान बोए थे उसी धान का नए का चावर और डीह में जो आलू बोए थे उसका चोखा। रात दिन खेत खलिहार और अन्य अन्य कार्य कर लौटा थका हारा संतोष अन्न का पहला निवाला जैसे ही मुंह में डालता है वैसे ही उसको अपना बेटा बेटी याद आते और फिर ललिता से पूछता है, ललिता बच्चों को खाना खिलाई और तुमने नहीं खाई? ललिता के मुखमंडल पर अशांति की रेखाएं, शारीरिक और आंतरिक क्लांति को भांप संतोष ने कोमल भरे स्वर में कहता है, ललिता तुम्हारे उद्विग्न और उद्वेलित भाव से सब कुछ बयां हो रहा है। देख पगली, ये जीवन रूपी चक्र है, यहाँ उतार चढ़ाव आशा निराशा सफलता असफलता सबको स्वीकार ही करना पड़ता है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे समय व मोड़ आते रहते हैं जो हमें अवसाद और विषाद की खाई में पटक ही देते हैं। ऐसे में मन अशांत रहता है, हमारे आसपास के लोग एवं सभी भौतिक चीजें तुम्हें परेशान कर हमारे सभी सुख छैन छीन ही लेते हैं, परंतु ऐसी मुश्किल हालातों में कारुणिक परिस्थितियों में हमें हमारे मन आत्मा को मजबूत और सबल प्रदान करने और बनाने की जरूरत है। ललिता तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है ना? बस उन पर ही भरोसा रखो। आज हमारा वक्त और समय भले ही अनुकूल न हो, परंतु ललिता सब दिन होते एक समान, इसलिए तुम सत्य से मुंह मत मोड़ो और व्यक्त की सोच और पचड़े में पर अपना समय मत गवाओ। कहते समझाते थके हारे संतोष को स्वाभाविक उंगाई आने लगती है और फिर वह अपने हिस्से के मिले छान छप्पर की कोठरी में गुदड़ी ओढ़ कर सो जाता है। ललिता बचे खुचे अन्न को लेकर खाने बैठती है और बच्चों को अन्न के कुछ एक दाने जैसे ही मुंह में डालती है तैसे ही उसकी बड़की ननद सुनीला, जो स्वभाव की बिल्कुल झगड़ी लड़ने वाली कटु कर्कश आवाज ईर्ष्या द्वेष तो कुट कुट कर भरा हुआ देवड़ी से उद्वेग भरे स्वर में आवाज लगाती है, ललिता अरे ओ ललिता कहाँ मर गई? देखो छुट्टी पर बड़का भैया आए हैं, पैर प्रक्षालन के लिए गर्म पानी कर ले आओ और संतोष को बोलो जाकर दुकान से जलपान के लिए कुछ मर मिठाई का इंतजाम करे। संतोष की आंखों में नींद दस्तक ही दी थी कि अजी सुनते हैं बड़का भैया जी आए हैं, जाइए जलपान आदि की व्यवस्था कीजिए। ललिता उधर से चूल्हा चौकी पर कठौती में पानी गर्म कर लाती है और जरा सी देर क्या हो जाती है, सुनीला उसे हजार अपशब्द खरी खोटी गालियां और बुरा भला कहती है। एक तो

0: इतने दिनों के बाद घर आए हैं, पर न जाने यह औरत किस अंतःपुर में लीन रहती है। काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के थाली खाकर बस सो ही रहती है। देख ललिता, ऐसा रहा तो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। सुनीला के तीखे शब्द बाण के प्रहार ने ललिता के कोमल हृदय को छलनी छलनी कर दिया। बेचारी को मानो काट मार दिया। वह चुपचाप भीत की भांति खड़ी खड़ी सारी जली कटी बातें सुन रही थी। संवेदनशील हृदय होने के कारण वह भाव विह्वल हो गई। उसकी आंखों में निश्चल आंसू ढुलकने ही वाले थे कि उसके बच्चों की रोने की आवाज आई। संतोष भी एक कोने में खड़े होकर भाभी की खरी खोटी चुपचाप सुन रहा था। ललिता डर के मारे टस से मस और मुंह से उफ तक न की। संतोष मन ही मन यह सोच रहा था कि दुखियारी बेचारी ललिता मेरी गैर मौजूदगी में कितनी कष्ट सहती होगी। संतोष मन ही मन बुजुर्गों की एक कहावत बुदबुदाता है, लोग ठीक ही कहते हैं कि सीधे की मुंह कुत्ता चाटता है। सीधे लोगों को ही दुनिया बुरा भला कहती और ठगती। संतोष ने ललिता से कहा, ललिता जाओ बच्चों को देखो, वो कब से बिलख रहे हैं। ललिता झट वहां से चली जाती। ऐसे ही घर परिवार आस पड़ोस को सुनते सहते, हालातों को पुचकारते, समय के थपेड़ों को सहते रहते, हालात की आंच पर पक वक्त की कसौटी को परखते संतोष और ललिता को कई वर्ष बीत गए। संतोष के दोनों बड़े भाई भी अर्धशिक्षित मूर्ख जाहिलन क्रूर की भांति तमाशबीन बन पड़ जाते थे। संतोष के विषम परिस्थितियों में न तो कभी मददगार बने, न ही इन दोनों के असहाय दाम्पत्यों की व्यवस्था और लाचारी समझी। यहाँ तक कि जब दोनों भाइयों का सारा काम काज का निपटारा, सभी लड़के लड़कियों की शादी ब्याह संपन्न हो गया, तब अंततः संतोष और ललिता को उनके भौतिक सुख सुविधाओं को छीन भिन कर मारपीट अलग कर दिया। ऐसे स्थिति में दोनों जाए तो जाए कहाँ, एक ही काल कोठरी सम घर में बारहो मास आठो पहर जैसे तैसे भूखे प्यासे गुजारा करते रहे। 2 जून की रोटी के लिए इधर उधर हाथ फैलाते फिरते रहे। जिस वक्त दाम्पत्य जीवन सुख भोगना चाहिए, उस वक्त उन दोनों का नव यौवन सौंदर्य तो टहल टिकोरा आभा भगत सेवा शुश्रूषा में नौकर चौकर ज्यो व्यतीत हो जाता है। फिर भी संतोष और ललिता ने अपना मनोबल अंतर्विश्वास हौसला दृढ़ संकल्प एवं परमेश्वर के प्रति अटूट भक्ति स्वयं को कभी थकने हारने विचलित होने व मरने न दिया। परिस्थितियां भले ही प्रतिकूल होती गई, परंतु हालात की आंधी से मन रूपी मोमबत्ती को हौसले और उत्साह से बुझने न दिया। संतोष और ललिता ने हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर सदैव जीवंत रखे। जिंदगी उनके साथ हजार दांव पेच क्यों न खेलती रही हो, पर एक कहावत है ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब भी भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। वह सुबह कभी तो आएगी कि उम्मीद उन दोनों के जीवन में नौ सवेरा लेकर आता है। संतोष के द्वारा लिया टीचर ट्रेनिंग प्रशिक्षण और सरकारी नौकरी की वैकेंसी खबर सुनकर संतोष का जीवन रुपया बगिया खिलखिला उठा। वैकेंसी विज्ञापन जैसे ही आई, संतोष ने फॉर्म अप्लाई किया। संतोष का अथक प्रयास और ललिता का भगवान व अपने पति के प्रति अटूट भक्ति आस्था विश्वास नित्य निरंतर पूजा पाठ का प्रतिफल क्या खूब रंग लाया। संतोष जिला के ही एक विद्यालय में शिक्षक का पद ग्रहण कर सुशोभित करता है। ललिता के चेहरे पर खुशी का ठिकाना न रहता है। ललिता कभी हंसती और कभी रोती है। इस ललिता की आंखों में खुशी के असली आंसू के मोती झर रहे थे। ललिता के लिए उसके जीवन का यह ऐसा क्षण व पल रूपी मरहम था जो उसके संपूर्ण जीवन के चोट घाव पर मरहम लगाने का काम कर रहा था।
1: श्रोताओं, अभी आप सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी से सुन रहे थे बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, सब दिन होत न एक समान। इसका अर्थ ये है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वास्तव में श्रोताओं, समय हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है। इसलिए तो कहते हैं, आज अगर आंखों में पानी है कल होठों पर मुस्कान होगी, आज अगर राह कठिन है तो कल मंजिल आसान होगी। वक्त बदलता रहता है, बदलते हैं हालात तमाम। वक्त बदलता रहता है, बदलते हैं हालात तमाम। इसलिए तो कहते हैं, सब दिन होत न एक समान। तो श्रोताओं, इन्हीं विचारों के साथ आज के शब्द शिल्प की ये साहित्यिक यात्रा अब यहीं समाप्त होती है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें इस ईमेल आईडी पर feedback@aarpatna.gmail.com। और अब प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ साहित्यिक साथी सुरभि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शब्द शिल्प। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी,

अश्के रवां की लहर है, अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों। अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। ये अजनबी सी मंजिलें और यादें रफ्तगां, ये अजनबी सी मंजिलें और यादें रफ्तगां, तन्हाइयों का जहर है और हम हैं दोस्तों। और ऐसे में हम आपको याद कर रहे हैं दोस्तों, एकांत अर्थात तन्हाई, ये जो होती है ना, इसमें बिल्कुल हलाहल जैसा फील होता है, जहर जैसा प्रतीत होता है, लेकिन फिर अगर दोस्तों का आगमन हो जाता है तो फिर आनंद ही कुछ और। तो इस कार्यक्रम में इससे पहले कि हमें अकेलेपन का एहसास हो, तन्हाइयों का एहसास हो, आप आ जाइए ना हमारे पास। कार्यक्रम आरंभ हो चला है, जो चलेगा जारी रहेगा 11 बजे तक। नंबर हमारा वही है 9430029353, अर्थात 9430029353। इस नंबर पे करें कॉल और सुने अपनी पसंद के फिल्मी गाने, हमें आपके कॉल्स का इंतजार है। फिरते हैं मिसले मौज हवा शहर शहर में, फिरते हैं मिसले मौजे हवा शहर शहर में, आवारगी की लहर है और हम हैं दोस्तों। लेकिन हमारे

0: मेरे दोस्त भी तो कम नहीं हैं। मैंने कहा कि अकेला है ये माहौल अभी का, हमारे साथ तन्हाइयां हैं, तो उन तन्हाइयों को दूर करने के लिए हमारे एक श्रोता लाइन पे मौजूद हो गए हैं। जानते हैं कौन साहब हैं? हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, परिचय दें अपना।
1: हम साबिर परवाना बोल रहे हैं, नाहरमन टोला, जिला मधुबनी, बिहार से।
0: साबिर साहब, इस्तकबाल करते हैं यौमे आशूरा को लेकर, क्या हो रहा है वहाँ यौमे आशूरा के वक्त?
1: हम लोग का तो 10 बजे जलसा होता है। जी, अब हो गया, समाप्त हो गया अब।
0: अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। और ये चूंकि जो हिजरी साल इस महीने से शुरू होती है, होता है, और आज इस महीने की 10वीं तारीख है, जिसको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की याद में यौमे आशूरा कहते हैं। तो एक तो वो वाकया जुड़ा हुआ है, लेकिन अनेक वाकये ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे भी हैं, है ना? आज के

0: जो हिजरी साल इस महीने से शुरू होती है होता है, और आज इस महीने की 10वीं तारीख है, जिसको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की याद में यौम आशूरा कहते हैं। तो एक तो वो वाक़या जुड़ा हुआ है, लेकिन अनेक वाक़े ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे भी हैं, है ना। आज के दिन की बहुत अहमियत है, बहुत महत्व है, और कई घटनाएं, कई अच्छी घटनाएं भी आज के दिन में हुई हैं, और तो तरह तरह से लोग इसका आयोजन करते हैं, इसको तरह तरह से मनाते हैं लोग, तो कोई किसी अंदाज़ में, कोई किसी अंदाज़ में। तो जगह बदलने के साथ ही बहुत कुछ बदलता रहता है, और ये दुनिया है एक फुलवारी समान है, यहाँ तरह तरह के फूल हैं, और वो फूल हम सभी हैं, हम हैं, आप हैं, तमाम लोग हैं, तो सबके अपने अपने अंदाज़ होते हैं। आज फरमाइश बता दें।
1: आज आंखें खुली मुला गाना सुना दीजिए, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी कभी
0: होती है दिल बड़ों की इनायत कभी कभी।
1: कभी।
0: पहुंचा रहे हैं आपके लिए आंखें फिल्म का ये गाना। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर, सुनिए ये गाना।
1: बखैर।

0: मोहब्बत ज़िंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो। मोहब्बत ज़िंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। तुम्हारे प्यार ने दिल में उमंगों को जगाया है। तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे जीना सिखाया है। न हो तकदीर पे क्यों नाज जब इतनी इनायत हो। तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी। श्रीमान जी, परिचय दें अपना। वैसे शुभ नारायण महतो जी की आवाज मुझे महसूस हो रही है। अरे क्या पहचान है जी। महतो जी, सब बढ़िया?
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना सुनाया जाए सर।
0: हाँ, मालिक की कृपा बरस रही है, आप सभी का साथ है, तो फिर क्या बात है ना। हम तो मस्त रहने वाले आदमी हैं और हमेशा मस्त रहते हैं, चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी मस्त रहें हमेशा, है ना। जीवन बहुत महल जी, बहुमूल्य है ये जीवन, इसको जो है अच्छे कामों में लगाकर मस्त रहें और जिंदगी को अच्छे से गुजारें, किसी को कोई कष्ट ना दें, बस जीवन सफल है ना। और क्या सब हो रहा है अभी? गर्मी आपकी तरफ भी काफी है, वर्षा हो रही है कि नहीं?
1: गर्मी तो काफी है, वर्षा सुबह में बारिश हुई थी, घंटा सुबह में बारिश हुई थी, लेकिन फिर दिन में धूप निकला और काफी गर्मी है, अभी बहुत गर्म है।
0: चलिए देखिए,
1: मौसम तो गर्म है,
0: सब तरफ यही स्थिति
1: करके ठीक है।
0: ना, मौसम की स्थिति वैसे जो मॉनसून आने के बाद जो होनी चाहिए थी वो स्थिति नहीं बन पा रही है। देखिए, मालिक से हम आशा करते हैं, फरमाइश बता दें।
1: आज मुझे
0: मेरा मन तेरा प्यास जी, मेरा मन तेरा प्यासा, गैम्बलर फिल्म का ये गाना है, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, तो बिल्कुल आपके लिए पहुंचा रहे हैं रामपट्टी गौस नगर में ये गाना। आपने कॉल किया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद शुभ नारायण जी। सुनिए, ये गाना पहुंच रहा है आपके पास। शुभ रात्रि।

0: तुम उसके पास हो जिसको तुम्हारी चाह न थी, तुम उसके पास हो जिसको तुम्हारी चाह न थी, कहाँ पे प्यास थी दरिया कहाँ बनाया गया। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: जी मांगीलाल चंदेल जी।
1: सर जी धन्यवाद पहचानने के लाने, आपको धन्यवाद।
0: गुणा मध्य प्रदेश से।
1: जी।
0: चलिए तो आप परिचय नहीं पूछेंगे आपसे हम।
1: हाँ नहीं बताऊंगा मैं, पूछेंगे तो नहीं। अब आपने तो बता दिया परिचय, अब मैं क्या बताऊंगा।
0: जी आप आपकी आवाज जो है ना, आपकी पहचान, वो कहते हैं ना कि हजारों में आपकी पहचान एक अलग हो जाती है आपकी आवाज से। कैसे हैं मांगीलाल चंदेल जी, कैसे हैं?
1: सर जी मैं बढ़िया हूँ, आपकी दुआ से और भगवान की कृपा से, और मैं आशा करता हूँ मालिक से कि आप भी बढ़िया होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फटाफट फरमाइश बता दें अपनी।
1: मेरा साया।
0: मेरा साया, तू जहाँ जहाँ चलेगा या नैनों में बदरा छाए।
1: नैनों में बदरा छाए,
0: बहुत ही प्यारा गाना आपने चुना है भाई, इसका आनंद तो मैं खुद भी लूंगा आपके साथ साथ। तो ये गुणा मध्य प्रदेश में मांगीलाल चंदेल जी आपके लिए, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, सुनिए ये गाना।

0: याद तुम आए तो फिर बन गई बादल आँखें, याद तुम आए तो फिर बन गई बादल आँखें, दिल के वीराने को करने लगी जलथल आँखें, ख्वाब को ख्वाब समझती हैं नहीं जाने क्यों, ढूंढती रहती हैं एक शख्स को पागल आँखें। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम, तारुफ कराएं अपना। सिमरा चतरिया से हाशिम साहब, मोहम्मद हाशिम साहब, कैसे हैं हाशिम साहब?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं?
0: हाँ बहुत बढ़िया है, मस्त है। आज तो यौमे आशूरा को सभी लोग मना रहे हैं, आपके यहाँ क्या कुछ हो रहा है?
1: यहाँ से जाता है सिमरा से, आज तो मैं जवान लोग जाता है, हम तो आप जा पाते हैं उसे।
0: हाँ सब लोग उसमें शामिल नहीं, भीड़ भाड़ भी होती है ना, तो थोड़ा
1: पहले ऐसा रस्म नहीं है, आजकल
0: देखिए ऐसा है ना कि सब लोग सब अंदाज से मनाते हैं, बस प्यार और भाईचारे के साथ सब मना लें, जिस तरीके से भी मनाएं और मनाते हैं। अब दरभंगा शहर में कुछ होता है, चंदन पट्टी में कुछ होता है, उसी तरीके से भारत के अनेक क्षेत्रों में अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है, सब लोग इस दिन को अलग अलग तरह से याद करते हैं। ये कोई पहले की बातें तो अलग थीं जी, तो जी हम ये कह रहे थे, आज फरमाइश बता दें आप।
1: फरमाइश सुल्तान हिंद का ये है, आप ये कुरान बनेगा
0: जी, पहुंचा रहे हैं आपके लिए सिमरा चतरिया में, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर, सुनिए ये गाना मोहम्मद रफी का गाया हुआ, फिल्म सुल्तान हिंद का।

0: जो नेक राहों से हम भी गुजर गए होते, जो नेक राहों से हम भी गुजर गए होते, खुला में आज यकीनन उभर गए होते। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: नमस्ते सर, आप दाउद बोल रहे हैं सर?
0: क्या नाम बताया?
1: हमारा तो चंदेश्वर ताराना ब्रह्मपुर भी जाने प्रखंड से बोल रहे हैं सर।
0: जी चंदेश्वर शाह जी ब्रह्मपुर से, जी जाले पूर्वी जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, लेकिन यह है कि अधिक अंतराल पे आपका कॉल आता है, बहुत व्यस्त रहते हैं क्या? जी फरमाइश बता दें चंदेश्वर जी। वाह वाह वाह, क्या क्या गीत की फरमाइश आपने की है, बिल्कुल आप तक हम पहुंचा रहे हैं आपकी सेवा में, ये प्यारा सा गीत आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: जी,

तो फिर कहीं कोई समस्या होगी ही नहीं। जलील साहब, बहुत ही अच्छा गाना आपने सुनना चाहा है, हम असगांव मिल्कीचक आपके लिए ये गाना पहुंचा रहे हैं। आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर, सुनिए ये गाना।

मेरा नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली, मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बच

ना रूठे, काम को अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना, मोहब्बत बोल।

0: तो आपका प्रोग्राम तो मैं नियमित सुनता ही हूँ, पर जब आपके यहाँ कॉल लग जाती है तब बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप जिस सार्वजनिक अंदाज में जो कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हैं ये बहुत मनमोहक रहती है सर।
1: अच्छा, मुझे तो लगता है कि आप लोग मनमोहक होते हैं, आपकी बातें मनमोहक होती हैं, लेकिन आप तो
0: शायराना अंदाज जो रहता है प्रस्तुतकर्ता का, जो लायकी रहती है उसकी बात करने की शायराना अंदाज में, एक पेश करने का उसका जज्बा अलग ही रहता है, उसकी जो शायरी है वो सुनने में बहुत आनंद आता है, और सभी लिसनर की जो कॉल आती है वो भी सुनने में अच्छा लगता है सर।
1: जी तो लोकेंद्र जी, आपको बता दें आप ही लोगों से हमने सीखी है ये सारी बातें, तो आज ये फरमाइश बता दें,
0: हमने सीखा है सर, आपसे हमने सीखा है सर,
1: फरमाइश बता दें, आपकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं।
0: ये दो वदन फिल्म का गीत है, मौसम ठंडा हो चुका है, उमर थोड़ी कम हो गई है, तो गाना है उसका, गीत का बोल है जब चले ठंडी हवा।
1: बिल्कुल, आपके लिए पहुंचा रहे हैं उज्जैन मध्य प्रदेश में, महाकालेश्वर जी की नगरी में ये गाना। नमस्कार, शुभ रात्रि।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं, कुछ क्षणों में समाचार होंगे।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।